सुप्रभात श्रोताओ, मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम पर 909 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड पर 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 19 जुलाई सन 2026 ईस्वी। सुबह की 5:56 होने वाले हैं। अब हमारे आज के प्रसारण मंगल ध्वनि के साथ आरंभ होते हैं।

0: यह आकाशवाणी का कोटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मानसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने छात्रों और अभिभावकों को चेतावनी दी है कि ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली ओएमआर ही जमा करें। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसीलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वो जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई है, इसीलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार कक्षा 10वीं के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। शिक्षा बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के बीच एहतियाती तौर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त

को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम की चेतावनी के बाद वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जलभराव हो सकता है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और जल स्रोत से दूर रहने की सलाह दी है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम विदेशी सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। बरामद सामान की कुल कीमत करीब 22 करोड़ रुपए है। इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धियों में से एक बताया है। पार्टी के IT विभाग के प्रमुख अमित मालविया ने सोशल मीडिया पर कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। फिल्म आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में आयोजित भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। फाइनल में आज रात 12:30 बजे न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। महिला कुश्ती में भारतीय पहलवान काजल ने कल हंगरी के बुडापेस्ट में 76 किलोग्राम भार वर्ग में अमेरिका की डायमंड प्रेशियस गिलफोर्ड को हराकर स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता में ये भारत का तीसरा स्वर्ण पदक है। भारत ने 53 किलो और 57 किलो भार वर्ग में 2 रजत पदक भी जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वंदना कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आज संजीव कालिया का नमस्कार। प्रभात की सुनहरी बेला में आप सभी श्रद्धालु श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। रात्रि के अंधकार से उषा के प्रकाश तक की यह यात्रा हमें जीवन का एक गहरा संदेश देती है। श्रोताओं, हर नया सवेरा केवल एक नया दिन नहीं लाता है, बल्कि नई आशा, नए संकल्प और नई चेतना का द्वार भी खोलता है। और जब मन श्रद्धा से भर जाता है, तब धर्म केवल पूजा पाठ का विषय नहीं रह जाता है, बल्कि हमारे विचारों, व्यवहार और संवेदनाओं का आधार बन जाता है। भक्ति मनुष्य को विनम्र बनाती है, संवेदना उसे

मानव बनाती है और धर्म उसे जीवन का सही मार्ग दिखाता है। तो आइए श्रोताओं, इसी निर्मल भावना के साथ आरंभ करते हैं आज का वंदना कार्यक्रम। सर्वप्रथम विघ्नहर्ता मंगलमूर्ति प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की आरती के साथ उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमें जीवन से विघ्नों को दूर कर बुद्धि विवेक और शुभता का प्रकाश हमारे जीवन में फैलाएं। लीजिए सुनिए।

श्रोताओ, गणेश जी की मंगलमयी आरती के पश्चात आइए अपने मन को उस मधुर मुरली की तान में डुबो दें जिसने प्रेम को पूजा और भक्ति को जीवन का उत्सव बना दिया है। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कर्तव्य, करुणा और प्रेम, यही जीवन का सच्चा संगीत है। जब मन श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित होता है तब जीवन का प्रत्येक कर्म योग बन जाता है। तो लीजिए सुनिए भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय रचना।

श्रुतौ भगवान शिव हमें सादगी, त्याग, धैर्य और संभाव का संदेश देते हैं। वे संहार के देव हैं, परंतु उनका संहार विनाश का नहीं बल्कि अहंकार, अज्ञान और बुराइयों का है। शिव की जटाओं से बहती गंगा हमें निर्मलता का संदेश देती है। उनके मस्तक का चंद्रमा शीतलता का और उनके कंठ का विष यह प्रेरणा देता है कि संसार की कटुता को स्वयं तक सीमित रखकर भी दूसरों के लिए अमृत बांटा जा सकता है। तो लीजिए सुनिए भगवान भोले शंकर की महिमा का गुणगान।

शुदौ बाबा अमरनाथ की महिमा के बाद अब वंदन करते हैं आदि शक्ति जगत जननी माँ दुर्गा का। माँ केवल शक्ति का ही नहीं बल्कि ममता, करुणा, साहस और संरक्षण का विश्वरूप है। जब जब जीवन में निराशा, भय

या असमंजस का अंधकार छाता है, तब माँ की आराधना विश्वास का दीप जला देती है। उनकी कृपा से मन में आत्मबल जागता है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। तो आइए सुनते हैं माँ दुर्गा की महिमा।

श्रोताओं, माँ दुर्गा की वंदना के पश्चात अब स्मरण करते हैं प्रभु श्री राम के परम भक्त अतुलित बलधाम हनुमान जी का। हनुमान जी की भक्ति हमें सिखाती है कि शक्ति तभी सार्थक है जब उसके साथ सेवा, विनम्रता और समर्पण जुड़ा हो। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण प्रभु के चरणों में अर्पित रहा है और यही निष्काम सेवा उन्हें अमर बना गई है। तो लीजिए हनुमान जी की भक्तिमय रचना सुनिए।

ओशो तो अब कार्यक्रम के अंतिम चरण में आइए अपने मन वचन और प्राण को प्रभु श्री राम के पावन नाम में एकाग्र करें। कहा गया है कि जब मन भटकने लगे तो राम का नाम उसे दिशा देता है और जब जीवन थकने लगे तो राम का नाम उसे शक्ति देता है और जब हृदय व्याकुल हो जाए तो राम नाम उसे शांति प्रदान करता है। लीजिए सुनिए राम नाम का पावन जाप।

श्रोताओ, राम नाम की दिव्य अनुगूंज के साथ आज का वंदना कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। संजीव कालिया को अनुमति दें। नमस्कार।

0: अभी आप भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। लीजिए अब सुनिए आध्यात्मिक दर्शन का कार्यक्रम चिंतन। वाचक स्वर प्रेम सिंह गोदारा का है।
1: मन को अडोल करने के लिए लंबे समय से अनेक आलंबनों का सहारा लिया जाता रहा है, जैसे किसी मूर्ति का ध्यान करके, किसी मंत्र या नाम को जप करके, किसी रंग रूप आकृति का ध्यान करके, अजपा जाप, खेचरी मुद्रा, अनहदनाद, ज्योतिर्मय स्वरूप विधियों का ध्यान करके। लेकिन अपनी सांस, अपने मन को शुद्ध रूप में अडोल करने का सबसे अच्छा आलंबन है, क्योंकि सांस क्षण प्रतिक्षण हमारे साथ है। मन को अडोल करने के लिए वर्तमान में रहना बहुत ही जरूरी है, और सांस से ज़्यादा वर्तमान और कुछ नहीं है। हमारा सांस हमें बाहर से भीतर अपने मन की तलसपरसी गहराइयों तक ले जाने के लिए एक पुल का काम करता है। सांस का हमारे शरीर के साथ बहुत गहरा संबंध है। जब भी कोई अच्छी बुरी मनचाही अनचाही बात होती है तो सांस अपनी स्वाभाविक गति खो देता है, थोड़ा तेज या धीमा सा हो जाता है। लेकिन अपने मन को जो क्षण प्रतिक्षण या तो भूतकाल में जीना चाहता है या भविष्य काल में जीना चाहता है, उसे अपने सांस के सहारे हमें किस प्रकार वर्तमान में स्थित करना है, इसके लिए प्रतिदिन सूर्योदय से आधा घंटा पहले से लेकर के सूर्योदय से आधा घंटा बाद तक, यानी एक घंटे रोजाना एक ही स्थान पर अपने शरीर को जरा सा भी हिलाए डुलाए बिना कमर को सीधा रखें, गर्दन व चेहरे को शून्य मुद्रा यानी रिलैक्स रखते हुए बैठे रहें, किसी भी अंग में तनाव या खिंचाव न रखें। इन सभी बातों को जांचने के बाद अपना सारा का सारा ध्यान अपनी सांस के आवागमन पर लगाए रखें। जैसे ही सांस अंदर जाए तो यह साफ साफ मालूम पड़ता रहे कि इस क्षण की यही सच्चाई है कि मेरी सांस भीतर जा रही है। अंदर जाती जाती सांस थोड़ी धीमी होकर के क्षण भर के लिए भीतर रुकेगी, और जब सांस भीतर रुकी हुई हो तो हमें पूरा बोध होना चाहिए कि इस समय मेरी सांस भीतर रुकी हुई है। इसी प्रकार जैसे सांस बाहर की तरफ आने लगे तो इसकी भी हमें क्षण प्रतिक्षण जानकारी बनी रहनी चाहिए। भीतर की तरह बाहर भी सांस क्षण भर के लिए रुकेगी। जब सांस बाहर रुकी हुई हो तो हमें स्पष्ट ज्ञान हो कि सांस बाहर के मोड़ पर रुकी हुई है। भीतर बाहर सांस के दोनों मोड़ पर बड़ी सूक्ष्मता के साथ ध्यान होना चाहिए। इस प्रकार अपने ही सांस की क्षण प्रतिक्षण पहरेदारी होती रहे, प्रत्येक सांस की साफ साफ एवं लगातार जानकारी बनी रहे। इस तरह के अभ्यास से हमारा मन तीक्ष्ण होता जाएगा, एकाग्र होता जाएगा। हमें जानबूझ करके अपने मन में कोई विचार नहीं लाना है। अगर अपने आप कोई विचार आ जाए तो उसका साथ नहीं देना है। हमें अपना ध्यान सांस के आवागमन पर ही लगाए रखना है। यह मन जंगली है, इसे पालतू बनाना है, अपने वश में करना है तो हमें बड़े ही धीरज का परिचय देना होगा, जरा सा भी उतावलापन नहीं आने पाए। यहाँ पर एक बात बड़े ही ध्यान देने की है, यह कामना करना कि मेरा मन टिक जाए, इधर उधर ना भटके, ऐसी कामना ही अपने आप में बहुत बड़ी बाधा है। गीता में लिखा है, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। अर्थात अपना सारा का सारा ध्यान काम करने के ढंग पर लगाए रखें, परिणाम कुदरत और प्रकृति पर छोड़ दें। ध्यान में सहजता हो, इच्छा है वो बाधा है। जैसे कोई आदमी किसी का नाम भूल जाए, कोशिश करने पर भी नहीं आता, उसे छोड़ दे तो वह नाम अपने आप याद आ जाता है। जो क्षण बीत गया वो दुनिया की सारी संपदा दे करके भी

0: हम वापस नहीं पा सकते, और जो क्षण आने वाला है, जो कैसा होगा, हमें जिसका पता नहीं है, वो जब तक वर्तमान नहीं बन जाता, हम उसमें कैसे जिएंगे? जीना तो हमें वर्तमान में है, लेकिन हम एक ऐसा मन लिए हुए चल रहे हैं जो क्षण प्रतिक्षण या तो भूतकाल में जीना चाहता है या फिर भविष्यकाल में जीना चाहता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जीवन जीना नहीं आया, हमें जीवन जीने की कला नहीं आई। साधना ध्यान हमें जीवन जीने की कला भी सिखाता है, हमें अपने मन का मालिक भी बनाता है, सही अर्थों में गुलामी से मुक्ति दिलाता है।
1: श्रोताओं, अभी आप आध्यात्मिक दर्शन का कार्यक्रम चिंतन सुन रहे थे। विषय था अडोल मन और वाचक स्वर प्रेम सिंह गोदारा का था। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे चैनल से आज प्रसारित व अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय। अब से कुछ ही देर बाद सवेरे 7:10 पर खेतिहर वास्ते कार्यक्रम में प्रगतिशील किसान भाइयों के लिए उपयोगी जानकारी का विषय रहेगा कंपोस्ट खाद का महत्व। मानस गान आप सुनेंगे सवेरे 7:20 पर। आज आप सुनेंगे भाग 309 का पाठ। दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात होगा सवेरे 7:30 पर। आज के अंक में बीके रानी की वार्ता होगी मानवीय संवेदनाएं विषय पर। सुगम संगीत कार्यक्रम में आप भजन सुनेंगे सवेरे 8:45 पर। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले होंगे सवेरे 9 बजे। राजस्थानी लोक संगीत के कार्यक्रम मरुमंगल में भगत धर्मपाल भारती को आप सुनेंगे प्रातः 9:10 पर। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए सवेरे 9:30 पर। फरमाइशी हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सदाबहार नगमे होगा प्रातः 10 बजे।

फिल्म संगीत आप सुनेंगी प्रातः 11 बजे, कुछ बातें कुछ गीत। यह कार्यक्रम होगा दिन में 12:05 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम में गजलें सुनिए दिन में 12:30 पर। समस्याग्रस्त माटी का सुधार और प्रबंधन विषय पर जानकारी दी जाएगी खेत खलिहान कार्यक्रम में। समय रहेगा दिन में 12:50 का। महिला जगत कार्यक्रम होगा दिन में 1:05 पर। उर्मिला सेठी आपके साथ रहेंगी कार्यक्रम में। चर्चा के विषय रहेंगे वरिष्ठ नागरिकों के लिए जरूरी एप्लीकेशन, क्यों जरूरी है मेंटल डिटॉक्स, गर्मी में फ्रिज को फ्रेश रखने के उपाय और भुट्टे के व्यंजन बनाना भी सिखाया जाएगा। उर्दू सर्विस के कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे 2:00 बाद 3 बजे से। और नौजवान साथियों के लिए कार्यक्रम होगा युववाणी संध्या 5 बजे। सराइकी प्रोग्राम का वक्त रहेगा 6:05। ग्रामीण परिवारों के लिए कार्यक्रम होगा चौपाल संध्या 7 बजे। जानकारी के विषय रहेंगे कृषि में ड्रोन का महत्व, एकीकृत पोषक तत्व, बरसात के पानी का सदुपयोग, बाल विवाह एक अभिशाप और उपलब्ध होने पर मौसम की जानकारी और बाजार भाव भी सुनवाए जाएंगे। संसद के समक्ष मुद्दे, ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा 9:30 पर। और अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का रिले हमारे दिल्ली केंद्र से होगा 10:00। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 7:45 पर। और एक ही फिल्म से कार्यक्रम होगा 8:00। सुगम संगीत में गजलें सुनिए 9:15 पर। श्रोताओं अभी आप कार्य

0: इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र OMR शीट की जांच के लिए केवल असली शीट ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या AI से बनाई गई OMR शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई OMR शीट फर्जी पाई गई थीं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार 10वीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थीं। बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% विद्यार्थी सफल रहे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया है। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में भारत और एस्टोनिया के सरकारी प्रतिनिधियों, प्रमुख उद्योगपति और व्यापार प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया। पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले दो दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है और आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में है। उन्होंने कहा कि भारत का बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र, मजबूत नवाचार व्यवस्था और आर्थिक सुधार दुनिया भर के निवेशकों और उद्योगों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के जगदीशपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम में 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,408 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जल भराव हो सकता है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और जल स्रोतों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने आज कई राज्यों में भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भी कल तक बारिश का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धि बताया है। पार्टी के IT विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा जब्त की गई। बरामद सामान की कुल कीमत करीब 22 करोड़ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मायामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। फाइनल में आज रात 12:30 बजे न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया का सामना स्पेन से होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन युफेई को पहले गेम में हराया। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:10 हुए हैं। खेतिहर वास्ते कार्यक्रम में प्रगतिशील किसान भाइयों के लिए आज उपयोगी जानकारी का विषय है कंपोस्ट खाद का महत्व। लीजिए सुनिए।
1: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों आज अपन बात करांगा वर्मी कंपोस्ट खाद के बारे में, क्योंकि दिन ब दिन अपना किसान भाई है बे रासायनिक खाद है या फिर जो कि रासायनिक दवाइयां है छिड़क छिड़क के अपनी भूमि तो नाश कर ही ली। इनके अलावा जो को अपने स्वास्थ्य पर वो भी बहुत बुरो प्रभाव इनको पड़न ला रही है। तो इन वास्ते अपन के करना है कि अब जगह कृषि वैज्ञानिक बताने ला रहे हैं, कृषि विशेषज्ञ जगह बताने ला रहे हैं कि जैविक खाद जो कि कंपोस्ट खाद है बिंगो अपन इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि अपन आने वाले टाइम का माँ अपनी जो भूमि है बिंग उर्वरा शक्ति आप बचा सकें और अच्छी फसल ले सकें। क्योंकि जैविक खाद ऐसी है कि अपने स्वास्थ्य पर भी कोई गलत प्रभाव कौन डाले नहीं और अच्छी फसल भी अपन मिल सके। तो बात करें आप वर्मी कंपोस्ट खाद के बारे में, तो वर्मी कंपोस्ट को मतलब ही किसान भाइयों केंचुआ वाली खाद हुए, और केंचुआ जो है बे कई प्रकार का है बम आप मुख्य रूप से माना तो एपीजिक केंचुआ जो कि खाद बनाने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद हुआ है और ये अच्छी नस्ल का केंचुआ है। क्योंकि कंपोस्ट खाद बनाने में ये योग्य स्तर पर कम गहराई है जो कि अंग 1 मीटर तक हुआ है, और एक कृषि अपशिष्ट है भी पूरा 100% खा लिया, यानी कि 10% लगभग माटी भी खा के खाद बना दे। इनके अलावा किसान भाइयों एंडोजिक केंचुआ है वे भूमि के अंदर गहरी सुरंग बना गई, यानी कि 3 मीटर से ज्यादा गहरा भी रेवे, और आ केंचुआ की खासियत आ है कि मिट्टी ने खा के भुरभुरी बना दे, क्योंकि अंगी बनाईडी खाद है मिट्टी है बा 90% जल संरक्षण करके रख है। अब बात करें अपन डायोजिक केंचुआ की, तो एक केंचुआ 1-3 मीटर की गहराई का मारे हुए और ये दोनों प्रजातियां के बीच की जिसकी श्रेणी है बिंग मा आवे। अब बात करें किसान भाई आप वर्मी कंपोस्ट का के लाभ है। गोबर की खाद की तुलना में वर्मी कंपोस्ट खाद है बा ज्यादा गुणकारी हुए, और ई खाद से तैयार फसल में बीमारियां भी बहुत कम लगे, क्योंकि ई खाद के अंदर केंचुआ माटी की जल शोषण क्षमता में 20% तक वृद्धि कर दे, भूमि को कटाव भी वजह से रुके और पौधों की जल उपलब्धता है बिंग अंदर भी वृद्धि हो जाए। वर्मी कंपोस्ट से पेरिट्रोपिक झिल्ली होने के कारण जल वाष्पीकरण जो को है वो कम हुआ, यानी कि पानी की जो को कई बार उड़ जाए तो वो पानी बहुत कम उड़ेगा और सिंचाई की भी अपन जरूरत बहुत कम पड़ेगी। किसान भाइयों केंचुए की खाद से खेत का माँ ह्यूमस वृद्धि होने के कारण वर्षा की बूंदा को आघात होने की क्षमता साधारण मृदा की अपेक्षा ज्यादा हुए, क्योंकि इन वजह से माटी क्षरण है वो भी बहुत कम हुआ, और केंचुए की खाद प्रयुक्त खेत का माँ खरपतवार भी कम लेगा, क्योंकि अगर आप केंचुए से बनेड़ी खाद अगर आप खेत का माँ रेड़ांगा नहीं तो अपने खेत का माँ जगह खरपतवार बे भी कम हो सी और खेत का माँ दिमक भी कम लगेगी। वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि ये है किसान भाइयों, वर्मी कंपोस्ट शेड पेल पोता अपन बनाना पड़ेगा और छायादार जगह अपन चुननी है जहाँ पानी को भराव ना हुए। इनके अलावा अपन वायुवेग दिशा को भी ध्यान रखना पड़ेगा और बिंग हिसाब अपन गड्ढा की जिसकी चौड़ाई है वह रखनी पड़ेगी। खाद की जरूरत के हिसाब अपन गड्ढा क्यारियों की संख्या बा निश्चित करनी है, और गड्ढा या क्यारियों की लंबाई कचरे की आवश्यकता अनुसार अपन रखनी है। चौड़ाई 1.5 मीटर यानी अपन 4 फुट रखनी है। अपशिष्ट अभी पलटा पलटी कर सियाँ तो अपन कितरियाँ कोई असुविधा ना हो। क्यारी या गड्ढे की जिसकी गहराई है किसान भाइयों बा 30-45 सेंटीमीटर यानी अपन 1-1.5 फीट रखनी है। क्यारी या गड्ढे से 2 मीटर ऊंचा अपन छप्पर है वो रखना है। गड्ढा का भरने खातर अपशिष्ट इकट्ठा करना चाहिए। किसान भाइयों एक बात को अपन जरूर ध्यान रखना है कि इनके ऊपर 10 सेंटीमीटर बारीक कचरों मचरों जो को है वो सूखो गिल्लो है वो अपन फिला के एक परत तैयार करनी है और बिन ऊपरों पानी छिड़क देना है, ताकि बिन अंदर 30-40% है वह नमी बरकरार रहे। ठंडो गोबर है वो ले आगे अपन 5 सेंटीमीटर की एक तय और तैयार करनी है, बबिंग ऊपर बिछा देनी है। प्रति वर्ग मीटर खातर अपन केंचुओं की जिसकी संख्या बा 1000 रखनी है। केंचुआ अलग अलग तयगमा अपन ने बिछाना है, क्योंकि ऊपरली तयगमा की बिछा दिया और भी बाद गमा निचली तयगमा भी थोड़ा थोड़ा करके अपन केंचुआ जगह हर परत के अंदर थोड़ा थोड़ा बिछाना है। खास करके एक बात को और ध्यान रखना है कि गर्मी में अपन रोज और सर्दी के माँ 2-3 दिन अपन एक बार पानी है जो जरूर छिड़कना चाहिए, ताकि बिंग नमी बनी रहे, और मिन्ने गमा अपन ने बीच बीच में बिंग उल्टा पलटी भी करके रखनी चाहिए, और जब अपन यहाँ लागे कि केंचुआ की जी की खाद अब तैयार होगी तो अपन ऊपर ऊपर की है थोड़ी थोड़ी केंचुआ की

0: खाद दवा उतार लेनी चाहिए, क्योंकि केंचुए एज ए कावे नमी के हिसाब हूँ नीचे जाता रहे। तो जिये भी नीचे जाओ तो अपन ऊपर ऊपर जी खाद दवा बनेड़ी बात तैयार करके और न्यारी कर लेनी चाहिए। पर अब मैं चालू, राम राम सा, राम राम।
1: श्रोतो, खेतिहर वास्ते कार्यक्रम में अभी तरक्की पसंद काश्तकार भाई उपयोगी जानकारी सुन रहे थे कंपोस्ट खाद का महत्व विषय पर। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। लीजिए सुनिए भंवरलाल सोलंकी के स्वर में एक लोक भजन।

पोस्ट खाद का महत्व विषय पर। यह आकाशवाणी का कोटम सिटी चैनल सूरतगढ़ है। लीजिए सुनिए भंवरलाल सोलंकी के स्वर में एक लोक भजन।

श्रोताओं, अभी आपने भंवरलाल सोलंकी के स्वर में राजस्थानी लोक भजन सुना। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 7:20 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए मानस गान। आज आप सुनेंगे भाग 309 का पाठ।

अंगद की बात सुन रावण को क्रोध हो आता है। सामने खड़ा बंदर बाली पुत्र है ये जानकर रावण सकुचाया, किंतु उसे कुलनाशक कहकर उसकी भर्त्सना करते हुए बोला, तू तो अपने कुलरूपी बांस के लिए अग्नि रूप पैदा हुआ है, अपने को एक तपस्वी का दूत बताते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? तेरा पिता कहाँ है और कैसा है वो? अंगद उत्तर देते हैं, कुछ दिनों बाद तुम स्वयं उनके पास जाकर उनका कुशलक्षेम पूछ लेना। सच है मैं कुल नाशक हूं और तुम कुल रक्षक हो, ऐसी बात तो अंधे और बधिर भी नहीं करते। तुम तो 10 शीश और 20 आंखों वाले हो। अंगद के वचन सुनकर रावण का क्रोध उबल पड़ता है, किंतु उसे अपने नीतिवान और धर्मपालक होने का भ्रम भी है, अतः अपने क्रोध पर काबू पाने का बड़प्पन दिखाता है। अंगद व्यंग्य करते हैं, तुम्हारी धर्मशीलता के बारे में मैंने भी सुना है। तुम्हारी धर्मशीलता का उदाहरण है कि तुमने पराई स्त्री का हरण कर लिया है। अपनी बहन के नाक कान कटे देख धर्म का विचार करके ही तो तुमने क्षमा कर दिया था। बड़े भाग हैं मेरे जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया।

शो तो अभी आप श्री रामचरित मानस का पाठ सुन रहे थे मानस गान कार्यक्रम में। आज आपने भाग 309 का पाठ सुना। स्वर दिया था भूपेंद्र और श्रीकांत पारगावकर ने। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की खड़ी में प्रातः के 7:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात।

0: श्रोताओं, अभी आपने सोतन फिल्म के लिए लता मंगेशकर को सुना। गीत सावन कुमार का था, संगीत उषा खन्ना का। श्रोताओं, जीवन की सबसे बड़ी पहचान केवल हमारी उपलब्धियां नहीं हैं, बल्कि हमारी मानवीय संवेदनाएं हैं। दूसरों के सुख दुख को समझना, करुणा, सहानुभूति, प्रेम, सहयोग और अपनत्व का भाव ही मनुष्य को वास्तव में इंसान बनाता है। आज के तेज रफ्तार और तकनीक प्रधान दौर में यदि कहीं सबसे अधिक आवश्यकता है तो वो इन्हीं संवेदनाओं को जीवित रखने की है। इन्हीं विचारों को केंद्र में रखकर प्रस्तुत है हिंदी वार्ता मानवीय संवेदनाएं। वार्ताकार हैं बीके रानी। आइए ध्यानपूर्वक सुनते हैं।
1: करुणा मानव जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है। ये केवल दया या सहानुभूति का भाव नहीं है, बल्कि दूसरों के दुख को समझकर उसे दूर करने की सच्ची इच्छा का नाम करुणा है। मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाने वाले गुणों में करुणा का स्थान सर्वोच्च है। जिस व्यक्ति के हृदय में करुणा होती है, वह न केवल स्वयं सुखी रहता है, बल्कि समाज में प्रेम, शांति और सद्भाव का वातावरण भी निर्मित करता है। करुणा का अर्थ है दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझना। जब किसी व्यक्ति के मन में किसी दुखी, असहाय या पीड़ित व्यक्ति के प्रति संवेदना उत्पन्न होती है और वह उसकी सहायता करने के लिए प्रेरित होता है, तभी करुणा का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। करुणा मनुष्य के हृदय को कोमल बनाती है तथा उसे स्वार्थ और अहंकार से दूर ले जाती है। भारतीय संस्कृति में करुणा को सदैव उच्च स्थान प्राप्त रहा है। बुद्ध ने करुणा और अहिंसा का संदेश देकर संपूर्ण मानवता को नई दिशा प्रदान की। उनका मानना था कि संसार में समस्त प्राणी दुख से मुक्ति चाहते हैं, इसलिए हमें सभी के प्रति प्रेम और करुणा का व्यवहार करना चाहिए। इसी प्रकार महावीर स्वामी ने भी जीव दया को धर्म का मूल माना। भारतीय संतों और महापुरुषों ने करुणा को मानव जीवन का आधार बताया है। करुणा और अहिंसा की शिक्षा भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग रही है। करुणा केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है, हमें पशु पक्षियों, वृक्षों और समस्त जीव जगत के प्रति भी करुणा रखनी चाहिए। जब हम किसी घायल पक्षी को सहायता करते हैं, किसी भूखे पक्षी को भोजन देते हैं या पर्यावरण की रक्षा करते हैं, तब हम करुणा का ही पालन कर रहे होते हैं। आज के समय में पर्यावरण संरक्षण और पशु संरक्षण की भावना भी करुणा का ही विस्तृत रूप है। वर्तमान युग में भौतिकवाद और प्रतिस्पर्धा के कारण ही मनुष्य धीरे धीरे संवेदनाहीन होता जा रहा है। लोग अपने स्वार्थ में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें दूसरों के दुख और कष्टों की ओर ध्यान देने का समय ही नहीं है। समाज में बढ़ती हिंसा, द्वेष, शोषण और असमानता का मुख्य कारण करुणा का अभाव है। यदि मनुष्य अपने व्यवहार में करुणा को स्थान दे तो अनेक सामाजिक समस्याओं का समाधान स्वतः हो सकता है। करुणा व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करती है। करुणामय व्यक्ति दूसरों की सहायता करने में आनंद अनुभव करता है। वह जाति, धर्म, भाषा और वर्ग के भेदभाव से ऊपर उठकर सभी को समान दृष्टि से देखता है। करुणा मनुष्य को आदर, विनम्र और सहनशील बनाती है। ये केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए भी आवश्यक है। विद्यालयों और परिवारों

में बच्चों को करुणा का संस्कार दिया जाना चाहिए। यदि बचपन से ही बच्चों को सेवा, सहानुभूति, व्यवहार या किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना भी करुणा का ही रूप होता है। जब हम किसी की बात ध्यान से सुनते हैं, उसकी समस्याओं को समझते हैं और उनके साथ खड़े होते हैं, तब हम वास्तविक करुणा का परिचय देते हैं। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसा हम स्वयं अपने लिए चाहते हैं, करुणा की भावना को मजबूत बनाता है। अंततः कहा जा सकता है कि करुणा मानवता की आत्मा है। जिस समाज में करुणा का विकास होता है, वहाँ शांति, प्रेम और भाईचारे का वातावरण स्थापित होता है। आज के युग में करुणा की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में करुणा को अपनाए तो संसार अधिक सुंदर, शांतिपूर्ण और मानवीय बन सकता है। जैसे मानव जीवन में अनेक गुणों का महत्व है, वैसे ही इसमें से एक गुण है क्षमा। इसका भी अपना विशेष महत्व है। क्षमा का स्थान भी अत्यंत ऊंचा माना गया है। क्षमा वह महान गुण है जो मनुष्यों को क्रोध, घृणा और प्रतिशोध की भावना से मुक्त करता है। ये केवल दूसरों की गलतियों को माफ करना ही नहीं, बल्कि अपने मन को द्वेष और कटुता से मुक्त करना भी है। भारतीय संस्कृति में क्षमा को धर्म, करुणा और मानवता का आधार माना गया है। कहा भी गया है, क्षमा वीरस्य भूषणम, अर्थात क्षमा वीरों का आभूषण है। आज के समय में जब समाज में तनाव, प्रतिस्पर्धा, हिंसा, वैमनस्य बढ़ता जा रहा है, तब क्षमा का महत्व और भी बढ़ जाता है। क्षमा मनुष्य के व्यक्तित्व को महान बनाती है। क्षमा का सामान्य अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध, भूल या गलती को बिना प्रतिशोध की भावना के स्वीकार करना और उसे माफ कर देना। क्षमा का संबंध केवल बाहरी व्यवहार से नहीं, बल्कि आंतरिक भावनाओं से भी होता है। जब मनुष्य अपने मन से क्रोध, घृणा और बदले की भावना को निकाल देता है, तभी सच्ची क्षमा संभव होती है। क्षमा दुर्बलता नहीं देता, बल्कि सच्ची क्षमा आत्मबल और सहनशीलता का प्रतीक है। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण कर सकता है, वही वास्तविक अर्थ में क्षमाशील कहलाता है। भारतीय संस्कृति में क्षमा को महान सद्गुण माना गया है। हमारे धर्मग्रंथों, महापुरुषों और संतों ने सदैव क्षमा का उपदेश दिया है। महावीर ने अहिंसा और क्षमा को जीवन का मूल सिद्धांत बताया है। जैन धर्म में क्षमा वाणी का विशेष महत्व है, जिसमें लोग एक दूसरे से अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगते हैं। बुद्ध ने करुणा और क्षमा के साथ क्षमा को भी मानव जीवन का आधार माना। उन्होंने कहा कि क्रोध से क्रोध नहीं, बल्कि प्रेम और क्षमा से जीता जा सकता है। महात्मा गांधी जी ने क्षमा को महात्मा का प्रतीक माना। उन्होंने कहा कि कमजोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा करना शक्तिशाली व्यक्ति का गुण है। बहुत लोग ये समझते हैं कि क्षमा करना कमजोरी है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। क्षमा करने के लिए अत्यधिक साहस, धैर्य और आत्मसंयम की आवश्यकता होती है। प्रतिशोध लेना सरल है, किंतु अपने क्रोध को नियंत्रित करके किसी को माफ करना कठिन कार्य है। इतिहास में अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां महान व्यक्तियों ने अपने शत्रुओं को भी क्षमा किया। इससे ये स्पष्ट होता है कि क्षमा कायरता नहीं, बल्कि वीरता और महानता का प्रतीक है। जो व्यक्ति अपमान, पीड़ा या अन्याय सहकर भी शांति और धैर्य बनाए रखता है, वही सच्चा वीर कहलाता है। मानव जीवन में छोटी छोटी गलतियां होना स्वाभाविक है। यदि प्रत्येक व्यक्ति दूसरों की गलतियों का बदला लेने लगे, तो समाज में

अशांति फैल जाएगी। क्षमा करने से व्यक्ति के जीवन में अनेक बदलाव आते हैं। क्षमा करने से मन का बोझ हल्का होता जाता है। क्रोध और द्वेष व्यक्ति को भीतर से परेशान करते हैं, जबकि क्षमा मन में शांति और संतोष उत्पन्न करते हैं। आज के अशांत और तनावपूर्ण वातावरण में क्षमा की भावना को अपनाना समय की आवश्यकता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में क्षमा, सहिष्णुता और करुणा को स्थान दे तो परिवार, समाज और राष्ट्र में प्रेम तथा सद्भाव का वातावरण स्थापित हो सकता है। भारतीय दर्शन में मोक्ष को मानव जीवन का परम लक्ष्य माना गया है। मनुष्य केवल भौतिक सुख सुविधाओं के लिए जन्म नहीं लेता, बल्कि उसका जीवन एक उच्च उद्देश्य की ओर अग्रसर होता है। भारतीय संस्कृति में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को चार पुरुषार्थ कहा गया है। इसमें मोक्ष को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति, आत्मा का परमात्मा से मिलन तथा समस्त दुखों और बंधनों से छुटकारा। ये केवल धार्मिक अवधारणा नहीं बल्कि जीवन की गहन आध्यात्मिक अनुभूति है। आज का मनुष्य भौतिकता, प्रतिस्पर्धा, तनाव और इच्छाओं के जाल में उलझा हुआ है। ऐसे समय में मोक्ष की अवधारणा उसे आंतरिक शांति, आत्मज्ञान और जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर प्रेरित करती है। मोक्ष पर चिंतन मनुष्य को ये समझने में सहायता करता है कि संसार की वस्तुएं क्षण भंगुर हैं और स्थायी सुख केवल आत्मिक उन्नति में निहित है। मोक्ष का अर्थ है, मोक्ष शब्द संस्कृत की मुच्छ धातु से बना है, जिसका अर्थ है मुक्त होना या छुटकारा पाना। मोक्ष का तात्पर्य सांसारिक बंधनों, अज्ञान, मोह, लोभ, क्रोध और अहंकार से मुक्ति प्राप्त करना है। भारतीय दर्शन के अनुसार आत्मा अमर है और वह अनेक जन्मों के चक्र से गुजरती है। कर्मों के आधार पर जीव जन्म लेता है और मृत्यु के पश्चात पुनः जन्म प्राप्त करता है। इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना ही मोक्ष कहलाता है। मोक्ष केवल मृत्यु के बाद मिलने वाली अवस्था नहीं है, बल्कि जीवन अवस्था में भी व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर आंतरिक स्वतंत्रता का अनुभव कर सकता है। जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है और स्वयं को शारीरिक तथा संसार से अलग समझता है, तब वह मोक्ष के निकट पहुंच जाता है। सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष और प्रकृति अलग अलग तत्व है। जब पुरुष स्वयं को प्रकृति से पृथक जान लेता है, तब उसे मोक्ष प्राप्त होता है। पतंजलि के योग दर्शन में चित्त वृत्तियों का विरोध मोक्ष का साधन माना गया है। योग के 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं। बौद्ध धर्म में मोक्ष को निर्वाण कहा गया है। निर्वाण का अर्थ है तृष्णा, मोह और दुखों का अंत। बुद्ध ने मध्यम वर्ग और अष्टांगिक मार्ग के द्वारा निर्वाण प्राप्ति का मार्ग बताया। धर्म के अनुसार कर्मों के बंधन से आत्मा को मुक्त करना ही मोक्ष है। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और तप के माध्यम से आत्मा शुद्ध होकर मोक्ष प्राप्त करती है। भारतीय चिंतन में कर्म का विशेष महत्व है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करता है। अच्छे कर्म शुभ कर्म फल देते हैं और बुरे कर्म दुख का कारण बनते हैं। कर्मों के कारण ही आत्मा पुनर्जन्म लेती है। भगवत गीता में भगवान ने निष्काम कर्म का उपदेश दिया है। उनका कहना है कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए, लेकिन फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जब व्यक्ति फल की आसक्ति छोड़ देता है, तब वह धीरे धीरे मोक्ष की ओर बढ़ता है। कर्म योग का सिद्धांत हमें सिखाता है कि संसार

0: संसार में रहते हुए भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे परंतु उसमें असक्त ना हो, यही निष्काम भावना मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। मोक्ष भारतीय संस्कृति और दर्शन की सर्वोच्च अवधारणा है। ये केवल जन्म मरण के चक्र से मुक्ति नहीं बल्कि आत्मज्ञान, आंतरिक शांति और परम सत्य की प्राप्ति का मार्ग है। ज्ञान, कर्म, भक्ति और वैराग्य इसके प्रमुख साधन हैं।
1: प्रेम मानव जीवन का सबसे पवित्र, कोमल और महान भाव है। ये केवल एक भावना नहीं बल्कि जीवन का आधार है। प्रेम के बिना मनुष्य का जीवन नीरस, शुष्क और अर्थहीन हो जाता है। जिस शरीर को जीवित रखने के लिए भोजन और जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आत्मा को जीवित रखने के लिए प्रेम आवश्यक है। प्रेम मानव को मानवता, करुणा, त्याग, सहानुभूति और सेवा की प्रेरणा देता है। प्रेम का अर्थ केवल स्त्री और पुरुष के बीच आकर्षण नहीं है। माता पिता का स्नेह, भाई बहन का अपनापन, मित्रता की निष्ठता, गुरु का वात्सल्य, देश के प्रति समर्पण और ईश्वर के प्रति भक्ति, ये सभी प्रेम के विभिन्न रूप हैं। प्रेम ही वह शक्ति है जो मनुष्य को स्वार्थ से ऊपर उठाकर परोपकार और मानवता की ओर ले जाती है। प्रेम को जीवन की सबसे बड़ी शक्ति माना गया है। भारतीय संतों, कवियों और दार्शनिकों ने प्रेम को ईश्वर की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन बताया है। प्रेम का शाब्दिक अर्थ है किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार के प्रति गहरा लगाव और आत्मीयता। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। उसमें पाने की इच्छा कम और देने की भावना अधिक होती है। प्रेम में अहंकार, द्वेष और स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होता। जब मनुष्य किसी से प्रेम करता है तब वह उसके सुख दुख को अपना समझने लगता है। प्रेम मनुष्य के भीतर करुणा, दया और संवेदनाशीलता का विकास करता है। ये मनुष्य को उदार बनाता है तथा उसके व्यक्तित्व को ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। प्रेम का वास्तविक स्वरूप त्याग और समर्पणता में दिखाई देता है। जहाँ केवल स्वार्थ हो वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। सच्चे प्रेम में विश्वास, सम्मान और सहनशीलता का विशेष महत्व होता है। प्रेम किसी बंधन में नहीं बंधता, वह स्वतंत्रता और आत्मीयता का नाम है। पारिवारिक रूप से देखा जाए तो आज के समय में रिश्तों की नींव भी प्रेम पर ही टिकी हुई है, लेकिन देखा जाता है कि प्रेम की कमी के कारण दिन व दिन रिश्तों में कड़वाहट आती जा रही है और एक दूसरों को दूर कर दिया है। अगर प्रेम है भी तो स्वार्थ का प्रेम है। इसलिए परिवारों में देखा जाता है कि छोटी छोटी बातों में नफरत, ईर्ष्या, हिंसा बढ़ती ही जा रही है। इसलिए अगर हम खुद को आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं तो वह प्रेम धीरे धीरे हमारे जीवन में वापस आ जाता है, क्योंकि आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रेम ही है। जब हम ईश्वर से खुद को जोड़ते हैं तो हम प्रेम से भरपूर हो जाते हैं, जिस कारण हम निस्वार्थ प्रेम दूसरों को भी दे सकते हैं। प्रेम मानव जीवन को सार्थक बनाता है। जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेम नहीं होता उसका जीवन अकेलापन और निराशा से भर जाता है। प्रेम मनुष्य को मानसिक शांति प्रदान करता है। ये तनाव, क्रोध और घृणा को दूर करता है। प्रेम जीवन की सबसे सुंदर और अमूल्य भावना है। ये मनुष्य को मानव बनाता है और उसके जीवन को सार्थकता प्रदान करता है। प्रेम में वह शक्ति है जो घृणा को समाप्त कर सकती है, शत्रुता को मित्रता में बदल सकती है और समाज में शांति स्थापन कर सकती है।
2: श्रोताओं, अभी अपनी वार्ता सुनी। विषय था मानवीय संवेदनाएं। वार्ताकार थी बी के रानी।

श्रोताओं, सच तो यह है कि मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान उसकी संवेदनशीलता है। और जब हम किसी के दुख में सहभागी बनते हैं, किसी की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हैं और बिना किसी स्वार्थ के सहायता का हाथ बढ़ाते हैं, तभी मानवता अपने वास्तविक स्वरूप में दिखाई देती है। और लीजिए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं इस गीत के साथ। शोर फिल्म का नगमा सुनिए लता, मुकेश और साथियों के स्वर में।

श्रोताओ, अभी आप सुपर भारत कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के कोटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने वाले हैं। अब समाचार प्रभात का रिले हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

0: निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू। दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश। फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने। इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग के लिए चर्चा करेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली शीट ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई थी, इसलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार 10वीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% विद्यार्थी सफल रहे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले दो दशक में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है।
2: भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 13 साल पहले दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी और अब ये दुनिया की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। हमने देखा है कि मजबूत आर्थिक संकेतकों के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। हमारे यहाँ महंगाई दर बहुत कम है और पिछले कई सालों से हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। हमारी बैंकिंग प्रणाली मजबूत है और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगभग 1%
1: श्री गोयल ने कहा कि भारत का बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र, मजबूत नवाचार व्यवस्था और आर्थिक सुधार दुनिया भर के निवेशकों और उद्यमियों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। जंजीबार के राष्ट्रपति और क्रांतिकारी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मिम्वई भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। आज वे नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत तंजानिया संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। डॉक्टर हुसैन अली मिम्वई आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वैश्विक दक्षिण के साझेदार के रूप में भारत और तंजानिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से घनिष्ठ मित्रता और सहयोग के संबंध हैं। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडवर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। वे कल विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। श्री वास्केज का बुधवार को नई दिल्ली में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और पनामा साझा मूल्यों, आपसी हितों और सद्भावना पर आधारित संबंध साझा करते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल एक्स

0: एट ए आई आर न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के जगदीशपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम में 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,460 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल बर्बाद होने से राहत देने के लिए किसानों को ये राशि दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धि बताया है। पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। उन्होंने कहा कि इस योजना का आकलन राजनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि उसके परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ गया है।
2: मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों के लिए अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने, जिला आपदा परिचालन केंद्रों को 24 घंटे सक्रिय रहने तथा राहत एवं बचाव दलों को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भूस्खलन संभावित मार्गों पर आवश्यक मशीनरी और संसाधन उपलब्ध रखने को कहा गया है। इस बीच सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने प्रदेशवासियों, चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से मौसम की चेतावनियों का पालन करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मूसलाधार बारिश जारी है।
3: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन, बसरमौर में येलो अलर्ट जबकि अन्य 3 जिलों कांगड़ा, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने कल 20 जुलाई को चंबा, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिलों में और 21 जुलाई को चंबा, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम के अलर्ट को देखते हुए राज्य सरकार ने लोगों से नदी नालों व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: आकाशवाणी से पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला की अगली कड़ी में हम सुविख्यात निर्देशक और अभिनेता आर माधवन से बातचीत करेंगे। आर माधवन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
4: इस अवार्ड से रियलाइज किया कि एक प्रतिष्ठा तो है ही, साथ में एक जिम्मेदारी है कि भाई जो काम आप करते आ रहे हो ये तो इसकी शुरुआत है और आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी और फिर जिस मर्यादा के साथ आप आज तक रहे उससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ मेरे सारे लोगों के लिए जिन्होंने एक तो मुझे ब्रेक दिया और फिर इंडस्ट्री में इतने सारे रोल एंड मेरे ऑडियंस की जो इतने प्यार से मुझे आज तक देखते आ रहे। मुझे लगता है कि वो दिशा में हमें जाना बहुत जरूरी है। एक प्रोग्रेसिव इंडिया की जो

0: कहानी है वो हमें दिखाना चाहिए, बनाना चाहिए, वो हमारे फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए।
1: ये बातचीत आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल से आज सवेरे 9:10 पर प्रसारित की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल मुकाबले में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। फीफा विश्व कप को लेकर भारत में खेल प्रेमियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। फुटबॉल का इतिहास आज रात चाहे भारत से हजारों किलोमीटर दूर न्यू जर्सी में क्यों ना लिखा जा रहा हो, लेकिन कोलकाता में भी इस खेल का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। भले ही भारत विश्व कप का हिस्सा नहीं है, फिर भी पूरे बंगाल में फुटबॉल प्रेमी इसके जश्न में डूबे हुए हैं। शहर को नीले और सफेद रंगों से रंगा गया है और हर जगह लियोनेल मेसी की जर्सी दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल खेल विभाग ने कोलकाता में नंदन और एकतारा ओपन एयर स्टेज के अलावा कई जिलों में फाइनल की पब्लिक स्क्रीनिंग की व्यवस्था की है। शहर के क्लबों, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टीप्लेक्स में बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं और फैंस अपने पसंदीदा टीम की जीत के लिए पूजा पाठ भी कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज होने वाले फाइनल में स्पेन या अर्जेंटीना कौन बाजी मारता है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
2: पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा और भारत और इंग्लैंड के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का निर्णायक और तीसरा मुकाबला आज लंदन की लॉर्ड्स में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 से शुरू होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। निजी रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है स्पेस में धाक, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में। हिंदुस्तान की सुर्खी है वह विक्रम, पहली उड़ान में मिशन पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एरोस्पेस की टीम को बधाई दी। जनसत्ता के अनुसार विक्रम 1 ने उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाया। दैनिक जागरण ने गृहमंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है बंगाल में बेहद संवेदनशील चिकन नेक की होगी अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था। पंजाब केसरी ने नागरिकता और चुनाव आयोग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है पिछले कई सालों में नागरिकता कानून में कई बार बदलाव किए गए हैं जिससे जन्म से नागरिकता देने वाले नियमों में बड़े बदलाव हुए। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है शिंदे गुट में उद्धव के सांसदों के विलय को मंजूरी। लोकसभा में NDA सांसदों की संख्या बढ़कर 298 हुई, बागी तृणमूल सांसद अलग बैठेंगे। दैनिक भास्कर के अनुसार CBSE की 10वीं की दूसरी परीक्षा ने बदली तस्वीर, रिजल्ट 96.78 प्रतिशत हुआ। पास होने वाले 23.92 लाख से अधिक 3 लाख छात्रों के अंक सुधरे, 76,000 फेल थे अब पास। हिंदुस्तान की सुर्खी है ईरान ने अमेरिका के साथ समझौता निलंबित किया, खामनेई ने कहा अमेरिका को कड़ा सबक खिलाएंगे। नवभारत टाइम्स के अनुसार आर्टिकल 370 के बेस्ट फीचर फिल्म यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड। श्रीकांत बेस्ट हिंदी फिल्म, चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन और भ्रम युगम के लिए मम्मूटी बेस्ट एक्ट्रेस। दैनिक जागरण के मुताबिक सड़क हादसे को रोकने के लिए बेहतर रोड डिजाइन पर जोर, गुणवत्ता रोड डिजाइन ऑडिटिंग प्रशिक्षण के लिए भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी को मिली जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने नया ट्रेंड शीर्षक से दिया है नई पीढ़ी में गोल्ड के इमोशन कम, परिवार की परंपरा छोड़ निवेश पर ध्यान।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या AI से बनी OMR शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। The headlines. Government convenes all party meetings.

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। हुकूमत ने कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास से पहले आज कुल पार्टी मीटिंग बुलाई है। इम्तहानात से मुतालिक कौमी एजेंसी एनटीए ने तलबा और वालिदैन को खबरदार किया है कि जांच पड़ताल के लिए फर्जी या एआई से तैयार की गई ओएमआर शीट्स जमा कराने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सीबीएसई ने 10वीं जमात के दूसरे बोर्ड इम्तहान के नतीज का ऐलान कर दिया है। खराब मौसमी हालात की पेशगोई के तनाजुर में अमरनाथ जी और वैष्णो देवी यात्राएं आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई हैं। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में तीसरे मकाम के सनसनीखेज मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर कांसे का तमगा जीता, जबकि फाइनल में

0: में रखें। वहीं आफा से निमटने के रियासती सेक्रेटरी विनोद कुमार सुमन ने रिहायशियों, चारधाम यात्रियों और सयाहों से अपील की है कि वो मौसम से मुतालिक एडवाइजरी पर अमल करें और गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना बेगम।
1: हिमाचल प्रदेश में जुनूब मगरबी मानसून के सरगर्म रहने के साथ ही रियासत के बेशतर हिस्सों में कल रात से रुक रुक कर बारिश जारी है। शिमला के मौसमियात के मरकज ने मुख्तलिफ जिलों में शदीद बारिश के मद्देनजर 21 जुलाई तक ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों से एहतियात बरतने के लिए कहा है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने गंगा के तराई वाले मगरबी बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड में आज तेज से बहुत तेज बारिश की पेशगोई के सबब रेड अलर्ट जारी किया है। IMD ने हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कल तक तेज बारिश की पेशगोई की है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, केरला, माहे, उड़ीसा और शिमाल मशरकी भारत के हिस्सों में इस मुद्दत के दौरान इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। दिल्ली में IMD ने बादल छाए रहने और हल्की फुल्की बारिश की पेशगोई की है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जंजीबार के सदर और इनकलाबी कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर हुसैन अली मिनयी, जो भारत के चार रोजा सरकारी दौरे पर हैं, आज नई दिल्ली में नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमा भारत तंजानिया ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे और मुस्तकबिल में तआवुन के नए मौके तलाश करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर भी आज दौरे पर आए मेहमान से मुलाकात करेंगे। वजारत खारजा ने कहा है कि आलमी जुनूब में भारत और तंजानिया के दरमियान बहुत से शोबों में करीबी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। अमरीकी फौज ने उर्दुन में एक हमले के लिए पासदारा ने इनकलाब के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए फिर से फजाई हमले किए हैं। पासदारा ने इनकलाब के हमले में दो अमरीकी फौजी अहलकार हलाक, एक लापता और चार फौजी जख्मी हालत में इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किए गए। अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा कि ये हमले ईरान की फौजी सलाहियत को मजीद कम करने के लिए किए गए ताकि आबनाए हुरमुज के रास्ते तेल से लदे जहाजों की आमद रफ्त को रोका जा सके। अमरीका के स्टेट डिपार्टमेंट ने मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र दुनिया भर में अमरीकी शहरियों के लिए सफ़र के सिलसिले में एहतियात बरतने की गरज से एडवाइजरी जारी की है। उसने खित्ते में अमरीका और ईरान की तरफ से जारी फौजी कार्रवाइयों के पेश नज़र बढ़ती हुई कशीदगी के साथ सिक्योरिटी के पेचीदा सूरत हाल के लिए खबरदार किया है। हम अपनी सीरीज आकाशवाणी पर लोगों के पद्म की अगली किस्त में मारूफ अदाकार और हिदायतकार आर माधवन से बातचीत करेंगे, जो बावकार पद्मश्री एजाज याफ्ता हैं।
2: इस अवार्ड से रियलाइज किया कि एक प्रतिष्ठा तो है ही, साथ में एक जिम्मेदारी है कि भाई जो काम आप करते आ रहे हो ये तो इसकी शुरुआत है और आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी और फिर जिस मर्यादा के साथ आप आज तक रहे उससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ मेरे सारे लोगों के लिए जिन्होंने एक तो मुझे ब्रेक दिया और फिर इंडस्ट्री में इतने सारे रोल, एंड मेरे ऑडियंस की जो इतने प्यार से मुझे आज तक देखते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि वो दिशा में हमें जाना बहुत जरूरी है। एक प्रोग्रेसिव इंडिया की जो कहानी है वो हमें दिखाना चाहिए, बनाना चाहिए, वो हमारे फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए।
1: आप इस गुफ्तगू को आज 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुबह 9:10 से सुन सकते हैं। ये प्रोग्राम आप न्यूज़ ऑन AIR ऐप और न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। रिवेन्यू इंटेलिजेंस के डायरेक्टोरेट DRI ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर मुल्क भर में कार्रवाइयां अंजाम दी हैं, जिसके नतीजे में बैरून मुल्क से स्मगल किया गया 15 किलोग्राम सोना, 20 किलोग्राम चांदी जब्त की गई है, जिसकी कीमत तकरीबन 22 करोड़ रुपए बताई जाती है। साथ ही 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की भारतीय करेंसी भी जब्त की गई है। वजारत खजाना ने बताया कि इन कार्रवाइयों के दौरान 13 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। उसने मजीद बताया कि रेवेन्यू इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट के अफसरों ने नई दिल्ली में एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी, जिसमें स्मगल की गई कीमती धातें और नकद रकम जब्त की गई। मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव भोपाल जिले के जगदीशपुर में आज एक बड़ी तकरीब में मुनाकिद करेंगे। वो 1460 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में बराह रास्त मुंतकिल करेंगे। ये रकम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अदा की जाएगी। फीफा आलमी कप में कल रात मियामी स्टेडियम में तीसरी पोजीशन के लिए खेले गए एक सनसनीखेज मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 4-6 से हराने के बाद कांसी का तमगा जीत लिया है। दूसरी जानिब आज न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान आलमी कप का फाइनल मैच खेला जाएगा।

0: जाएगा। मैच भारतीय वक्त के मुताबिक देर रात 12:30 बजे शुरू होगा। भारत की फुटबॉल की राजधानी समझे जाने वाले कोलकाता में फुटबॉल शायकीन अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान आज देर रात होने वाले सनसनीखेज आलमी कप का फाइनल मैच देखने के लिए पूरे जोशो जज्बे और बेसब्री से इस मैच को देखने के लिए बेहद मुंतजर हैं। शहर की सड़कों पर फुटबॉल शायकीन अपनी अपनी पसंदीदा टीमों की जर्सियां पहने हुए हैं। मगरबी बंगाल की हुकूमत मुख्तलिफ अहम मकामात और रियासत के सभी ज़िलों में फुटबॉल मैच दिखाने के लिए बड़े स्क्रीन्स का एहतमाम कर रही है। मज़ीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: आज रात कोलकाता जागता रहेगा और पूरे बंगाल में ऐसा ही होगा। फीफा वर्ल्ड कप भले ही हजारों मील दूर न्यू जर्सी में हो रहा हो, लेकिन इसका जोश रियासत के हर घर तक पहुंच गया है। मोहल्ले नीले और सफ़ेद रंग से सजे हुए हैं और मैसी की जर्सी हर जगह नज़र आ रही है। मगरबी बंगाल के महकमा खेल ने कोलकाता के नंदन और एक तारा में ओपन एयर स्टेज का इंतजाम किया है ताकि फुटबॉल का फाइनल मैच लोग अवामी स्क्रीनिंग पर देख सकें। क्लब्स, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टीप्लेसेस में बड़ी बड़ी स्क्रीनिंग लगाई गई हैं। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: इस दौरान दिल्ली की वज़ीर आला मोहतरमा रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि शहर के रेस्तरां, कैफ़े और दीगर अहल मराकज़ कल सुबह 4 बजे तक खुले रहेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आला ने कहा कि इस फैसले से फुटबॉल के शायकीन को यकजा होने और खेल से लुत्फानंदोज होने का मौका मिलेगा। नीज शहर की रंगारंग नाइट लाइफ और मकामी कारोबार को फ़रोग हासिल होगा। भारत और इंग्लैंड के दरमियान एक रोज़ा बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज का तीसरा और फैसलाकुन मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। ख्वातीन कुश्ती में भारतीय पहलवान काजल ने कल हंगरी में बुडापेस्ट दर्जाबंदी टूर्नामेंट में ख्वातीन के 76 किलोग्राम जुमरे में सोने का तमगा जीता है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना बेगम।
2: शुक्रिया आसिया। राजधानी से शाया होने वाले मुख्तलिफ उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। बेशतर उर्दू अखबारात ने खलाई शोबे में भारत की कामयाबी से मुतालिक खबर को शह सुर्खी बनाया है। रोज़नामा इनकलाब की शह सुर्खी है, भारत ने खलाई शोबे में नई तारीख रकम की, पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम 1 कामयाबी से खला में रवाना, वज़ीर आज़म मोदी ने मुबारकबाद दी। रोज़नामा इनकलाब ने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है कि भारत दहशतगर्दी को हर महाज पर जवाब देने की ताकत रखता है। रोज़नामा प्रताप की अहम खबर है, हरियाणा हुकूमत महत्वाकांक्षी जंगल मित्र स्कीम के तहत 50,000 जंगल मित्र बनाएगी ताकि आम लोग माहौलियात की बेहतरी में अपना तआवुन दे सकें और ज़रिया मौश भी हासिल कर सकें। तकरीबन सभी अखबारात ने फीफा आलमी कप के फाइनल की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास से पहले आज कुल पार्टी मीटिंग बुलाई है। इम्तहानात से मुतालिक कौमी एजेंसी NTA ने तलबा और वालिदैन को खबरदार किया है कि जांच पड़ताल के लिए फर्जी या AI से तैयार की गई OMR शीट जमा कराने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। CBSE ने 10वीं जमात के दूसरे बोर्ड इम्तहान के नतायज का ऐलान कर दिया है। खराब मौसमी हालात की पेशगोई के तनाजुर में अमरनाथ जी और वैष्णव देवी यात्राएं आरजी तौर पर मुअत्तल कर दी गई हैं। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन और अर्जेंटीना का मुकाबला आज रात अमरीका के न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
3: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी की कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रातः 8:45 हो चुके हैं। लीजिए सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनिए कुछ भक्ति रचनाएं।

0: श्रोताओं, सुगम संगीत कार्यक्रम में अभी आप भक्ति रचनाएं सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रातः के 9 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र कल से। सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने लोगों से वित्तीय लेनदेन से संबंधित संदेश और फोन कॉल से सावधान रहने की अपील की। आरजीएचएस में अनियमितताओं पर कार्रवाई जारी। 58 एलोपैथिक और 11 आयुर्वेदिक फार्मा स्टोर्स को योजना से बाहर किया। और सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित किए। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। इससे पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील करेगी। 13 अगस्त तक चलने वाले सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित होने की संभावना है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कहा है कि राजस्थान पुलिस प्रदेश में बढ़ती साइबर ठगी और संगठित अपराधों पर लगाम लगाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पुलिस महानिदेशक ने कल जयपुर में मीडिया से बातचीत में कहा कि 1930 हेल्पलाइन के विस्तार और 24/7 संचालन के लिए काम किया जा रहा है। साथ ही राज्य के सभी जिलों में साइबर पुलिस थाने भी चलाए जा रहे हैं। श्री शर्मा ने लोगों से वित्तीय लेनदेन से संबंधित संदेश और फोन कॉल से सावधान रहने की अपील की।
2: अपने नागरिकों से भी अनुरोध है कि इस तरह की जो कॉल्स आती हैं कि आपको जल्दी ही 100% या 200% रिटर्न्स मिलेंगे, इस शेयर में आप इन्वेस्ट करें या इस ट्रेडिंग ऐप को आप डाउनलोड करें, इसी तरह से जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो बीच बीच में इस तरह के मैसेज अगर आते हैं, और खास तौर से जहां भी पैसे से कोई आपके पास डिमांड आती है कि यदि आप इतना पैसा इसमें डालेंगे तो आपको हम ये चीज दे देंगे, या इतना पैसा डालेंगे तो आपको ये जॉब मिल जाएगा, काम विदेश भेज देंगे, तो उससे आपको बचने की बहुत आवश्यकता है।
1: इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस हेडक्वार्टर में साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट को लेकर बैठक की। बैठक के दौरान साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर R4C की प्रगति की समीक्षा की गई। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया ने

आज नई दिल्ली में आयोजित 82वें संडे ऑन साइकिल अभियान में भाग लिया। इसमें देश भर के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के कर्मियों ने हिस्सा लिया। मीडिया से बातचीत में श्री मांडविया ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों ने देश भर में 15,000 से अधिक स्थानों पर साइकिल चलाकर इस अभियान में भाग लिया। उन्होंने कहा कि इस पहल ने स्वास्थ्य, फिटनेस और पर्यावरण के प्रति लोगों को सजग रहने का संदेश दिया है। उन्होंने नागरिकों से साइकिल चलाने को अपनी जीवन शैली का नियमित हिस्सा बनाने का आग्रह किया। खराब मौसम की चेतावनी के मद्देनजर अमरनाथ यात्रा आज से जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटाल दोनों रास्तों से रोक दी गई है। मौसम विज्ञान विभाग ने अगले कुछ दिनों में खराब मौसम के अनुमान के बाद तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। वहीं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम की चेतावनी के बाद वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में हिंदी फिल्म आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। कल नई दिल्ली में इन पुरस्कारों की घोषणा की गई। ममूटी और कार्तिक आर्यन को ब्रह्मयुग्म और चंदू चैंपियन फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का संयुक्त राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। यामी गौतम को फिल्म आर्टिकल 370 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्य सरकार राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS में पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लगातार कठोर कदम उठा रही है। इसी कड़ी में 58 एलोपैथिक और 11 आयुर्वेदिक फार्मा स्टोर्स को योजना की सूचीबद्ध लिस्ट से हटाया गया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने बताया कि इनमें से 14 एलोपैथिक फार्मा स्टोर्स के औषधि लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। बाकी 44 एलोपैथिक और 11 आयुर्वेदिक फार्मा स्टोर्स के ड्रग लाइसेंस निरस्त करने के लिए अतिरिक्त औषधि नियंत्रक और संबंधित विभाग को पत्र लिखा गया है। साथ ही प्रचलित बाजार दरों से अत्यधिक अधिक मूल पर दवा बिलिंग करने वाले 11 अनुमोदित फार्मेसी स्टोर्स का TMS अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी ने इम्पैनल्ड फार्मेसीज के लिए आवश्यक निर्देश भी जारी किए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी अपने नतीजे डिजीलॉकर परीक्षा परिणाम पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार CBSE ने इस साल से 10वीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं शुरू की थी। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक आयोजित की गई। उसके बाद दूसरी बोर्ड परीक्षा इस साल 15 मई से 21 मई तक हुई। CBSE ने बताया कि इस साल की मुख्य और दूसरी बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों को मिलाकर कुल 96.78% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। एजेंसी ने कहा है कि OMR शीट की जांच के लिए केवल असली OMR ही जमा करें। फर्जी या AI से बनाई गई OMR शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। NTA के अनुसार हाल ही के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई OMR शीट नकली पाई गई हैं, इसलिए अब हर शिकायत और हर OMR शीट की सावधानी से जाँच की जा रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 कल सफलतापूर्वक संपन्न हुई। 12 जुलाई से शुरू हुई ये परीक्षा कुल 9,651 पदों के लिए आयोजित की गई थी। इसके लिए 27 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा के सफल संचालन के लिए शिक्षा विभाग और पुलिस विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था। परीक्षा में नकल और फर्जी परीक्षार्थियों की रोकथाम के लिए सतर्कता दल भी गठित किए गए थे।
करौली आज अपना 29वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसे लेकर जिलेवासियों में उत्साह और उमंग का माहौल है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस अवसर पर जिले भर में विकास, स्वच्छता

0: जागरूकता पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
1: स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित विकास गोष्ठी में जिले की उपलब्धियों चुनौतियों पर्यटन कृषि उद्योग रोजगार और रेल संपर्क जैसी भविष्य की संभावनाओं पर सार्थक चर्चा हुई। देर सांय रणगवा तालाब आकर्षक रोशनी से जगमगा उठा जहां दीपदान और सहनाई वादन ने सांस्कृतिक माहौल को यादगार बना दिया। वहीं स्वच्छ करौली सुंदर करौली अभियान के तहत शहर में विशेष सफाई सजावट और रोशनी की गई। आज साइकिल रैली बृहद वृक्षारोपण पेंटिंग प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित अनेक आयोजन होंगे। बांके वैली शर्मा आकाशवाणी समाचार करौली।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का निर्णायक तीसरा मुकाबला आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 से शुरू होगा। दूसरा वनडे में चोटिल हुए ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर मुकाबले से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह हर्ष दुबे को टीम में शामिल किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र कल से, सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने लोगों से वित्तीय लेनदेन से संबंधित संदेश और फोन कॉल से सावधान रहने की अपील की। आरजीएचएस में अनियमितताओं पर कार्रवाई जारी, 58 एलोपैथिक और 11 आयुर्वेदिक फार्मा स्टोर्स को योजना से बाहर किया। और सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित किए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1:00 प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर, डीआरएम पर 909 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड पर 100.1 मेगाहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक प्रातः के 9:10 हुए हैं। राजस्थानी लोक संगीत के कार्यक्रम मरुमंगल में आज कलाकार हैं भगत धर्मपाल भारती। लीजिए सुनिए भगत धर्मपाल भारती की गाई लोक रचनाएं और लोक भजन।

श्रोताओं, राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। लोक भजन आज भगत धर्मपाल भारती के स्वर में आप सुन पा रहे हैं।

श्रोताओं, अभी आप राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल सुन रहे थे। कलाकार थे भगत धर्मपाल भारती। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सवेरे के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत।

श्रोताओ, अभी आपनी यस बोस फिल्म के लिए अभिजीत और अलका याग्निक को सुना। शब्द रचना जावेद अख्तर की थी, संगीत जतिन ललित का। और लीजिए कार्यक्रम में अब सुनिए फूल और कांटे फिल्म के लिए अलका याग्निक और कुमार सानू को।

श्रोताओं, फिल्म संगीत इस समय आप आकाशवाणी के कोटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। लीजिए अब सुनिए, दीवाना फिल्म के लिए अलका याग्निक और विनोद राठौड़ को। गीत समीर का है, संगीत नदीम श्रवण का।

ओली जी श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में सुनिए फिल्म दिल है कि मानता नहीं का ये नगमा कुमार सानू और अनुराधा पोडवाल के स्वर में, शब्द रचना फैज अनवर की और संगीत नदीम श्रवण का है।

श्रोताओ अभी आप फिल्म संगीत कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रातः के 10 बजे हैं और लीजिए अब सुनिए फरमाइशी हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आज संजीव कालिया का नमस्कार। श्रोताओं, शब्द जब कविता बनते हैं तो मन को छूते हैं, और वही शब्द जब सुरों का साथ पा लेते हैं तो अमर हो जाते हैं। ऐसे ही विलक्षण कवि और गीतकार थे पद्मभूषण गोपाल दास नीरज, जिनकी लेखनी ने हिंदी कविता और फिल्म संगीत दोनों को अनमोल धरोहर दी। प्रेम, विरह, दर्शन और जीवन के गहरे भावों को उन्होंने इतनी सहजता से शब्द दिए कि उनके गीत आज भी उतने ही ताजा और आत्मीय लगते हैं। आज कवि गोपालदास नीरज की पुण्यतिथि है। 19 जुलाई 2018 को वो हमसे विदा हो गए इस दुनिया को छोड़कर। उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सदाबहार नगमे का आगाज कर रहे हैं उनके ही लिखे एक मधुर गीत से। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गैम्बलर फिल्म का यह नगमा है, नीरज का लिखा हुआ, संगीत SD बर्मन का है। लीजिए सुनिए।

श्रोताओ, गैम्बलर फिल्म का नगमा आपने सुना, नीरज का लिखा हुआ, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। और इस गीत को सुनना चाहते थे आप सब। ये हमारे श्रोता हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि और अश्विन शाह। इनके साथ हैं मंगला बेन और राजेंद्र जी शाह। यह हमें लिखते हैं पद्मा टॉकीज, नेपा नगर, मध्य प्रदेश से। और ये संदेश हमें मिला है रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर से। हमारे श्रोता हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। नाईवाला जिला हनुमानगढ़ से वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा ने भी हमें संदेश प्रेषित किया है। जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान का व्हाट्सएप संदेश भी हमें मिला। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसुतास, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद ने अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा दी है। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नहावकर, निर्मला नहावकर और विशाल नहावकर। गांव खोखरा वाली श्रीगंगानगर से विनोद बारासा, विशाल, विकास, रोशनी और सगुन बारासा का संदेश भी हम तक पहुंच गया है। आप कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं। एटा रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोता हैं बीपी गौतम और सरिता गौतम। रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया और उनके परिवार के लोग। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से ये संदेश हमें मिला है। हमारे श्रोता हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी। इनके साथ हैं लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। गांव बांडीवाला फाजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया और इनके साथ हैं रजत और बेबी गरिमा बगड़िया।

और श्रोताओं, ये संदेश हम तक पहुंचा है। हमारे श्रोता हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से, ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। और लीजिए अब सुनिए अपनी पसंद का अगला गीत। फिल्म का नाम है जब प्यार किसी से होता है। स्वर दिया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। शब्द रचना हसरत जयपुरी की है, संगीत शंकर जयकिशन का।

श्रोताओ, इस गीत को सुनने के लिए आप सब ने हमें संदेश प्रेषित किए। चक 14 पीएसबी से कुलदीप सिंह, राजविंदर कौर, संदीप सिंह, जसकरण सिंह, हरदीप सिंह और मनराज विर्क, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और ओम कुमार सुरलकर, कवाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता, अभिषेक श्रीवास्तव और उनके परिवार के लोग,

वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा ने हमें याद किया है, अपना संदेश हम तक पहुंचाया है, अपनी पसंद हम तक पहुंचाई है। आप शामिल हो गए हैं कार्यक्रम में। और सांगली ज़िले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, शेफुल्ला सबाहत, किरत हुजरे और रेहान शेख हमें याद करते हैं। गांव 5 MD पतरोड़ा अनूपगढ़ से मंगल जनागल, श्रीमती रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इनके साथ हैं इंदु और सुनील जनागल। हनुमानगढ़ टाउन से रजाक मोहम्मद खान, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और जीशान खान इनके साथ हैं। छत्तीसगढ़ डोगर गांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये का संदेश भी हम तक पहुंच गया है। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जोहरी की फरमाइश कार्यक्रम में शामिल हो गई है। बागपत उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोता हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया और उनके परिवार के लोग। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल का संदेश भी हम तक आ गया है। और श्रोताओं, ये हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और इनके साथ हमेशा की तरह बब्बू और डब्बू भी हैं। और श्रोताओं, ये संदेश आया है गांव लोहगढ़ ठाकुरांवाला से।

और लीजिए अब सुनिए अपनी पसंद का अगला नगमा। फिल्म का नाम है प्यार का मौसम, स्वर दिया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने, गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत आर डी बर्मन का है। लीजिए सुनिए।

श्रोताओं, अभी आपने प्यार का मौसम फिल्म का नगमा सुना और सुनना चाहते थे आप सब मंडी केसरी सिंहपुर से श्यामलाल राजपाल जयपाल संदीप कुमार और इनके साथ हैं चिमनलाल। सिद्धार्थ नगर दयारपुर भावली से गजानन येले नवदीप येले विश्वदीप येले और अशोक येले। गांव नथाणा पंजाब से हरजिंदर छिंदा जसवीर जस्सी और इनके साथ हैं सीता और गीता। पलारी छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं नितेश कुमार देवांगन दुर्गा प्रसाद देवांगन पराग टेलर पूना राम देवांगन और कृष्णा देवांगन। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से रेणु शर्मा रुद्र शर्मा वंदना शर्मा और विशेष शर्मा ने हमें संदेश प्रेषित किया है। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना पप्पी किरण खुराना लव्या आरव खुराना और एसके पप्पी और उनके परिवार के लोग। गांव कलमंडी खुर्द जिला झालावाड़ से अनूप सिंह नाथावत धीरज सिंह सोलंकी सागर पवार भानु प्रकाश सिंह पवार और समस्त राजपुताना परिवार ने हमें संदेश प्रेषित किया है। सूरतगढ़ वार्ड नंबर 10 से मनशा राम जी और इनके साथ हैं पवन कुमार भगवान राम मनोज नितेश कृष्णा श्रवण कुमार और अशोक कुमार। और श्रोताओं, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा कोमल मेहरा किरण मेहरा कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा ने अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा दी है। चक 15 पीएस से केआर भाटिया प्रेरणा भाटिया और इनके साथ हैं डिंपल भाटिया और रोशनी। बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूनत नेहा जैन दीपक मयंक मूनत चेतन नाहटा और इनके साथ हैं दीक्षा और कुश मूनत। और लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए अपनी पसंद का अगला नगमा। फिल्म का नाम है मेरे महबूब, स्वर दिया है मोहम्मद रफ़ी ने, शब्द रचना शकील बदायूनी की है और संगीत नौशाद का है।

शुदो मेरी महबूब फिल्म का नगमा आपने सुना, सुनना चाहते थे आप सब। गांव कलाना, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, युद्धव कड़वासरा, इनके साथ हैं कुंदन जाखड़ और लीलाधर स्वामी। साथ ही हैं कृष्ण मायल, किड्डू राम जोईया, हनुमान सहारण और सुनील पाईवाल शर्मा। गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से हजारीलाल पुरोहित, मोनी पारिक और भूपेंद्र पारिक ने हमें संदेश प्रेषित किया। और चंडीगढ़ से हमारे नियमित श्रोता हैं सतीश अनेजा और विमला अनेजा। गांव घमंडिया सूरतगढ़ से जगदीश ठुकिया, प्रमिला ठुकिया, ज्योति, शिवम ठुकिया, सरिता, सचिन, अमना, तमन्ना, सायना, विष्णु ढूकिया, दोहिती इवा धारणिया और उनके परिवार के लोग। गांव जोगीवाला श्रीगंगानगर से प्रेम सहारण, मोनिका और मनीष सहारण ने हमें याद किया है, अपनी पसंद हम तक पहुंचाई है। बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता, बमार कंडे संजय, मारकंडे और बेबी किट्टू इनके साथ हैं। करणवीर हाउस भुच्चो कैंचियां बठिंडा पंजाब से हमारे श्रोता हैं प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन और अभिजोत। और श्रोताओं, ये फरमाइश हम तक पहुंची है नज़दीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और इनके साथ हैं मदन लाल वर्मा, कीर्ति वर्मा और उनके परिवार के लोग। प्रियांशी वर्मा भी इनके साथ हैं। गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, सरवण रिनवा, हंसराज भाटिया, मणिराम, रणजीत राम, किरोड़ीवाल, सुरेंद्र फादू और उनके परिवार के लोग। और श्रोताओं, ये संदेश आया है दतरंगी से। लिखने वाले हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह तरड़, कृष्ण, मुकेश, रामचंद्र, कपिल देव, कांता चौधरी और उनके परिवार के लोग। और कुंडवाली महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजयालक्ष्मी सावनकर और राजेश, राकेश और ऋषिता इनके साथ हैं। और लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए नीरज का लिखा गीत शर्मीली फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। शब्द रचना नीरज की है, संगीत एस टी बर्मन का।

0: यहाँ हमें जमाना देखे
1: तो
0: आओ चलो कहीं छुप जाए।
1: अच्छा।

श्रोताओ, अभी आपनी शर्मीली फिल्म का नगमा सुना और सुनना चाहते थे आप सब मलोट से कुलवंत गिल, जसवंत गिल, रमन गिल, बलजीत गिल और कनेडा रहते हैं ये, दिशा मोहल्ला, जगतार जग्गा भी इनके साथ हैं। गांव बनवाला हनवंता से, फाजिलका पंजाब से, विनोद मायल, सीमा, लक्षिता, यशिका, विद्या देवी और सारा मायल परिवार मिलजुल कर कार्यक्रम सुन रहा है। और श्रोताओं, ये हैं ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, यूपी से, राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा इनके साथ हैं।

ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से हमें संदेश प्रेषित करते हैं। नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़ और इनके साथ हैं ओमकार साई गायकवाड़। जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति जायसवाल का संदेश भी हम तक पहुंच गया है, आप कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। तहसील भादरा अनूप शहर से गजानंद सारस्वत, ताराचंद सारस्वत, सोनू, पवन कुमार, साहिल राघव, मुरारी लाल शर्मा, मदन लाल शर्मा, फूसा राम मिल, महावीर लोहरा, ममता मीतू कीनू और उनके परिवार के लोग, कुलविंदर सिंह, सुखप्रीत और जसदीप ने हमें गांव 4M से संदेश भेजा है। बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग ने हमें याद किया है। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, सौरभ डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और उनके परिवार के लोग, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छींपा, कपिल छींपा, ईशान और पूजा परिहार का संदेश भी मिल गया है। कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम सद्दाम और इनके साथ हैं अदीब और परिवार वाले। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी वोट बोट का हमें संदेश मिला है। उशोतव गांव और डाकघर निम्नाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर हमें याद करते हैं। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम मोहम्मद, अफजल मोहम्मद, अकमल, नफीजा परवीन और जोहानुल होदा की फरमाइश हम तक पहुंची है। अलीका तहसील डबवाली से रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत लखोत्रा, सरबजीत लखोत्रा, रानी, सोनू और रजनी इनके साथ हैं। चक 58 NP रायसी नगर से सुल्तान राम, सरस्वती देवी, हरवंश, बनवारी, गोपीराम, ललित, नरेंद्र, मीनाक्षी, मोनिका, गीतांजलि और उनके परिवार के लोग। और लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए अपनी पसंद का अगला नगमा। आप सबकी फरमाइश पर नाम हम आपको बाद में बताएंगे श्रोताओं के।

श्रोताओं, इस गीत को सुनने के लिए हमें संदेश प्रेषित किए बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग ने। मरहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम अब्बासी और इनके साथ हैं यशफ अब्बासी और रसीद वारसी। गांवढाणी लाल खां, जावेद खां, अरमान खां, इमरान खां, सीमा बानो, विनोद खां, सोहिल खां और उनके परिवार के लोग। अलीका डबवाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार, सुनीता, कुलदीप गांधी और उनके परिवार के लोग। ग्राम पंचायत बठीना पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, इनके साथ हैं प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा और उमेश और मिथिलेश वर्मा। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जेतंग विरक और मीका विरक ने हमें संदेश दिया है। और श्रोताओं, ये हैं अभिजीत गवाहनकर, राही सरिता गवाहनकर, सिद्धांत गवाहनकर और इनके साथ हैं

0: अर्जुन गवाहन कर टुक टुक, और ये संदेश हमें भेज रहे हैं मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से यशमीत यशु निरंजन सिंह सौम्या सिंह अविरल सिंह का संदेश भी हम तक पहुंचा है, आप कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से हमारे श्रोता हैं राशिद हुसैन अंसारी नसरीन अंसारी नौरीन अंसारी आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी, और ये हैं केसरी सिंहपुर से राजकुमार ठठई कमल ठठई मगनलाल सोमानी बिंदा टेलर मुंशी राम महिंद्रा हीरा लाल गजरा, और इनके साथ हैं अशोक मित्तल और तारा चंद दायमा। और श्रोताओ ये हमारे श्रोता हैं गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत संगीता कंवर तुषार सिंह और रिंकी शेखावत। लीजिए कार्यक्रम में अब सुनिए अपनी पसंद का अगला नगमा। प्रेम पुजारी फिल्म से नीरज का लिखा हुआ, आज हमने नीरज को याद किया उनकी पुण्यतिथि पर। अपने बारे में उनका एक शेर आज भी मुशायरों में फरमाइश के साथ सुना जाता है, वो ये है कि इतने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में, लगेगी आपको सदियां हमें भुलाने में, न पीने का सलीका न पिलाने का शरूर, ऐसे भी लोग चले आए हैं मैखाने में। आप सब सुनिए नीरज का लिखा ये नगमा।
1: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

श्रोताओं, इसी गीत को सुनने के लिए आप सब ने हमें संदेश प्रेषित किए। चक 15 पीएस से सर्वजीत सिंह जोशन, सर्वजीत कौर जोशन, गुरमन सिंह और उनके परिवार के लोग। गंज डुंडवारा से शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी इनके साथ हैं। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया और साजदा रानी और इनके साथ हैं हिना कोसर। लखवाली हेड से मास्टर भवरलाल, कृष्णा विशाल, राजबाला, ममता लक्षिता, नव्या, मोहम्मद रफीक, महावीर लोहरा, मुकना राम और उनके परिवार के लोग। और प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा एमपी से आनंद जोशी, तनुजा जोशी, ध्रुवी जोशी और इनके साथ हैं फाल्गुनी जोशी। किदबई नगर सिद्धपुरा टाउन से हमारे श्रोता हैं जुबेर अली खान, सबीहा जुबेर, अंजुमन खान और उनके परिवार के लोग। और कस्बा गुनोर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान और इनके साथ हैं फारिया ताहिरा। आप सब सुनिए अपनी पसंद का ये गीत और मुझे संजीव कालिया को कार्यक्रम से अनुमति दें। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सदाबहार नगमे। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजे हैं। लीजिए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था दिल है कि मानता नहीं। लीजिए अब सुनते हैं अलका याग्निक के साथ कुमार शानू को। गीत समीर का है, संगीत नदीम श्रवण का, और फिल्म का नाम है हम है राही प्यार के।

आइए अब सुनते हैं फिल्म सड़क का ये नगमा। आवाज़ें अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की है, गीतकार समीर हैं और संगीतकार नदीम श्रवण।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म कच्चे धागे से। आवाज़ें अलका याग्निक और हंसराज हंस की थी। गीतकार आनंद बख्शी थे और संगीतकार नुसरत फ़तेह अली खान। कार्यक्रम में आगे सुनते हैं अलका याग्निक के साथ उदित नारायण को। गीत देव कोहली का है, संगीत आनंद राज आनंद का, और फिल्म का नाम है हमको तुमसे प्यार है।

सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति को आइए सुनते हैं फिल्म बरसात में। शब्द रचना समीर की है और धुन बनाई है नदीम शवन ने।

लीजिए अब सुनते हैं फिल्म सनम का ये नगमा। आवाज़ें कुमार सानू और अलका याग्निक की है, गीत समीर का है और संगीत आनंद मिलन का।

अलका याग्निक और कुमार सानू के गाए इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत को अब यहीं विराम देते हैं। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 12 बजे हैं। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम विवरण।

आज दिन में 12:05 पर आप सुनेंगे कुछ बातें कुछ गीत, सुगम संगीत में कुछ गजलों का आनंद आप लेंगे 12:30 पर, किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम खेत खलियान 12:50 पर, हिंदी में प्रादेशिक समाचार का समय रहेगा दिन में 1 बजे का, बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत दिन में 1:05 पर, हिंदी में समाचार का समय रहेगा दोपहर 2 बजे का, 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत और उर्दू सर्विस आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे।

शाम 5 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम युववाणी का। कार्यक्रम विवरण आप सुन सकते हैं शाम को 6 बजे। 6:05 पर आप सुनेंगे सिराई की, हिंदी में प्रादेशिक समाचार 6:30 पर। जिले की चिट्ठी, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:40 पर। राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आप सुन सकते हैं 6:45 पर। शाम 7 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम चौपाल का, 7:45 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत एक ही फिल्म से जानकारी और गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8:30 पर। आप सुनेंगे स्पोर्ट्स कैन, समाचार संध्या का समय रहेगा 8:45 का। 9:15 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत, संसद के समक्ष मुद्दे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, आप सुन सकते हैं 9:30 पर। अखिल भारतीय रविवारी संगीत सभा, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 10:00, और हिंदी में समाचार का समय रहेगा रात्रि 11:00 का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 12:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कुछ बातें कुछ गीत। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे उस अनमोल धन की जिसे न खरीदा जा सकता है।

ना उधार लिया जा सकता है और ना ही वापस पाया जा सकता है, और वह है समय। समय यह केवल घड़ी की टिक-टिक नहीं है, बल्कि हमारी पूरी ज़िंदगी की कहानी है। यह हमें बचपन से जवानी और जवानी से अनुभवों की मंजिल तक लेकर जाता है। कभी यह हमारी हथेली पर खुशियों की धूप रख देता है, तो कभी संघर्ष की छांव। लेकिन हर परिस्थिति में समय हमें कुछ न कुछ सिखाकर ही आगे बढ़ता है। कहा भी गया है, समय का हर पल अनमोल है, क्योंकि बीता हुआ समय और बोले हुए शब्द कभी लौट कर नहीं आते। तो आइए समय के इसी खूबसूरत सफर पर चलते हैं और सुनते हैं कुछ सदाबहार नगमे।

0: ये गुलशन फूल कलियां बहार वादियां ये मौसम खेत हरियाली पहाड़ बर्फ ये कायनात कुछ भी नहीं
1: कुछ भी नहीं
0: कुछ भी नहीं गरन में वो नहीं
1: वो है कौन
2: कप्तान साहब उस लड़की का कोई नाम तो होगा
0: नाम

श्रोता, हम बात कर रहे थे समय की। जिंदगी का हर दौर अपने साथ कुछ नई कहानियाँ लेकर आता है। बचपन में लगता था कि जल्दी बड़े हो जाएं, और जब बड़े हो जाते हैं तो वही बचपन सबसे ज़्यादा याद आता है। शायद यही समय का सबसे सुंदर खेल है। श्रोता, हम समय कभी तेज़ भागता हुआ लगता है तो कभी किसी इंतज़ार में ठहर सा जाता है। परीक्षा के परिणाम का इंतज़ार हो, किसी अपने के आने का इंतज़ार हो, या किसी सपने के पूरे होने का इंतज़ार हो, हर पल हमें समय की कीमत सिखाता है। और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एहसास होता है कि ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ पैसे नहीं, बल्कि वे पल थे जिन्हें हमें अपनों के साथ हंसते बिताना था।

श्रोताओं, समय रिश्तों की सबसे कठिन परीक्षा लेता है। जो रिश्ते समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं, वही जीवन भर साथ निभाते हैं। कुछ लोग कुछ समय के लिए हमारी ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन उनकी यादें उम्र भर हमारे दिल में बसी रहती हैं। 90 का दशक इसीलिए भी खास था क्योंकि उस दौर में लोगों के आसपास एक दूसरे के लिए समय था। शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठकर रेडियो सुनता था। किसी गीत के बजते ही चेहरा मुस्कुरा उठता था। न मोबाइल की जल्दबाजी थी, न सोशल मीडिया की भागदौड़। बस रिश्तों की मिठास थी और उनका अपनापन।

श्रोताओं, समय हमें यह भी सिखाता है कि हर मौसम हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर कठिन समय है तो अच्छा समय भी ज़रूर आएगा। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही हर परेशानी के बाद उम्मीद की नई किरण जन्म लेती है। इसीलिए बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता छोड़कर आज को पूरे मन से जीना ही जीवन की सबसे बड़ी समझदारी है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि समय दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ सिखा देता है।

सोनू निगम और अलका याग्निक के गाए इसी गीत के साथ कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 12:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनते हैं सुगम संगीत।

0: सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की गाई कुछ गज़लें। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:50 हुए हैं। अब किसान भाई सुने कार्यक्रम खेत खलियान।
1: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों बात करांगा ई मौके बीजेड़ी अपनी फसलांगे माँ करन वाले काम धंधांगे बारे में, जका भाई लोग अमेरिकन कपास बीज रखी है, बे अब ध्यान रखे कि ई टाइम कपास में विरलीकरण करनो जरूरी है। किसान भाइयों विरलीकरण आपा पहली सिंचाई का बाद कर देनो चाहिए। इंगा माए शु पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर तक आपा ने रखनी है, और जठे ज़्यादा सघन पौधा हुए बाने उखाड़ के विरला कर देना चाहिए। बात करा उर्वरक की, जे आपां बुवाई के टाइम नाइट्रोजन ना दी होवे तो पहली सिंचाई के सागे 12.5 किलो नाइट्रोजन यानी 28 किलोग्राम यूरिया प्रति बीघा के हिसाब से दे देनी है। सिंचाई की जहाँ तक बात है किसान भाइयों, अमेरिकन कपास में पहली सिंचाई बुवाई के 30 से 35 दिन बाद और दूसरी सिंचाई पहली सिंचाई के 20 से 25 दिन बाद करनी जरूरी है। जे किसान भाइयों आपां नरमे की RST 9 किस्म की बीजांत कर रखी है तो इमें सिंचाई बुवाई के 50 दिन बाद भी आपा कर सका, जिसू एक सिंचाई की बचत कर सका। इंगे सागे सागे खरपतवार भी टाइम सारू निकालता रहना जरूरी है। किसान भाइयों पहली सिंचाई के बाद बत्तर आने पर आपा निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। इं ही देसी कपास में अब ई मौके बिरलीकरण करना जरूरी है। पहली सिंचाई के बाद पौधे से पौधे की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर रख के बिरलीकरण कर देना चाहिए। देसी कपास में बुवाई के टाइम जे यूरिया ना दी है तो 25 किलोग्राम यूरिया प्रति बीघा के हिसाब से दे देनी है, और देसी कपास में बुवाई के 35 से 40 दिन बाद पहली सिंचाई भी कर देनी है, ताकि पौधे ने टाइम पर पानी मिल जाए और अच्छी बढ़वार भी होवे। इंगा सागे सागे खरपतवार भी निकालता रहना जरूरी है। टाइम सारू खेत में जागे घास फूस छोटा मोटा खरपतवार है बाने उखाड़ के ख़त्म कर देना चाहिए। अब बात करा किसान भाइयों धान की फसल में ई मौके करने वाले काम धंधांगी, क्योंकि आपने ही क्षेत्र में किसान भाई धान की रोपाई भी काफ़ी क्षेत्र में करे और बिया भी आपनों और नाली बेड पूरा राइस बेल्ट के रूप में जानी जाए। किसान भाइयों जगह किसान भाइयों पंजीरी की बिजाई कर देनी है, वे अब धान रोपाई खातर खेत की जुताई शुरू कर देनी है। जे पंजीरी रोपाई के काबिल होगी यानी 25 से 30 दिन की पंजीरी रोपाई लायक हो जाए, जे पंजीरी तैयार है तो रोपाई शुरू कर देनी है। किसान भाइयों रोपाई का टाइम पौधे से पौधे की और कतार से कतार की जो कि दूरी है वह 15 सेंटीमीटर अपन ने रखनी है। किसान भाइयों पौध रोपाई करता टाइम एक सगे दो पौधा जुड़वा रोपना चाहिए, ताकि बाद में जो कि पौधा की संख्या है वह अपन ने पूरी मिले। धान रोपाई को जो बढ़िया टाइम है वो जून के आखिरी सप्ताह से लेके जुलाई के पहले सप्ताह तक बढ़िया मानी जाए, यानी ओ जको टाइम अब चलन लग रहे है वो बढ़िया रोपाई को टाइम है। धान की फसल में 10 किलो नाइट्रोजन यानी 22 किलोग्राम यूरिया और 15 किलोग्राम फास्फोरस प्रति बीघा बुआई का टाइम दे देनी है, और जठे जिंक की कमी होवे बठे आपा 6 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति बीघा के हिसाब से दे देवा। धान की रोपाई के बाद 15 दिन तक खेत के माँ 4 से 5 सेंटीमीटर पानी खड़े रहना जरूरी है। इनके खातर टाइम टाइम पर सिंचाई करनी जरूरी है, ताकि भूमि की नमी बनी

है। किसान भाइयों, अब खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो मिर्चेटी 5% का दाना 7 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से रोपाई गए 2 से 3 दिन बाद छिड़क देवा और 15 दिन तक खेत में 4 से 5 सेंटीमीटर तक पानी खड़े रखा, या फिर पेंडी मिथेलिन 375 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति बीघा रोपाई गए 2 से 3 दिन बाद छिड़क देवा और 30 दिन बाद एक निराई गुड़ाई अपन ने कर देनी है। अब बात करें अपन ग्वार की फसल के बारे में, जका भाई लोग ग्वार की बिजाई करनी है वे बढ़िया किस्मा को चुनाव करके बिजांत शुरू कर देनी चाहिए। बीज की मात्रा की बात करें तो किसान भाइयों 4 से 5 किलोग्राम बीज प्रति बीघा के हिसाब से बढ़िया रेवे, और बुआई को जो टेम है किसान भाइयों अब चलन लग रही है वो बढ़िया टेम है। खेत ने तुरता फुर्त तैयार करके बिजाई कर देवा। खूड शू खूड की जो कि दूरी है 32 सेंटीमीटर अपने रखनी है। किसान भाइयों, खाद उर्वरका में ग्वार खातर 5 किलो नत्रजन यानी 10 से 11 किलो यूरिया और 8 से 10 किलोग्राम फास्फोरस प्रति बीघा बुआई शू पहली खेत में नाखना है, और जका भाई लोग बिरानी ग्वार की बीजांत करनी है वे फास्फोरस की आधी मात्रा को ही प्रयोग करना है। अब बात करें किसान भाइयों कीट रोग नियंत्रण के बारे में, क्योंकि अब कपास जैसी फसल का मां जड़ गलन रोग को प्रकोप ज़्यादा दिखाई देवे, इन वास्ते किसान भाइयों पहली सिंचाई गए 8 से 10 दिन बाद आपा खेत में नज़र मार के देखा तो आपने कई पौधा मुरझाएड़ा दिखाई देवेगा, तो यह समझ जानो है कि जड़ गलन रोग जो को प्रकोप है वो हो गयो। तो इंगर नियंत्रण वास्ते मुरझाएड़ा पौधा ने जड़ सहित उखाड़ के नष्ट कर देना चाहिए। यहाँ ही नरमे की बात करें तो ई टाइम लीफ कर्ल नाम को रोग जको है इनका लक्षण दिखाई देने लग जाए। ई रोग शू ग्रसित पौधा स्वस्थ पौधा शू काफ़ी छोटा रह जाए और पौधे की पत्तियां प्याले नुमा दिखाई देने लग जाए। ऐसा लक्षण दिखाई देने पर पौधा ने उखाड़ के नष्ट कर देना चाहिए। और खेत के चारों मेर सड़क या नहरा के आसपास से पीली बूटी भांग भांखड़ी जैसा खरपतवार ने भी नष्ट कर देना चाहिए। भाई लोगों, अब बात करें ये मौके बीजेडी फसला में लागन वाला कीट रोग के बारे में, क्योंकि जिया ही फसल बंटवार लेने लागे तो इनके सागे कई तरह का रोग कीट भी फसल में लागना शुरू हो जाए। जी हम बात करें धान की फसल में झुलसा रोग की, ये रोग के प्रकोप शू पौधा झुलसना शुरू हो जाए। जे भाई लोगों आप इनको पूरी तरह जाप तो ना करा तो पूरी फसल चौपट हो जाए। इन वास्ते पंजीरी बिजाई शू पहली धान का बीज ने 10% नमक के घोल में यानी 1 किलो नमक 10 लीटर पानी सागे घोल बना के बीज उपचारित कर लेवा। बाद में स्वस्थ बीज ने साफ पानी शू धोगे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम या फिर प्लांटोमाइसिन 10 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के 6 किलो बीज की दर से 12 घंटा तक भिगोगे रखा, और बाद में बीज ने 24 घंटा तक टाट या बोरी में लपेट के रख देवा, तो इन तरिया धान को बीज आप उपचारित कर सका। यहीं बागवानी में भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बागवानी में जिया फल गिरने की समस्या, छाल जलन की समस्या, पत्तियां को झुलसनो ये इसी समस्या ज़्यादा रेवे। इनका सागे सागे पानी सिंचाई की भी ज़रूरत को ध्यान रखनो है। पौधा ने तेज गर्मी से बचावन खातर पौधा के मुख्य तना पर चुने को और नीले थोथे को लेप करना जरूरी है। लेप बनाने को तरीको थाने बता देवा कि कॉपर सल्फेट 2.5 किलोग्राम, बुजड़ो चुनो 5 किलोग्राम और सरेस 0.5 किलोग्राम ने 30 लीटर पानी में घोल बना के लेप तैयार आप कर सका। इनके अलावा बागवानी में भी पानी देना जरूरी है। पौधा में पानी की मात्रा बनाए रखनी है। जब बूंद बूंद सिंचाई से पानी देवन लग रहा हाँ तो पौधे की उम्र के हिसाब से पानी देना है। किसान भाइयों, जे आपने 12 मासी नींबू को बाग लगा रखे है तो अब ई मौके नींबू की 2.5 सेंटीमीटर हार्डवुड टहनियाँ यानी जकी टहनियाँ की लकड़ी पक्की होगी बाने 5 से 8 इंच लंबी काट के कलम रोपण कर देनी चाहिए। तो आप बातों को ध्यान रख के आप अपनी फसल, चाहे वह नरमे की फसल होवे, चाहे वह धान की होवे या ग्वार की फसल होवे या फिर बागवानी होवे, जे आप छोटी छोटी बातों को ध्यान रखांगा तो फसल की बंटवार के सागे सागे अच्छी पैदावार और अच्छी आमदन भी हो सी। किसान भाइयों, अपने ही क्षेत्र में किसान भाई लोग जो भांत भांत की फसलें बीजें और अपना किसान भाई कम लागत में ज़्यादा पैदावार लेने की सोचे, लेकिन इनके बावजूद भी खेती करता टाइम कई तरह की चूक हो जाए, बांगी वजह से अपनों खर्चों भी लाग जाए और पैदावार भी पूरी कौन मिल रहा है। इन वास्ते किसान भाइयों टाइम टाइम पर अपना कृषि वैज्ञानिक या कृषि विशेषज्ञ जकी राय देवे या फिर खेती करने का कोई नया तौर तरीका बतावे, जे आप बांगे हिसाब से खेती करा तो आपने अच्छी पैदावार के सागे सागे अच्छा मुनाफो भी मिले और आप जको खेती पर खर्चो करा तो बिंगी लागत में भी कमी आवे। यानी आप मोटे तौर पर यहाँ कह सका जे आप तकनीक पर आधारित खेती करा तो कम लागत में अच्छा मुनाफो कमा सका।

0: જ્યાં ટેમ પર આપણને બુવાઈ કરવી ચાહીએ, ક્યુંકિ જે આપણે ટેમ પર બીજાઈ કરશે તો આપણને ઉત્પાદન પૂરો મિલેગો, ઓર બીજાઈ કરતા ટાઈમ અચ્છા પ્રમાણિત ઉન્નત બીજ હી આપણે બીજા જીશું, આપણે બીજશું 25% તક ઉપજ બઢાશકા. કિસાન ભાઈઓ, કઈ વાર અહીંયા હોય કે આપણે બીજને ઉપચારિત કરે બિના હિ બીજ દ્યા, જકા કી વજે શું કઈ તરિયાંગા બીજ જનિત રોગ હૈ જકા આપણી ખડી ફસલમાં લાગજે, જે આપણા કમ ખર્ચા કમા નિરોગ ઓર સ્વસ્થ ફસલ લેણી હે તો બીજ ઉપચાર કરનો બહુ જ્યાદા જરૂરી હૈ. ઇંગ અલાવા માટી કી જાંચ કરવા ગે, બિંગા હિસાબ શું આપણા ફસલ બીજા ઓર જીતી જરૂરત હૈ બિંગ હિસાબ શું હિ યુરિયા હૈ યા અન્ય ઉર્વરક હૈ બે નાખા, તો ઇંચું ફાલતુમાં હિ ઉપયોગ હોનળા ઉર્વરકા પર લાગન વાળો 100% આપણ બચા સકા. તો આ બાતાંગો ધ્યાન રાખા તો આપણ આછી ઉપજ આછી પેદાવાર લે સકા. ઓર અબ મેં ખેત કા નિચાલું સા, રામ રામ સા, રામ રામ.
1: કિસાન ભાઈ સુન રહે થે કાર્યક્રમ ખેત ખલિયાન. હમ આકાશવાણી કે કોટન સિટી ચેનલ સુરતગઢ સે બોલ રહે હૈ. દિન કા 1 બજને વાલા હૈ, કુછ હી પલો મેં આપ સમાચાર સુનેંગે.
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार. समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ. संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं. इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद हैं. बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने NCPI की मान्यता को लेकर विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया. हालांकि बाद में विपक्ष के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हो गए. इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करवाए जाने का कार्यक्रम है. इस बैठक के माध्यम से सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा कर रही है. संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है जो 13 अगस्त तक चलेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है. प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मंगल पांडे का शौर्य और सर्वोच्च बलिदान आज भी हर भारतीय को गौरवान्वित कर रहा है. उन्होंने कहा कि मंगल पांडे की देशभक्ति और वीरता की गाथा देश की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी. इंटरनेशनल वेडिंग एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव सीजन 3 का आज से जयपुर में आयोजन हो रहा है. 2 दिन के इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन उपमुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी करेंगी. इस अवसर पर आंध्र प्रदेश की पर्यटन मंत्री कुंडला दुर्गेश भी मौजूद रहेंगे. कॉन्क्लेव में देश विदेश से वेडिंग, पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी उद्योग से जुड़े 600 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं. आयोजन का उद्देश्य भारत के विभिन्न राज्यों की पर्यटन संभावनाओं और वेडिंग डेस्टिनेशंस को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नई पहचान दिलाना है. मौसम विभाग के प्रदेश के 15 जिलों में आज आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. पहले पूर्वी राजस्थान और उसके बाद राज्य के पश्चिमी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं. कल से कोटा, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के कुछ क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है. पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 32 मिलीमीटर बारिश दौसा जिले के बसवा में दर्ज की गई. इसके अलावा धौलपुर, अलवर, बूंदी और कोटा के कुछ इलाकों में भी हल्की बरसात हुई. हालांकि प्रदेश में इस मॉनसून सीजन के दौरान अब तक सामान्य से करीब 25% कम वर्षा हुई है. इससे गर्मी और उमस का असर बढ़ गया है. जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की चेतावनी के मद्देनजर अमरनाथ यात्रा आज से पहलगाम और बालटाल से रोक दी गई है. तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है. मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी. उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम की चेतावनी के बाद वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है. फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला आज अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा. भारत

0: भारतीय समय के अनुसार ये मैच न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में रात 12:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल मायामी स्टेडियम में खेले गए तीसरे स्थान के मुकाबले में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से मात देकर कांस्य पदक जीत लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 24 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स यानी ALMM लिस्ट 2 की नीति में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि इस नीति की समय सीमा में कोई सामान्य छूट नहीं दी जाएगी। हालांकि नेट मीटरिंग और ओपन एक्सेस नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को इस साल 31 दिसंबर तक छूट दी गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 1:05 हुए हैं। अब बहने सुने अपना कार्यक्रम महिला जगत।

कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को उर्मिला का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे वरिष्ठ नागरिक, हमारे बुज़ुर्ग जो हमारे समाज की अमूल्य धरोहर होते हैं, उनका अनुभव, त्याग और मार्गदर्शन हमारे परिवार की नींव होते हैं। उनके सम्मान, सुरक्षा और प्रेम को समर्पित कुछ पंक्तियां आपसे साझा करना चाहूँगी। झुर्रियों में छिपी अनगिनत कहानियां हैं, ये बुज़ुर्ग हमारे घर की महकती निशानियां हैं। इनके तजुर्बे की धूप में हमने छांव पाई है, इनकी सीख ही जीवन की सच्ची कमाई है। हाथों की कांपती लकीरों में छुपी दुआएं हैं, यही तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलताएं हैं। उम्र के इस पड़ाव में इन्हें सिर्फ प्यार चाहिए, अपनों का साथ और थोड़ा सा समय का उपहार चाहिए। जी हाँ बहनों, क्योंकि ये उम्र ही ऐसी है जब इन्हें सम्मान, स्नेह और सुरक्षा की बेहद ज़रूरत होती है। 60 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी व्यक्ति को वरिष्ठ नागरिक माना जाता है। वरिष्ठ नागरिक होने के नाते आपको सरकार और वित्तीय संस्थानों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में कई छूट और लाभ दिए जाते हैं। बहनों, जो सेवानिवृत्ति के जो बाद का समय होता है ना, ये समय बेहद उतार चढ़ाव भरा होता है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति ऐसे भी होते हैं या फिर उनके जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि वो चाहकर भी अपनी जो वित्तीय स्थिति है उसकी योजना पहले से नहीं बना पाते हैं। तो ऐसे में इस उम्र तक आते आते उन्हें सुरक्षा, सम्मान और उनके स्वास्थ्य की देखभाल की बेहद ज़रूरत होती है। इसीलिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा और दैनिक कार्यों में सहायता के लिए कई उपयोगी मोबाइल एप्लीकेशंस उपलब्ध हैं, जैसे जीवन ख्याल और समर्थ। ये जो योजनाएं हैं, ये आपातकालीन सहायता, स्वास्थ्य मॉनिटरिंग और डिजिटल सेवाओं की सुविधाएं देती हैं। जैसे बात करें हम जीवन ऐप की, तो ये भारत सरकार द्वारा बुज़ुर्गों की सहायता के लिए लॉन्च किया गया है और ये एक आधिकारिक ऐप है जो आपातकालीन सेवाओं, सरकारी योजनाओं की जानकारी देता है और सुरक्षा अलर्ट भी प्रदान करता है।

है। इसी तरह से बहनों एक है समर्थ ऐप। ये बुज़ुर्गों के लिए एक बेहतरीन केयर ऐप है जो देश के कई शहरों में हेल्थ ट्रैकिंग, रिमोट मॉनिटरिंग और आपातकालीन सहायता सुविधा देता है। बहनों इसी तरह से स्वास्थ्य और दैनिक चिकित्सा के लिए मेडिसेफ या माई थेरेपी, ये एप्लीकेशन जो है ये बुज़ुर्गों को उनकी दवाइयों का समय पर रिमाइंडर देती है ताकि वे समय पर अपनी खुराक ले सकें और उनकी कोई भी खुराक या फिर दवा मिस ना हो। इसी तरह से घर बैठे दवाइयाँ ऑर्डर करने और लैब टेस्ट बुक करने के लिए नेट मेड्स या 1MZ बहुत ही लोकप्रिय और आसान प्लेटफॉर्म है। बहनों और जानकारी भी आपसे साझा करेंगे, आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

बहनों, वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सामुदायिक जुड़ाव के लिए ख्याल एक समर्पित ऐप है। इसमें आप दैनिक ज़रूरतों, बिल भुगतान और डॉक्टर से परामर्श जैसी ऑन डिमांड सेवाएं पा सकते हैं। साथ ही इसमें एक ख्याल कार्ड भी मिलता है जो विशेष छूट और साइबर सुरक्षा भी प्रदान करता है। बहनों, एक है एवरग्रीन क्लब, जो 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग और एक्टिविटी ऐप है, जहां ऑनलाइन योग, संगीत और ज्ञानवर्धक सेशन आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा बहनों, एक उमंग ऐप है। इस ऐप के जरिए वरिष्ठ नागरिक घर बैठे अपनी पेंशन, ईपीएफ और बहुत सी लगभग 2000 से भी अधिक सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। जो वरिष्ठ नागरिक हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, उनकी मदद के लिए जो जीवन ऐप है, जो लॉन्च किया गया है, इस ऐप के माध्यम से उन्हें आपातकालीन सहायता के साथ साथ कई सुविधाएं भी दी जाती हैं। और इस जीवन ऐप के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए जो योजनाएं हैं या जो आर्थिक मदद दी जाती है, उनकी जानकारी भी नागरिकों को मिलती है। इसके अलावा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा स्पॉटेड सीनियर सिटीजन होम्स यानी वृद्धाश्रम की जानकारी भी वरिष्ठ नागरिकों को इस ऐप के जरिए मिलती है। बहनों, ये तो थी कुछ ऐसी सुविधाएं या कुछ ऐसी एप्लीकेशंस जो वरिष्ठ नागरिकों को दी जाती हैं। और अब प्यारा सा गीत।

बहनों, स्ट्रेस लेना हमारे दिमाग और हमारे शरीर दोनों के लिए ही हानिकारक हो सकता है। स्ट्रेस हमारे मन की शांति को भंग करता है और इसे हम दूर रखें, यानी मेंटल स्ट्रेस से हम दूर रहें तो हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा शरीर बहुत से रोगों से घिर जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि हम खुद के लिए समय निकालें और अपने आप को समय दें, कुछ घर से बाहर समय निकालें और अनहेल्दी जो हमारा लाइफस्टाइल है उसको भी छोड़ दें, क्योंकि जो हमारा खान पान का तरीका है, ये हमारी जो गलत आदतें हैं उस कारण से हमने अपने शरीर में ना जाने कितने ही वायरस और बैक्टीरिया को अपना मेहमान बना रखा है। तो ज़रूरी है कि हम अपने बॉडी को तो डिटॉक्स करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये और भी ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने मेंटल डिटॉक्स भी करें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत से दुष्प्रभाव होंगे जो हमें झेलने पड़ेंगे। तो बहनों, पहले हम ये समझ लें कि हमारे लिए मेंटल डिटॉक्स करना क्यों ज़रूरी है। यदि हम मेंटल डिटॉक्स करते हैं तो हमें तनाव और चिंता से मुक्ति मिलती है, क्योंकि हम लगातार काम करते हैं, भागदौड़ भरी हमारी ज़िंदगी है, तो हमें चिंता भी होती है, तनाव भी होने लगता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को मेंटल डिटॉक्स करें। इसके अलावा बहुत अधिक सोचते हैं यदि हम, और स्क्रीन पर बहुत अधिक टाइम बिताते हैं तो हमारी नींद प्रभावित होती है। इसलिए बेहतर नींद के लिए हम स्क्रीन का जो समय है वो सीमित करें और सोच से भी थोड़ा बाहर निकलें। इसके अलावा बहनों, हम अपने फोकस में वृद्धि करें, यानी गैर जरूरी बातों को दिमाग से निकाल दें और जो जरूरी बातें हैं जिनसे हमारे दिमाग का बोझ हल्का होता है उनको अपने जीवन में शामिल करें। इसके अलावा भावनात्मक संतुलन ये हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। यदि हम अपनी भावनाओं पर संतुलन रखते हैं, भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, तो हम नकारात्मकता से दूर रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं और भावनात्मक रूप से मजबूत भी होते हैं। अब बहनों, अब हम ये जान लेते हैं कि हमें अपने आप को मेंटल डिटॉक्स करने के लिए क्या करना चाहिए। तो बहनों, सबसे पहले तो हमें अपने लिए समय जरूर निकालना चाहिए और इस समय का हमें सही सदुपयोग करना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि हम अपने लिए समय निकालें और अपने उस समय को हम स्क्रीन टाइम में बिता दें, यानी मोबाइल चला लें, टीवी देख लें या फिर लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह। नहीं, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। यदि हम अपने लिए समय निकाल रहे हैं तो इस बात का हम पूरा ध्यान रखें कि दिन के जो कुछ घंटे हैं उन घंटों में मोबाइल से दूर रहें और सोने से कम 1 घंटा पहले तो फ़ोन और सोशल मीडिया से और अपने ईमेल से भी बिल्कुल दूरी बना लें। इसके अलावा बहनों, रोज़ कुछ समय पेड़ पौधों में और खुली हवा में बिताएं, क्योंकि इससे हमारे मन को शांति मिलती है और जब हम हरे भरे वातावरण में रहते हैं तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य में सुधार तो होता ही है। इसके अलावा बहनों, प्रतिदिन जो है 10 मिनट ध्यान करें, योगा करें, गहरी सांस लें, आपको बहुत राहत मिलेगी। और दिन भर के तनाव को कम करने के लिए अपनी भावनाओं को कागज़ पर उतारें।

के लिए आप चाहें तो डायरी लिख सकते हैं, या फिर डायरी लिखना अगर आपका शौक नहीं है तो आप कागज़ पर कुछ जो पन्ने हैं उन पर भी अपनी भावनाओं को किसी भी रूप में लिख सकते हैं, चाहे तो कविता के रूप में, चाहे तो कहानी के रूप में, या फिर चाहे तो चित्रकारी भी कर सकते हैं, पेंटिंग भी कर सकते हैं। यानी अपनी भावनाओं को बाहर निकालना बेहद ज़रूरी हो जाता है, और यदि हम अपनी भावनाओं को बाहर निकाल देते हैं तो यकीन मानिए तनाव कम होता है और मेंटल डिटॉक्स तो होता ही है। इसके अलावा बहनों, काम के बीच में थोड़ा विराम ज़रूर लें। यदि हम लगातार काम करते हैं तो फिर काम का तनाव, उसका बोझ हमारे दिमाग पर होने लगता है और हमें थकान ज़्यादा होती है। शारीरिक स्वास्थ्य तो बिगड़ता ही है, निश्चित रूप से मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। इसके अलावा बहनों, हमें अपने लिए समय निकालना है, और हमें हम लिख भी नहीं सकते हैं तो हम कुछ ऐसा करें कि हम अपने आप को खुश महसूस करें। इसके लिए हम चाहें तो योगा कर सकते हैं, चाहें तो खेलकूद में भाग ले सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, और यदि ये भी नहीं तो कम से कम अच्छा गीत और संगीत तो सुन ही सकते हैं, क्योंकि गीत और संगीत जो है वो हमारे दिमाग को बहुत शांति देता है, सुकून देता है, और हम ख्यालों की दुनिया में खो जाते हैं। आइए सुनते हैं प्यारा सा गीत।

बहनों, गर्मी का मौसम होता है तो ऐसे मौसम में घर में रखे रेफ्रिजरेटर का यूज़ बहुत अधिक बढ़ जाता है। और फ्रिज में रखे ठंडे फ्रूट्स, शेक और आइसक्रीम का लंबे समय तक मज़ा लेना है तो हमारे फ्रिज को भी हमें ध्यान से रखना ही पड़ेगा। बहनों, कभी आपने सोचा है कि जो रेफ्रिजरेटर है अंदर से बहुत ठंडा होता है लेकिन जो उसकी आउटर साइड है उसकी बॉडी गर्म हो जाती है। अगर ये सामान्य गर्म है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा गर्म हो रहा है तो हमें तुरंत टेक्नीशियन को बुलाना चाहिए और अपने फ्रिज को चेक करवाना चाहिए, क्योंकि यदि हम थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो शायद हमारा नुकसान हो सकता है। बहनों, हमें टेक्नीशियन को तो बुलाना ही है, लेकिन यदि हम पहले से ही कुछ संभल कर रहे हैं तो शायद अपने फ्रिज की अच्छी देखभाल कर सकते हैं, इसे लंबे समय तक चला सकते हैं और जो फ्रिज में रखा ठंडा सामान है उसका पूरा आनंद ले सकते हैं। इसके लिए बहनों, हमें गर्मियों में फ्रिज को फ्रेश रखने के लिए और उसकी कूलिंग क्षमता को बनाए रखने के लिए सबसे पहले उसके तापमान को चेक करना चाहिए और उसके तापमान को सेट रखना चाहिए। ज़्यादा कूलिंग के चक्कर में हम ना पड़ें, और जो इसका जो अगर हम बहुत अधिक कूलिंग करते हैं तो फिर इसके कंप्रेसर पर बहुत अधिक लोड बढ़ता है, इसलिए टेम्परेचर जो है सामान्य रखें। इसके अलावा जो फ्रिज के दरवाजे की जो रबर होती है ये ठीक से बंद हो रही है या नहीं, इस बात को समय समय पर चेक करते रहें। यदि रबर ढीली होगी तो जो ठंडी हवा है फ्रिज की वो बाहर आएगी और बाहर की गर्म हवा फ्रिज में जाती है। इसके अलावा बहनों, हम घर में जो भी खाना बच जाता है या कोई भी सामान है हम फ्रिज में रखते हैं तो इस बात का हम ध्यान रखें कि कोई भी गर्म चीज़ हम सीधे फ्रिज में ना रखें, इसे पहले ठंडा होने दें। यानी सामान्य तापमान पर जब कोई भी चीज़ आ जाती है तो उसके बाद ही उसे फ्रिज में रखें। इसके अलावा बहनों, जो भी चीज़ें फ्रूट्स है, सब्जी है, जो भी चीज़ें हम फ्रिज में रखते हैं इनको अच्छी तरह से ढक कर रखें या फिर एयर टाइट डिब्बे में रखें। इससे हमारा फ़ायदा ये होगा कि जो हमारे जो खाने की महक है आपस में नहीं मिलेगी और खाने की जो नमी है वो भी बरकरार रहती है। इसके अलावा हरी सब्जियां हम एक साथ ले आते हैं सप्ताह भर की, तो उन सब्जियों को हम पॉलीथीन से निकाल कर सूती कपड़े में रखें या फिर पेपर में लपेट कर रखें, और ध्यान रहे ये सब्जियां हमें सब्जी वाले डिब्बे में ही रखनी है। इसके अलावा यदि फ्रिज में बदबू आती है तो वो खाने में भी बदबू आएगी, तो बदबू को दूर करने के लिए या फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि फ्रिज में बदबू नहीं आती लेकिन अजीब सी महक आती है, तो उस अजीब सी महक को दूर करने के लिए आप एक छोटी कटोरी में एक बेकिंग सोडा या फिर सूखी कॉफ़ी पाउडर भरकर फ्रिज में रख दें, फ्रिज के किसी भी कोने में रख दें। इससे जो आपकी अजीब सी महक है और बदबू है वो नहीं आएगी। बहनों, इस बात को तो आपको मानना ही पड़ेगा और इस बात का विशेष ध्यान भी रखना पड़ेगा कि सप्ताह में कम से कम एक बार तो ज़रूर फ्रिज के अंदर के हिस्सों को हल्के गुनगुने पानी से और उस पानी में सिरका डालकर फ्रिज को साफ़ करें। इससे क्या होगा, बैक्टीरिया और फंगस नहीं पनपेंगे, आपका फ्रिज बहुत सुरक्षित रहेगा और खाने में किसी भी तरह की बदबू या अजीब सी महक नहीं आएगी। बहनों, बातें तो बहुत सारी हैं बताने के लिए, हम पहले सुनते हैं गीत।

बहनों, गर्मी का मौसम है, फ्रिज का यूज़ हम बहुत करते हैं, तो ज़रूरी है कि हम अपने फ्रिज का ध्यान भी रखें। इसके लिए हम फ्रिज की जगह का विशेष ध्यान रखें, यानी कि जो फ्रिज है उससे हम बहुत अधिक ना भरें। उसको 80% से ज़्यादा हमें नहीं भरना है, क्योंकि यदि हम बहुत अधिक भर देते हैं फ्रिज को, यानी सामान बहुत सारा रख देते हैं, तो जो अंदर की जो ठंडी हवा है उसको घूमने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं मिलेगी, और फिर आपका सामान ठंडा नहीं होगा, कूलिंग नहीं होगी, तो आपको शिकायत रहेगी कि भाई बर्फ़ भी नहीं बनती है फ्रिज में, कूलिंग नहीं है, किसी टेक्नीशियन को बुलाया जाए और उसे चेक करवाया जाए। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, यदि आप पर्याप्त मात्रा में सामान रखते हैं तो फिर फ्रिज में अच्छी कूलिंग रह सकती है। इसके अलावा बहनों, यदि आपका जो फ्रिज है डायरेक्ट कूल मॉडल है, तो ज़्यादा बर्फ़ जमने पर उसे 10 से 15 दिनों में एक बार डिफ्रॉस्ट ज़रूर करें। और जो फ्रिज की जो बाहरी सुरक्षा है, ये बहुत ज़रूरी होती है। इसकी बाहरी सुरक्षा के लिए और बिजली की बचत के लिए भी फ्रिज की जो फ्रिज है उसको दीवार से कम 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। इसके अलावा फ्रिज को हम सीधी धूप में ना रखें, और गैस चूल्हे के पास तो बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि गैस चूल्हे की जो गर्मी होगी उससे फ्रिज में कूलिंग कम होने की संभावना रहती है।

इसके अलावा फ्रिज के आसपास कोई भी हीटिंग उपकरण ना रखें, और जहाँ फ्रिज रखा हुआ है वहाँ का तापमान समय समय पर चेक करते रहें। यदि तापमान कम होगा तो फ्रिज को कूलिंग नहीं मिलेगी, जिससे फ्रिज में रखा सामान भी आपका कूल कूल नहीं होगा। बहनों, फ्रिज के जो पिछला हिस्सा है उसको हल्के हाथ से समय समय पर साफ करते रहें, और जो फ्रिज की ऊपरली ऊपर की साइड होती है जो, उस पर हमें प्लास्टिक का जो कवर है वो भी नहीं रखना है। इस बात का तो हमें विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा जो फ्रिज का दरवाज़ा है ठीक से बंद हो रहा है या नहीं, इसको समय समय पर चेक करते रहें, और यदि ऐसा लगता है कि दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं हो रहा है तो हमें तुरंत चेक करवाना चाहिए, और जो फ्रिज की जो दरवाज़े की सील है उसको तुरंत बदलना चाहिए। इसके अलावा बहनों, एक बात का तो हम ध्यान जरूर रखें कि हम फ्रिज को बार बार ना खोलें, क्योंकि यदि हम फ्रिज को बार बार खोलते हैं तो बाहर की जो गर्म हवा है उसमें जाएगी और अंदर की ठंडी हवा बाहर आएगी, फिर सामान ठंडा नहीं होगा, बर्फ़ भी नहीं होने होगी। इसलिए जब भी आवश्यकता हो तभी फ्रिज खोलें। और एक छोटी सी गुजारिश है, यदि घर में बच्चे हैं तो आप बच्चों को फ्रिज से थोड़ा दूर रखें, क्योंकि उनको जो पानी ठंडा लेना है तो उनको बॉटल दे सकते हैं और कैंपर का भी यूज़ हम कर सकते हैं। और ज़रूरी है कि हम फ्रिज को लॉक करके रखें, जिससे कि बच्चे बार बार फ्रिज को नहीं खोलेंगे और हमारा फ्रिज लंबे समय तक हमारा साथ निभाएगा। और अब प्यारा सा गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: बहनों, अब बात करते हैं कुछ खाने पीने की। और गर्मी का मौसम है, बरसात का मौसम भी नज़दीक आ रहा है, तो ऐसे में हमें भुट्टे खाना बहुत अच्छा लगता है। भुट्टा यानी मक्का खाना, ये खाने में बेहद स्वादिष्ट होता है और पौष्टिक भी होता है। अक्सर हम इसे भून कर खाते हैं, इस पर नींबू का रस लगाकर और नमक लगाकर खाते हैं। बहनों, ये तरीका तो है इसे पारंपरिक तरीके से खाना, और यदि हम चाहें तो इसके बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बना

सकते हैं जो खाने में बेहद स्वादिष्ट होते हैं, साथ ही साथ पौष्टिक भी होते हैं। इन भुट्टों से हम भुट्टे की कीस बना सकते हैं, कॉर्न चॉट चाट बना सकते हैं और भी बहुत से व्यंजन। इन्हीं भुट्टे के पकोड़े भी हम बना सकते हैं। बहनों, आप भुट्टे को बिल्कुल हल्के में ना लें, ये बेहद स्वादिष्ट तो होता ही है, पौष्टिक भी होता है, इसके खाने के बेहद फ़ायदे हैं। चलिए, अब व्यंजन तो बाद में बनाएंगे, पहले हम आपको इसके फ़ायदे बता दें ताकि आप पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार हो जाएं भुट्टे के व्यंजन बनाने के लिए। तो बहनों, यदि हम भुट्टे खाते हैं तो इससे हमारा जो हृदय है वो भी अच्छा रहता है, कब्ज़ दूर होती है, इसके अलावा आँखों की रोशनी बढ़ती है, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, हृदय रोग से तो हमें बचाता है ही। तो बहनों, भुट्टे का सीज़न ख़त्म हो जाए इससे पहले पहले हम कुछ ऐसी रेसिपीज़ ट्राई कर लें जिससे कि इन भुट्टे के दानों को हम यादगार स्वाद के रूप में बना लें और हमेशा सहेज कर रखें। तो बहनों, सबसे पहले तैयार हो जाइए भुट्टे के क्रिस्पी कॉर्न बनाने के लिए। तो बहनों, इसे बनाने के लिए आप सबसे पहले जो भुट्टे के दाने हैं इन्हें एक कटोरी में निकाल लीजिए और इन्हें उबाल लीजिए 3 से 4 मिनट तक, और भुट्टे का सारा पानी जो है, जो उबाला है आपने, उसको छान लीजिए, पानी को अलग कर दीजिए। अब जो उबले हुए भुट्टे हैं इसमें 3 चम्मच मैदा, 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च और 1 चम्मच चावल का आटा मिलाएं और स्वाद के अनुसार नमक और काली मिर्च डालकर मिक्स कर लें और इसे गरम तेल में तल लें। और इसके बाद आप अलग से एक पैन में तेल गरम करें, उसमें लहसुन प्याज डाल लें और फिर इसमें आप जो तले हुए आपके भुट्टे हैं उसको भी डाल दें। इसके बाद इसमें सोया सॉस, विनेगर, लाल मिर्च पाउडर और चिली सॉस मिलाएं और मज़े से खाएं, खाने में बेहद स्वाद लगेंगे, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। इसी तरह से बहनों, आप चाहें तो इसके पकोड़े भी बना सकते हैं भुट्टे के। इन्हें बनाना भी बेहद आसान है। आप भुट्टे के पकोड़े को तैयार करने के लिए भुट्टे को कद्दूकस कर लीजिए, एक कटोरे में निकाल लीजिए और इसमें कॉर्न फ्लोर, अदरक, लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्च स्वाद के अनुसार और बारीक कटा हुआ धनिया मिला लीजिए। कढ़ाई में तेल गरम कीजिए और जो आपने ये मिश्रण तैयार किया है इसमें थोड़ा थोड़ा डालिए और पकोड़े की तरह इसे तल लीजिए। फिर आप अपने स्वाद के अनुसार इमली की चटनी या फिर हरी चटनी, जो आप पसंद करते हैं, उसके साथ खाइए और गर्मा गर्म चाय के साथ इसका स्वाद लीजिए। यकीन मानिए, बेहद आनंद आएगा। और अब एक प्यारा सा गीत।

बहनों, आपने व्यंजन तो तैयार कर लिए होंगे और गीत का आनंद भी आपने ले लिया। और अब जब आप अपने किचन में जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि भाई व्यंजन तो बन गए, उसका आनंद भी ले लिया, लेकिन हमारी किचन बहुत गंदी हो गई है। तो बहनों, चिंता मत कीजिए, आपकी किचन को साफ करने के तरीके भी आपको बता देते हैं, कुछ ऐसे जिद्दी दाग जो आपके किचन में लग गए हैं। तो आइए आपको वो तरीका बताते हैं, बहुत आसान सा, जिससे कि आप अपने किचन के जो जिद्दी दाग हैं उन्हें दूर कर सकें। बहनों, जो बेकिंग सोडा है, ये एक नेचुरल क्लीनर है जो जिद्दी दागों को हटाने में मदद करता है। आप बेकिंग सोडे का पेस्ट बनाकर दाग वाली जगह पर लगाइए और कुछ देर बाद धो लीजिए, दाग हट जाएंगे। इसी तरह से सिरका और पानी का मिश्रण बनाएं और इसे दाग पर लगाएं। कुछ मिनट के बाद एक स्पंज से या कपड़े से दाग को रगड़ें और फिर पानी से धो लें, दाग साफ़ हो जाएंगे। आप चाहें तो ये तरीका भी नहीं अपनाना चाहती हैं तो एक और आसान तरीका है, नींबू का रस जो है उसे आप दाग वाली जगह पर लगाएं और कुछ देर बाद इसे रगड़ कर साफ़ करें, आपके जिद्दी दाग ख़त्म हो जाएंगे। जो नमक है वो भी दाग को हटाने का रामबाण इलाज है। आप इसे स्क्रब की तरह दाग वाले स्थान पर इस्तेमाल कर सकते हैं और दाग को हटा सकते हैं। बहनों, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये ऐसे आसान तरीके हैं जिसे आप बड़ी आसानी से आजमा सकते हैं, अपने जिद्दी दागों को दूर कर सकते हैं। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहें तो आपके पास डिश सोप तो होगा ही, तो आप इस डिश सोप से भी तेल और चिकनाई वाले दाग हटा सकते हैं। आप गर्म पानी में डिश सोप मिला लीजिए और दाग पर लगा दीजिए, थोड़ी देर के बाद साफ़ कीजिए, दाग साफ़ हो जाएंगे। इसके अलावा बहनों, एक जो टूथपेस्ट है इसमें हल्के केमिकल्स होते हैं जो दाग को हटाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो आप टूथपेस्ट को आप दाग वाली जगह पर लगाएं और थोड़ी देर के बाद साफ़ कर लें, आपकी जो किचन के जिद्दी दाग हैं वो समाप्त हो जाएंगे और आपकी जो किचन है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और हल्की महक भी आपके किचन में आएगी। और अब प्यारा सा गीत।

0: Government holds all-party meeting ahead of the monsoon session of Parliament. Opposition stages symbolic walkout of invitation to NCPI to the meeting. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju seeks cooperation of all parties for smooth running of Parliament. Flash floods and landslides hit multiple places in Jammu and Kashmir, claiming several lives and damage to property. Rescue operations in full swing, sent assures of all possible assistance. President Draupadi Murmu embarks on three-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania. In badminton, PV Sindhu scripts history, becoming first Indian to win Japan Open, clinches women's singles title, defeating Japanese shuttler Akane Yamaguchi. And football fever peaks worldwide as Argentina and Spain gear up for a showdown in FIFA World Cup final tonight. And with that, we end the Midday News.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में एनसीपीआई को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत, संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया रवाना हुई। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रचा। महिला सिंगल्स फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को हराया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से। और अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के कल से शुरू होने से पहले सरकार ने आज संसद भवन एनेक्सी में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। हमारे संवाददाता ने बताया कि बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन भी उपस्थित रहे।
2: बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने एनसीपीआई को बैठक में शामिल करने को लेकर विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, परंतु विरोध दर्ज कराने के बाद विपक्षी दलों के सदस्य बैठक में शामिल हो गए। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये वॉकआउट एनसीपीआई को बैठक में आमंत्रित किए जाने के विरोध में प्रतीकात्मक बहिष्कार था। एनसीपीआई हाल ही में गठित एक नया राजनीतिक दल है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कई बागी सांसद शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: मॉनसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से आग्रह किया है कि वे संसद के आगामी मॉनसून सत्र की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे इस मॉनसून सत्र के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने में योगदान और सहयोग करें। उन्होंने कहा कि संसद सभी की है और इस दौरान सरकार विभिन्न विधायी कार्य करेगी और विधेयक प्रस्तुत करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य रचनात्मक रूप से इसमें भाग लेंगे। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद जितनी कुशलता से काम करेगी देश के लिए उतना ही अच्छा होगा।
3: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें

0: लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
1: श्री रिजिजू ने कहा कि ये बार बार साबित हो चुका है कि संसद में व्यवधान डालने से कोई राजनैतिक लाभ नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की बात सुनने को तैयार है और उसे उम्मीद है कि विपक्ष भी सरकार की बात को सुनेगा। उन्होंने कहा कि सदन में व्यवधान डालने से सभी का समय बर्बाद होता है और करदाताओं का पैसा भी व्यर्थ हो जाता है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में रात भर हुई लगातार बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। आज बाढ़ का पानी सवेरे बेला कॉलोनी के नए बस स्टैंड सहित निचले इलाकों में भर जाने के कारण सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों का जलस्तर बढ़ने और उनके किनारों के टूट जाने के कारण दर्जनों वाहन बह गए या डूब गए।

0: जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में रात भर हुई लगातार बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। आज बाढ़ का पानी सवेरे बेला कॉलोनी के नए बस स्टैंड सहित निचले इलाकों में भर जाने के कारण सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों का जलस्तर बढ़ने और उनके किनारों के टूट जाने के कारण दर्जनों वाहन बह गए या डूब गए, जिससे भारी अव्यवस्था फैली। स्थानीय प्रशासन की मदद से बचाव और राहत टीमें प्रभावित परिवारों को सुरक्षित निकालने में जुटी रही। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक पूरे जम्मू कश्मीर में मध्यम से तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में कटरा उपमंडल प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई और प्रभावी समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए मॉनसून आपदा प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। किसी भी जानकारी के लिए नियंत्रण कक्ष के नंबर 01-991-295-681 पर संपर्क किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज सवेरे तेज वर्षा के कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ आई, जिसमें 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हो गए। सभी मौतें सबसे ज्यादा प्रभावित सूरनकोट तहसील में हुई हैं। लोअर मुर्रा गांव में एक मकान पर चट्टाने गिरने से मकान मालिक और परिवार के 5 अन्य सदस्य लापता हो गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी और पुंछ में बचाव और राहत के कामों की समीक्षा की। उपराज्यपाल स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुंछ में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण हुई दुखद मौतों पर गहरा शोक व्यक्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज बारिश के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की हालत का जायजा लिया। श्री शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। जम्मू और कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। हमारे संवाददाता के अनुसार खराब मौसम के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। लद्दाख में शनिवार को करगिल जिले में सांकू सब डिवीजन के अंतर्गत आने वाले संग्रह गांव में अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ। इस बाढ़ के कारण करगिल जंस्कार राष्ट्रीय राजमार्ग 301 बंद हो गया है। आरंभिक खबरों के अनुसार बाढ़ के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है, हालांकि निजी संपत्ति को नुकसान होने और मवेशियों के मरने की खबर जरूर है। प्रशासन ने यात्रियों, निवासियों और पर्यटकों को सड़क खुलने की आधिकारिक घोषणा होने तक प्रभावित मार्गों पर यात्रा को टालने की सलाह दी है। आपातकालीन सहायता के लिए जिला आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र करगिल से फोन नंबर 8082743220 या 01985259052 से संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन 3 देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
1: यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा होगी। इस दौरान वे मैसेडोनिया के राष्ट्रपति सिल्या नोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। यात्रा के अंतिम में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की 3 दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: जंजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मुविनी ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। जंजीबार तंजानिया का एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेता

0: अपने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा भी की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी आज सुबह राष्ट्रपति मुविनी से भेंट की। राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली मुविनी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की चार दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनके साथ उनकी पत्नी तथा मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
1: दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। ये खिताब जीतने वाली वे पहली भारतीय हैं। फाइनल में सिंधु ने तीन बार की विश्व विजेता रही जापान की अकाने यामागुची को हराया। सिंधु ने दो वर्ष से अधिक समय के अंतराल के बाद किसी सुपर 750 स्तर की प्रतियोगिता का खिताब जीता है। उधर भारत और इंग्लैंड के बीच तीन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और निर्णायक मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। चोटिल वॉशिंगटन सुंदर के स्थान पर ऑलराउंड हर्ष दुबे को टीम में शामिल किया गया है। वहीं फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने पर पीवी सिंधु को बधाई दी है। डॉ मांडविया ने कहा कि जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनकर सिंधु ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी इस उपलब्धि पर पूरा देश गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मंगल पांडे मातृभूमि के गर्व और सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर उन्होंने कर दिए थे। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मंगल पांडे की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र OMR शीट की जांच के लिए केवल असली OMR ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या AI से बनाई गई OMR शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए सिर्फ असली OMR शीट ही जमा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन का एक लेख साझा किया। ये लेख इस बात को दर्शाता है कि कैसे नवाचार और वैश्विक साझेदारी के जरिए परंपरागत भारतीय शिल्पकला आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। श्री मोदी ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद पहल स्थानीय शिल्पकला को बाजार पहुंच प्राप्त कराने, सतत आजीविका सृजित करने और देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को सशक्त बनाने तथा विरासत को संरक्षित करने में सहायता दे रही है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन इस सप्ताह अपनी पहली अमरीकी यात्रा पर व्हाइट हाउस में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के निमंत्रण पर राष्ट्रपति आउन कल वॉशिंगटन के लिए रवाना हुए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में NCPI को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत हुई और संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया रवाना हो गई। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म इम्तिहान का ये नगमा अभी आपने सुना। गीत के बोल फैज़ अनवर के थे, संगीत अनु मलिक का। कार्यक्रम में आगे सुनते हैं अलका याग्निक के साथ कुमार सानू को। गीत के बोल समीर के हैं, संगीत नदीम श्रवण का और फिल्म का नाम है दिलवाले।
1: कुछ नहीं रहा।
2: क्या हक है तुम्हें मेरे ही घर में घुस के मुझे सताने का?
1: तभी तो तुम तक मेरा जुनून, मेरे प्यार का पागलपन पहुंचेगा।

मिस्टर आशिक, लीजिए सुनते हैं इस फिल्म का ये नगमा। गीतकार इंदिवर हैं, संगीतकार जतिन ललित, आवाज़ कुमार सानू की है।

अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण को आइए सुनते हैं फिल्म तुम बिन में। गीत के बोल फैज़ अनवर के हैं और संगीत निखिल विनय का।

अलका याग्निक और कुमार सानू के गाए इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 3 बजे हैं। लीजिए अब सुनते हैं उर्दू सर्विस।

अब ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। दोपहर के 3 बजे हैं, हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात का आगाज होता है।

सामिन, आपको बता दें बस कुछ ही देर बाद 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी। 3:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। दिन में 3:30 हम पेश करेंगे जनाब योगराज टंडन के तहरीर का दर्रा में बदला का दूसरा और आखिरी हिस्सा। 4 बजे से आप लुत्फ ले सकेंगे फिल्मी नगमों का। फिल्मी नगमों का प्रोग्राम जारी रहेगा 4:50 तक। 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 5 बजे हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। तो सामने ये था एक मुख्तसर तारुफ हमारे यहाँ से नशर होने वाले इन प्रोग्रामों का जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

मीडियम भी 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 3:05 हुआ चाहते हैं।

0: अब खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप अब्दुल मालिक से खबरें सुनिए। पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल सरकार ने आज सभी पार्टियों की मीटिंग तलब की। अपोजिशन ने मीटिंग में एनसीपीआई को मदऊ किए जाने पर अलामती वॉकआउट किया। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट का कामकाज खुशउसलूबी के साथ चलाने के लिए सभी पार्टियों से तआवुन की अपील की है। जम्मू कश्मीर में कई मकामात पर चट्टानों के टुकड़े गिरने और अचानक सैलाब आने से कई अफराद की मौत हुई है और इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा है। बचाव कार्रवाई जोर शोर से जारी है। मरकज ने हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू तीन मुल्कों मोल्दोवा, शिमाली मकदूनिया और रोमानिया के दौरे पर रवाना हो गई हैं। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जापान ओपन का टाइटल जीतकर पहली भारतीय खिलाड़ी बनने का तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। सिंधु ने जापान की अकाने यामागुची को हराकर खवातीन सिंगल्स का टाइटल जीता। और फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में आज रात अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें आमने सामने होंगी। अब खबरें तफसील से। कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल आज सरकार ने नई दिल्ली में सभी पार्टियों की मीटिंग तलब की। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस मीटिंग की सदारत की। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू और राज्यसभा में ऐवान के लीडर जगत प्रकाश नड्डा भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। जनाब किरण रिजिजू ने मीटिंग से पहले इजहार ख्याल करते हुए सभी सियासी पार्टियों से अपील की कि वो मानसून इजलास के कामकाज को खुशउसलूबी से चलाने के लिए तआवुन करें। इधर मीटिंग शुरू होने के कुछ ही देर बाद अपोजिशन पार्टियों ने शुरू में मीटिंग से वॉकआउट किया। मीडिया से बात करते हुए तृणमूल कांग्रेस की मेंबर पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत पूरी अपोजिशन की पार्टियों ने एहतजाज में मीटिंग से वॉकआउट किया। मोहतरमा महुआ मोइत्रा ने इल्ज़ाम लगाया कि आज की मीटिंग में शिरकत करने वाली नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया को कोई तस्लीम शुदा पार्टी नहीं है। अलबत्ता अपना एहतजाज जाहिर करने के बाद अपोजिशन के अरकान मीटिंग में शामिल हो गए। इनमें कांग्रेस के जयराम रमेश, सीपीआईएम के लीडर जॉन ब्रिटास, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी और तृणमूल कांग्रेस की मेंबर पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश के बाद राजौरी कस्बे में अचानक सैलाब आ गया। कई निचले इलाकों में पानी भर जाने के तनाजुर में सैकड़ों लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होना पड़ा है। दरियाओं के किनारों में शिगाफ पड़ गए हैं और दरियाओं का पानी किनारों से बाहर बहने की वजह से दर्जनों मोटर गाड़ियाँ या तो पानी में बह गई या जेरे आब आ गई हैं। सरकारी और प्राइवेट इमलाक को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। जिला इंतजामिया और पुलिस की माओनत से बचाव और इमदादी टीमों ने मुतासरा कुनबों को बचाकर बाहर निकाला है। इन इलाकों में बेला कॉलोनी और अब्दुल्ला ब्रिज के नज़दीक झुग्गी झोपड़ियों की बस्ती शामिल है। 50 से ज़्यादा कुनबों को महफूज मकामात पर पहुँचाया गया है क्योंकि सैलाब का पानी उनके घर में आ गया था। इधर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला से फ़ोन पर बात की और राजौरी ज़िले में सैलाब की सूरत हाल का जायज़ा लिया। जनाब अमित शाह ने मुतासरा लोगों की सलामती और तहफ़ को यकीनी बनाने के लिए मरकजी सरकार की तरफ से उन्हें हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया। महकमा मौसमियात ने अगले चंद रोज़ के दौरान खित्ते में दूर दूर तक बारिश होने और गरज चमक के साथ तेज़ बौछार पड़ने की पेशगोई की है। दूसरी तरफ कटरा की सब डिविजनल इंतजामिया ने बारिश के मौसम के दौरान तेज़ी के साथ कार्रवाई करने और बेहतर तालमेल के लिए दिन रात काम करने वाला एक कंट्रोल रूम कायम किया है। वहाँ के बाशिंदे कटरा मानसून कंट्रोल रूम से रजू करके एमरजेंसी सूरत हाल की इतला दे सकते हैं या मदद हासिल कर सकते हैं। कंट्रोल रूम का नंबर इस तरह है 0191295681। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 0191295681। जम्मू कश्मीर में आज सुबह सवेरे पूंछ जिले में मूसलाधार बारिश के बाद चट्टानों के टुकड़े गिरने और अचानक सैलाब आने से तीन खवातीन समेत कम से कम चार अफराद की मौत हो गई जबकि कई लोग लापता बताए गए हैं। आकाशवाणी जम्मू के नामा निकार ने बताया कि ये सभी अमवात सबसे ज़्यादा मुतासरा

कोट तहसील में हुई है। हुकाम ने फंसे हुए लोगों तक पहुंचने के लिए इमदादी कार्रवाई तेज कर दी है। पूंछ के नूनाबांडी गांव में एक मकान के गिरने से खातून की मौत हो गई। उनके शौहर और 2 साल से लेकर 6 साल तक के 3 बच्चों को बचा लिया गया और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लगातार बारिश और अचानक सैलाब आने के तनाजुर में राजौरी और पूंछ में बचाव और इमदादी कार्रवाई का जायजा लिया। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो पुरसकून रहें और सरकारी जराये से हासिल होने वाली ताज़ा जानकारी पर अमल करें। इधर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने पूंछ में अचानक सैलाब आने से लोगों की मौत होने पर दुख का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा हिल्स में खराब मौसम के मद्देनजर श्री माता वैष्णो देवी यात्रा अब भी मौतल है। आकाशवाणी जम्मू के नामा निगार ने बताया कि नामुवाफिक मौसम के तनाजुर में अकीदतमंदों की सलामती को यकीनी बनाने की खातिर एहतियाती इकदाम के तौर पर यात्रा आर्जी तौर पर रोक दी गई है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो यात्रा दोबारा शुरू होने के ताल्लुक से सरकारी वसीलों के तवसुत से ताज़ा जानकारी हासिल करते रहें। मौसम बेहतर हो जाने और आमद रफ्त के लिए रास्ता महफूज होने के बाद ही यात्रा दोबारा शुरू होने की उम्मीद है। हुकाम सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 3 मुल्कों मोल्दोवा, शिमाली मकदूनिया और रोमानिया के दौरे पर रवाना हो गई हैं। अपने दौरे के पहले मरहले में सदर जमहूरिया मोल्दोवा पहुंचेंगी, जहां वो अपने हमनसब माया सांधू के साथ वफूद की सतह की बातचीत करेंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा की पार्लियामेंट की सद इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी। वो भारतीय बिरादरी के लोगों से भी मिलेंगी। किसी भारतीय सदर जमहूरिया का मोल्दोवा का ये अव्वलीन दौरा है। अपने दौरे के दूसरे मरहले में सदर जमहूरिया मंगल के रोज शिमाली मकदूनिया जाएंगी। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू 3 मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले में जुमेरात को रोमानिया पहुंचेंगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में तंजानिया मुत्तहिदा जमहूरिया के जंजीबार के सदर और इनकलाबी काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर हुसैन अली मिविनी से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि मुलाकात के दौरान उन्होंने आला तालीम, सलाहियत साजी, पानी की सप्लाई, सेहत, मसनूई जहानत, AI, डिजिटल और दीगर तरजीही शोबों में भारत और तंजानिया के दरमियान जारी तावुन में इजाफा करने के बारे में तबादला ख्याल किया। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि IIT मद्रास का जंजीबार कैंपस भारत की मुस्तहकम साझेदारी और अफ्रीका की तालीम और तरक्की से मुतालिक तरजीहात के तहत भारत के ठोस आजम की एक ताबनाक मिसाल है। आज अजीम इनकलाब पसंद रहनुमा और मुजाहिद आज़ादी मंगल पांडे का यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंगल पांडे ने मादर वतन की शान और अजमत को सरबुलंद रखने के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया था। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि मंगल पांडे की दिलेरी और अजीम कुर्बानी आज भी हर भारतीय को फख्र से सरशार कर देती है। वजीर आजम ने कहा कि हुब्बुल वतनी के मंगल पांडे के जज्बे और बहादुरी से मुल्क की हर आने वाली नस्लों को तहरीक मिलती रहेगी। भारत की सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी और ओलंपिक में 2 बार तमगे जीतने वाली PV सिंधु ने जापान ओपन टूर्नामेंट में खवातीन सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है। वो जापान में बड़ा टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। आज रात न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। इसमें मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला यूरोप की मजबूत टीम स्पेन से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। भारत और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और फैसलाकुन एक रोजा मैच आज लंदन में लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक 12:30 बजे शुरू होगा। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल सरकार ने आज सभी पार्टियों की मीटिंग तलब की। अपोजिशन ने मीटिंग में NCPI को मदऊ किए जाने पर अलामती वॉकआउट किया। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट का कामकाज खुश उसलूबी के साथ चलाने के लिए सभी पार्टियों से तावुन की अपील की है। जम्मू कश्मीर में कई मकामात पर चट्टानों के टुकड़े गिरने और अचानक सैलाब आने से कई अफराद की मौत हुई है और इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा है। बचाव कार्रवाई जोरों शोर से जारी है। मरकज ने हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। इसके साथ ही खबरों का

0: ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। सामईन, आज की मेरी पसंद प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे हैं गोपालदास सक्सेना यानी नीरज जी के लिखे हुए नगमे, जिनका आज यौमे वफात है। गोपालदास सक्सेना यानी नीरज 4 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में पैदा हुए। उन्होंने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ एक उस्ताद की हैसियत से धर्म समाज कॉलेज अलीगढ़ में किया और फिर वहीं से उन्होंने अपनी शायरी का आगाज़ भी किया। उस्ताद के होते हुए भी उन्होंने अपनी शायराना रविश को बरकरार रखा और धीरे धीरे उनका कलाम बम्बई तक पहुंचा। इस तरह से वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ गए और बहुत से मशहूर नगमे फिल्म इंडस्ट्री को दिए। उनके नगमों का अगर तस्करा किया जाए तो उन्होंने ज़्यादातर जो उनके नगमे मशहूर हुए वो शंकर जयकिशन की मौसीकी से सजे हुए या फिर एस डी बर्मन की मौसीकी से सजे हुए नगमे थे। उन्हें उनकी इल्मी एतराफ़ में और शायरी के एतराफ़ में 1991 में पद्मश्री और 2007 में पद्मभूषण से नवाजा गया। फिल्म दुनिया को ये खूबसूरत नगमा देने वाला शायर 19 जुलाई 2018 को 93 साल की उम्र में इंतकाल कर गए और अपने पीछे छोड़ गए वो नगमे जो आज भी जब हम सुनते हैं तो नीरज की याद हमारे जहन दिल में ताज़ा हो जाती है।

0: मन लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग रे नजारे बन गए सवेरा जब हुआ।
1: नीलेश की फिल्मों को अगर तस्करा किया जाए तो उसमें नुमाया तौर पर एक फिल्म थी चा चा चा, उसके अलावा नई उम्र की नई फसल और कन्यादान जिसका नगमा भी आप सुन रहे थे। इसके अलावा एक फिल्म थी उनकी प्रेम पुजारी जिसमें उनके नगमात ने धूम मचा दी थी। और जहाँ तक उनके नगमात की बात है, वो नगमे जिन्हें कभी लता मंगेशकर ने आवाज़ दी थी, किशोर कुमार ने आवाज़ दी थी, आज भी हमारे जहनों में तरोताज़ा हैं।

नीरज की कलम से लिखे नगमों की जब बात आएगी तो एक फिल्म का तस्करा ज़रूर होगा, और फिल्म थी गैम्बलर, जिसमें मौसीकी एस डी बर्मन ने दी थी और नगमा जो था वो नीरज का लिखा हुआ था, आवाज़ थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर।

और जब जिक्र है नीरज की नगमात का, तो फिर भला कौन भूल सकता है वो फिल्म जिसके गानों ने धूम मचा दी थी, मेरा नाम जोकर।

0: तो सबन ये थी खिराज अकीदत उस अजीम नगमा निगार के लिए जिसे दुनिया नीरज के नाम से जानती है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमें आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1971 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर। पेश खिदमत है जनाब योगराज का तहरीर करदा ड्रामा बदला का दूसरा और आखिरी हिस्सा।
1: चलो एक दिन और कम हुआ, थोड़ा सा बोझ और हल्का हुआ। मेरे अल्लाह, तू ही सहारा है।
2: अरे बेगम, क्या बात है, अंधेरे में बैठी हो? अरे कम से कम लाइट तो ऑन कर लो।
1: मेरे लिए रोशनी अंधेरा सब बराबर है।
2: अरे बेगम, तुम तो बहुत पहुंची हुई हो। अच्छा चलो नीचे चलो। अरे खाने पर इंतजार हो रहा है।
1: मैं माफी चाहती हूं, मैं सबके साथ दस्तरखान पर शरीक नहीं हो सकूंगी।
2: अरे तो कोई मजायका नहीं, मैं नीचे जाकर कह देता हूं, हम दोनों का खाना ऊपर आ जाएगा।
1: मेरी वजह से आप सबकी नाराजगी मोल लेंगे।
2: अरे बेगम, अगर मैं नहीं लूंगा तो भला और कौन लेगा?
1: देखिए, आपके नवाजिशों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा अकरम साहब। मैं चाहते हुए भी आपको वो एहतराम, वो खुलूस नहीं दे सकती जिसकी आपको मुझसे तवक्को है।
2: मैं जानता हूं बेगम, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। बेगम तुम अपना काम करती जाओ और मुझे मेरा काम करने दो।
1: ये नहीं हो सकता, आप मुझे बेहतर सुलूक की भीख देकर।
2: देखिए बेगम, ये सब जो कुछ भी मैं कर रहा हूं ना, किसी मकसद को सामने रखकर नहीं कर रहा हूं, बस एक एक एक रॉ उठी है जिसके हवाले मैंने खुद को कर दिया है। मेरी जिंदगी ने एक नई करवट ली है और उसकी वजह सिर्फ तुम हो। हाँ बेगम, आज से मैंने पुरानी डगर छोड़ दी है।
1: क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं? इससे कुछ भला नहीं होने वाला। मेरे दिल में आपके लिए नेक ख्यालात पैदा होते ही नहीं। मैं जमाल को नहीं भूल सकती, उसका कत्ल, मेरे अब्बा की मौत, किस किस का हिसाब दूं?
2: आखिर मैं तुम्हारा खाविंद हूं, तुम्हारा मजाजी खुदा।
1: हाँ, मेरे जिस्म पर आपका पूरा पूरा हक है, लेकिन मेरी रूह।
2: आपका जिस्म, हड्डियों का ढांचा, खाक का तोड़ा। नहीं बेगम, आप मुझे गलत समझती हैं। देखिए मैं अब वो पहले वाला अकरम नहीं हूं जिस्म जिस्म मेरे लिए कोई कर...

Io cresci uniti. जिसने उससे होने वाले गुनाहों के बारे में मुझे खबरदार कर दिया, ये नसरीन बेटी का मासूम चेहरा, बिल्कुल मेरे रहमत भाई की सूरत, सब कुछ बर्दाश्त करता हुआ किए गए गुनाहों की सजा भोगने वाला, अपनी तमाम तर रहमतों की बारिश करता हुआ रहमत भाई के चेहरे से उभरती हुई एक और अनदेखी अछूती झलक खुदा के तसव्वुर की मानत भाग भाई मुझे सरफराज कर रहे हैं किसी बहुत बड़े रुतबे से, क्यों क्यों क्यों मैं तस्रीन बेटी को उन गुनाहों की सजा देने पर आमादा हो गया था जो उससे कभी सरजद नहीं हुई, क्यों क्यों आखिर क्यों तस्रीन

0: अकरम बेटा,
1: जी
0: एक बात पूछूं तुमसे।
1: हाँ कहिए ना अब्बा जान।
0: वो भाई, वो अब नसरीन बेटी और तुम, भाई मेरा मतलब वो तुम दोनों, बेचारी सारा दिन घर में अकेली बैठी
1: अरे
0: रहती
1: अब्बा
0: है।
1: जान, आप जानते तो हैं काम की भरमार।
0: अरे
1: और
0: ये क्या कहते हो बेटा, ये क्या कहते हो, काम तो सब दिन होते ही रहते हैं, लेकिन बेटा घर बीवी, क्या बहू से तुम्हारा वो कुछ,
1: क्यों, जो मिल गया है ना उसी का शुक्र बजा लाइए।
0: अब
1: आपका बिगड़ा हुआ बेटा सीधे रास्ते पर आ गया।
0: हाँ वो तो तुम ठीक कहते हो बेटा। अरे बेटा, मैं तो बेहद शुक्रगुजार हूं नसरीन बेटी का, लेकिन अकरम, ये आंगन, ये घर, बहुत सुना सुना है। देखो बेटा, इस घर को कब से एक मासूम बच्चे की किलकारियों का इंतजार भी है।
1: अब्बा जान, खुदा ने हर काम के लिए एक वक्त मुकर्रर कर रखा है।
0: अरे मेरे खुदावंद, कब आएगी वो खुशाइंद साथ, अरे कब इस आंगन में थाली बजेगी, कब आएंगे सब
2: ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरी कोख से तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता,
1: देखो
2: मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी।
1: देखो बेगम, ये मेरी नहीं अब्बा जान की भी आरजू है।
2: अगर इतना ही शौक है तो दूसरी कर लो, मैं तुम्हारे बच्चे की मां नहीं बन सकती, सांप को दूध नहीं पिला सकती मैं।
1: ठीक है बेगम, तुम्हारे गम बेहिसाब हैं और इन गमों की वजह बहुत हद तक मैं हूं। लेकिन बेगम, क्या तुम बता सकती हो क्या सिर्फ तुम्हारा ही दिल दुखता है? नहीं बेगम, चोट से तो हर शीशा चूर हो जाता है। अरे मैं भी तो इंसान हूं।
2: मैं हर तरह का जुल्म बर्दाश्त कर सकती हूं, कर रही हूं और करती रहूंगी, लेकिन मैं जालिम को नहीं भूल सकती, उसे माफ नहीं कर सकती।
1: देखिए बेगम, माफ करने वाला बहुत ऊंचा मुकाम पाता है।
2: मुझे किसी ऊंचे मुकाम का लालच नहीं है, फिर मेरे बस में भी तो नहीं है अकरम साहब, मैं तो बेबस, लाचार, बेयारो मददगार आपके रहमो करम की मोहताज हूं।
1: बेगम, मैंने तुमसे निकाह किया है,

0: खुदा को हाजिर नाजिर जानकर तुम्हारी बेहतरी, तुम्हारी भलाई का बेड़ा उठाया है।
1: आपकी नवाजिश और मेहरबानियों से मेरा दिल नहीं बहल सकता।
2: नसरीन, नसरीन, अरे अकरम भाई, लगता है मैं गलत वक्त पर आ गई।
0: नहीं नहीं गजाला, तुम गलत वक्त पर नहीं आई हो, बल्कि तुम तो बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। अरे भाई, मैं तो समझा समझा के हार गया।
1: आप घर की बात का तमाशा बनाना चाहते हैं?
0: गजाला कोई गैर तो नहीं है।
2: नसरीन जाने गजाला, क्या तुम और अकरम भाई?
1: गजाला, बेहतर है कि तुम हमारे घरेलू मामलात में दखल ना दो, वरना
0: वरना वरना क्या? नसरीन नसरीन, खुदा के लिए अपने इर्द गिर्द ख्याली तिलस्म को तोड़ो, इस भगोले की लपेट में आने से बचो, तुम्हें कुछ हो ना जाए। देखो नसरीन, मैं अब्बा को समझा लूंगा। अरे जरूरी तो नहीं आदमी की हर ख्वाहिश पूरी हो जाए। अरे तुम गमों के इस भयानक अंधेरे से निकलो, निकलो।
2: नसरीन, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अरे कुछ तो सोचो, जो नहीं है खत्म हो चुका है, उसको तुम सीने से लगाए बैठे हो, और जो है तुम्हें मिल रहा है उसे तुम इस बुरी तरह से ठुकरा रही हो, ये ठीक नहीं है नसरी।

0: अरे वाह मेघा, अरे क्या ये वही कमरा है? अरे मेरा कमरा? अरे वाह बेगम, तुमने तो नक्शा ही बदल दिया।
1: आपको अच्छा लगा?
0: अरे तुम अच्छा लगने की पूछ रही हो? अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा। वाकई सच बेगम, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश।
1: अच्छा तो आप मेरी एक बात मानेंगे?
0: अरे एक? बस एक ही? अरे बेगम, आज तो तुम 100 बातें मनवा सकती हो। अरे कम से कम तुमने मुझे इस काबिल तो समझा।
1: तो मुझे माफ कर दीजिए।
0: हाँ?
1: कहिए ना, आपने मुझे माफ कर दिया?
0: चलिए माफ किया, किया माफ। लेकिन माफ करने वाले को ये तो पता चले कि आपका कसूर क्या है।
1: वो कल मैंने बहुत तल्ख कलामी से काम लिया।
0: हाँ?
1: सच, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
0: बेगम प्लीज, प्लीज बेगम प्लीज, देखिए इतनी खुशी एक साथ मत दो, नहीं तो मैं कहीं मैं पागल ना हो जाऊंगा।
1: सच, मैं बेहद नादिम हूं।
0: अरे अच्छा बेगम, अब एक बात इस नाचीज की भी मान लीजिए।
1: कही?
0: नहीं नहीं, लेकिन पहले आप वादा कीजिए आप हमें मायूस नहीं करेंगी।
1: आप कहिए तो।
0: अब बेगम
1: जी,
0: अब चलो आज कहीं बाहर चलें, मतलब गोमती के किनारे घूमेंगे।
1: ठीक है, चलिए।
0: अरे शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम बस जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ।
1: नहीं नहीं, गाड़ी नहीं, रिक्शा पर चलेंगे।
0: अरे वाह, गाड़ी के होते हुए रिक्शा पर क्यों?
1: गाड़ी तेज चलती है, सफर जल्दी खत्म हो जाएगा।
0: अरे चलो चलो रिक्शा पर ही सही। अरे तुम चलो तो सही।

राफत चचा को देखकर कि मुझे क्या हो जाता है, क्या हो रहा है। दो मुतजाद ताकतें आपस में गुत्थम गुत्था है, बदले का खूंखार जज्बा अपनी पूरी ताकत से पिछली बातों को भुला देने, माफ कर देने के जज्बे से नबर्द आजमा है। ये अक्रम किस मिट्टी का बना है।

हार भी तो नहीं जाता। अपने बाप के तमाम गुनाहों का बोझ अपने कंधों पर ढो रहा है। वैसे शराफत चचा भी अब पहले से शराफत चचा कहाँ है? उन्होंने तो वो कुछ भी नहीं किया जो सोचकर अकरम से मेरी शादी कराई। फिर उनकी आंखों में खुशी की चमक, मुझे किस आग में झोंक रही है। मेरे अब्बा, जमाल की लाश। लेकिन अकरम का क्या दोष है इसमें? अकरम के अब्बा के दिल में मचलती आरज़ू, इस घर के आंगन में मासूम बच्चे की हंसी के घुंघरू। बच्चा, शराफत चचा के खानदान का नाम लेवा।

0: भाभी जान, भाभी जान, अकरम की चिट्ठी आई है।
1: अच्छा अच्छा, कैसी है वो? और नसरीन कैसी है?
2: सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। लिखा है अभी कुछ दिन और ठहरेंगे, और लिखता है कि वो नसरीन का खूब दिल लगा हुआ है भाभी जान। दोनों खूब सैर सपाटे करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि नसरीन बहुत खुश है भाभी जान।
1: अल्लाह उन दोनों की खुशियां सलामत रखे, सदा मुस्कुराते थे मेरे
2: भाभी जान। मेरे तो कान तरस गए हैं बहू और बेटे के दबे दबे कह कह सुनने को।
1: अल्लाह बड़ा कारसाज़ है भाई साहब, वो सबकी सुनता है।
2: लेकिन भाभी जान मेरी बारी कब आएगी? अरे कब मुझ गुनाहगार की सुनी जाएगी भाभी जान?
1: सुनी जाएगी, सुनी जाएगी।

0: अरे क्या बात है गजाला, इस कदर आप रही है? खैर तो है,
1: बड़ी खुशी की बात है, बड़ी ही खुशी की बात है।
2: अरे भाई कुछ हम भी तो सुने।
1: चटादान आप? मैं तो आप ही के लिए जाने वाली थी।
0: क्या बात है बेटा, बात कर ले या सांस ले ले। तो
3: आपके आंगन में बच्चा खेलने वाला है।
2: अरे अरे क्या कह रही है बेटा,
0: तुम्हारे मुंह में घी शक्कर।
1: देखो ये नसरीन की चिट्ठी।
0: खा दो
1: चची जान, तुम्हारे बेटे का पाव भारी है।
2: सच बेटी आज तूने तो मुझे बिल्कुल निहाल कर दिया, माला माल कर दिया बेटी तूने मुझे। अब देखना भाभी जान कैसे जश्न मनाता हूँ, सारे शहर में धूम धड़ाका करूंगा। लोग भी क्या याद करेंगे कि शराफत के घर में जश्न हुआ था।
3: अभी से चचा जान, अभी तो इंतजार इंतजार इंतजार और भी।

0: मुबारक हो शराफत अली, मुबारक हो, जश्न मनाओ, तुम्हारे खानदान का नामलेवा पैदा हो गया। खुशी के शादियाने बजाओ, रुपयों की थैली का मुंह खोल दो, दिल खोलकर गरीबों में खैरात बांटो, तुम्हारे घर का चिराग रोशन हो गया।
1: अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, अरे भाई खुशी का मुकाम है। जाओ दोस्तों, शहर की नामी गिरामी गाने वालियों को बुला लाओ, सारे शहर

0: खानदान का चिराग रोशन हो गया।
1: दोस्तों मैं तो ना उम्मीद हो गया था, लेकिन मेरे अंदर उस पाक परवरदिगार के परतों ने मुझसे कहा, शराफत अली सबर कर, हौसला रख, तुम्हारी सुनवाई होगी और जरूर होगी, अल्लाह ताला तुम्हारी मुराद पूरी करेगा। और आज सारी दुनिया देख रही है, उसने खुशियों से मेरी झोली भर दी है।
2: शराफत भाई, दरगाह शरीफ पर चादर चढ़ाना ना भूलना।
1: अरे कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, ये सब उसी का कर्म तो है।
3: ओ नसरीन, ओ बदबख्त, तुम्हारा दुश्मन खुशियों के शादियाने बजा रहा है, उसकी खुशी का इजहार तुम्हारी शिकस्त का मातम है। कहां गई वो नसरीन जो बदले की आग में जल रही थी, जो शराफत अली की जिंदगी को मातम कदा बनाना चाहती थी? अभी भी देर नहीं हुई है, हिम्मत कर ले तू।

0: अरे कोतवाल भाई, मैं बयान नहीं कर सकता कि मैं किस कदर खुश हूं। अकरम के इस नौजायदा बच्चे के कान में देखो, सबसे पहले मैं अल्लाह का नाम पुकारूंगा। अरे मैं सुनाऊंगा उसे अजान।
1: हाँ लो, वो आ गया अकरम जी। मुबारक हो अकरम, मुबारक हो।
0: अरे बेटे, अरे बेटे, तुम अब बाप बन चुके हो।
2: अकरम भाई, अकरम भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। चाचा जा, मैं तो सोने की बालियां लूंगी। अकरम भाई आपसे,
0: अरे जो मांगेगी दूंगा।
1: अरे कहे तो तेरा मुंह मोतियों से भर दूं।
2: चाचा जान, आप गवाह हैं, अकरम भाई क्या कह रहे हैं।
1: चलो चलो चलो, अब उस मासूम के दीदार तो करवा दो।
0: चलो, मैं भी तुम्हारी तरह इंतजार कर रहा था। अच्छा, वो अम्मी कहाँ है? अब वो थोड़ी देर पहले बाहर गई थी किसी काम से। बस
1: चलिए, पहले वहीं चलते।
2: नसरी, जाने गजाला, कहाँ है आप? अकरम भाई, चचा जान और हम आ रहे हैं। मलिका यालिया, कहाँ है आप?
3: नसरीन, नसरीन, अरे कहाँ है?
2: कहाँ है? यहाँ यहाँ कमरे में तो कहीं नहीं।
0: अरे लेकिन वो बच्चा, बच्चा, बच्चा
3: कहाँ गई होगी?
2: नसरीन,
3: नसरीन, अरे नसरीन कहाँ हो?
0: अरे
3: क्या गली कमरे में हो?
1: नसरीन, अरे कहाँ थे आप?
2: मेरी जान, कहो ना।
1: वो बच्चा कहाँ है? बच्चा?
3: हाँ, हमें साहबजादे के दीदार नहीं कराओगी?
2: कहाँ छुपा रखा है शहजादे को?
4: शहजादा? कैसा शहजादा? क्या मतलब?
0: नसरीन, नसरीन बेटा, वो बच्चा कहाँ है? बच्चा?
4: हाँ, बच्चा? किसका बच्चा?
0: नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कहो बेटा, ऐसा नहीं कहते।
1: नसरीन, नसरीन, मेरी जान, मेरी जान,
4: नहीं है, बच्चा नहीं है।
0: क्या क्या कह रही हूँ?
1: क्या मतलब? क्या मतलब?
4: मैंने गला घोंट दिया।
0: गला घोंट दिया?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं नसरीन, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम ऐसा नहीं कर सकती।
2: नसरीन, ये झूठ है, बहुत झूठ है।
4: ये झूठ नहीं है।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, मैं मर नहीं सकता, मेरा बच्चा मर नहीं सकता, मुझे मेरा खानदान का लाभ ले।
1: नसरीन, ये तुमने बहुत बुरा किया, ये तुमने बहुत बुरा किया नसरीन। अरे अरे, काश काश तुम ऐसा ना करती, काश तुम ऐसा ना करती।
4: मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई तुम्हारे अब्बा के चेहरे पर खुशी का नाच और मेरे अब्बा की लाश, दोनों सामने थे। जमाल का खून मेरी आंखों से बह रहा था। ये खुशी के शादियाने मेरी शिकस्त का मातम थे।

0: मैं नहीं देख सकी।
1: ये ठीक नहीं हुआ।
0: शराफत चचा की फतेह मैं नहीं देख सकी।
1: तुम दोनों की लड़ाई है, मुझे कौन से गुनाह की सजा मिली है? मुझे कौन से गुनाह की सजा मिली है बोलो।
2: विक्रम भाई,
0: मैंने बदला ले लिया अपने अब्बा की मौत का बदला।
1: मेरे आँखों का बच्चा। मैं उसके कान में ना जा दूंगा जाला। देखो कोतवाल भाई, देखो ना, देखो ना कोतवाल भाई, ये बच्चा मेरी तरफ किस नजर से देख रहा है देखो। अरे मेरी आवाज कान में पड़ते ही कैसे हाथ पांव चलाने लगा। ये सब मुस्कुरा रहा। अरे देखो कैसे हाथ पांव चला रहा है, जैसे साई के चला रहा हो। मेरे खानदान का चश्मा चराग किसके रोशन है ये?
3: खुद को सुना दी
1: किस कदर रोशन है।
0: मैं नहीं समझता था कि ये नफरत, ये आग, ये आसिफ इस कदर भयानक होगी, अरे इस कदर तबाहकुन साबित होगा। नसरीन, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने ममता का गला घोट दिया। मैंने बदला ले लिया बदला मैंने।
1: नसीन, क्या मिला तुम्हें? क्या मिला? एक मासूम का खून करके नसीन, ये गुनाह करके तुमने खुद को भी इसी कतरे में खड़ा कर दिया। अरे जिसमें अब्बा जान खड़े थे, तुम मेरे अब्बा से कम गुनाहगार नहीं हो। अरे कम गुनाहगार नहीं हो तुम भी गुनाहगार हो।
0: नहीं।
1: अरे तुम कैसी माँ हो, कैसी माँ हो तुम नसीन, कैसी माँ हो? अपने ही बच्चे का गला घोट दिया तुमने, अपने ही बच्चे का गला घोट दिया तुमने। अरे अपना खून पिलाती है, अपना खून पिलाती है। तुमने नसरीन अपने ही बच्चे का खून कर दिया। मार डाला तुमने अपने ही बच्चे को, अपने ही बच्चे को मार डाला तुमने।
0: नहीं नहीं नहीं ये मैंने क्या कर दिया, मुझे क्या हो गया? ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं मेरा मामला नहीं। मैं अपने घर से भाग गया। नहीं, मैंने किसको मार लिया? मैंने किसको मार दिया?

हिस्सा पेशकश सरफराज अहमद की थी। हिस्सा लेने वाले फनकार थे वी एम बडोला, वीना होरा, राजेंद्र वर्मा, ललिता शंकर, कुसुम गोयल, पोर्शिया मुखर्जी, ए एम रजा और कमल साथी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमें आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। पेश खिदमत है फिल्मी नगमे। प्रोग्राम की पहली पेशकश मोहम्मद रफी की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा गीत, जिसे मौसीकी सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म है महबूब की मेहंदी।

ہوتا دل کش جمال دریا کی موجوں سے بدمست چال شیشے کے ساغر سا شیشے

अब सुनिए आशा भोसले और भूपेंद्र की आवाज़ों में एतबार फिल्म का नगमा। मौसिकार हैं सन बपलेरी, नगमा निगार हसन कमाल।

और स्वामी जी, जब सुनिए उदित नारायण, अलका याग्निक और वसुंधरा दास की आवाज़ों में लगान फिल्म में नगमा, नगमानी का जावेद अख्तर, मौसीकार ए आर रहमान।

और सामिन लीजिए, सुनिए आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में दोस्ताना फिल्म का नगमा, जिसे मौसीकी सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

और सामिन लीजिए आप सुनिए आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में दोस्ताना फिल्म का नगमा, जिसे मौसीकी सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मैंने प्यार किया इस फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में। नगमा निगार थे एसएस भोपाली, मौसीकार राम लक्ष्मण। और स्वामी लीजिए अब सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश कुमार सानू की आवाज में 1942 अ लव स्टोरी फिल्म का ये नगमा। नगमा जी निगार जावेद अख्तर, मौसीकार आर डी बर्मन।

आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मोहम्मद रफी राशा भोसले की आवाज़ों में तीसरी मंजिल का फिल्म का नगमा, नगमा निगार मजनू, मौसीकार आर डी बर्मन।

हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान।

अब खबरें तफसील से। कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल आज सरकार ने नई दिल्ली में सभी पार्टियों की मीटिंग तलब की। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस मीटिंग की सदारत की। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू और राज्यसभा में ऐवान के लीडर जगत प्रकाश नड्डा, नीस पार्लियामानी उमूर के उजराए ममलिकत अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर एल मुरुगन भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। इधर मीटिंग शुरू होने के कुछ ही देर बाद अपोजिशन पार्टियों ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की शिरकत के मामले पर मीटिंग से अलामती तौर पर वॉकआउट किया। NCPI एक रजिस्टर्ड पार्टी है जिसने रियासती असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लिया था और हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के कई बागी अरकान पार्लियामेंट इसमें शामिल हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए तृणमूल कांग्रेस की मेंबर पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी DMK, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत पूरी अपोजिशन की पार्टियों ने एहतजाज में मीटिंग से वॉकआउट किया। मोहतरमा महुआ मोइत्रा ने इल्ज़ाम लगाया कि नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया कोई तस्लीम शुदा पार्लिमानी पार्टी नहीं है, अलबत्त अपना एहतजाज जाहिर करने के बाद अपोजिशन के अरकान मीटिंग में शामिल हो गए। इजलास के दौरान कई अहम बिल बहस और मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। पार्लियामेंट का मानसून इजलास कल शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर में आज सुबह सवेरे पुंछ जिले में मूसलाधार बारिश के बाद चट्टानों के टुकड़े गिरने और अचानक सैलाब आने से 3 खवातीन समेत कम से कम 4 अफराद की मौत हो गई जबकि कई लोग लापता बताए गए हैं। आकाशवाणी जम्मू के नामनिगार ने बताया है कि ये सभी अमवात सबसे ज्यादा मुतासिरा सूरनकोट तहसील में हुई हैं। हुकाम ने फंसे हुए लोगों तक पहुंचने के लिए इमदादी कार्रवाई तेज कर दी है। पुंछ के नूनाबादी गांव में एक मकान के गिरने से एक खातून की मौत हो गई। उनके शौहर और 2 साल से लेकर 6 साल तक के 3 बच्चों को बचा लिया गया और इलाज के लिए अस्पताल पहुँचाया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लगातार बारिश और अचानक सैलाब आने के तनाजुर में राजौरी और पुंछ में बचाव और इमदादी कार्रवाई का जायजा लिया। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो पुरसुकून रहें और सरकारी जराये से हासिल होने वाली ताज़ा जानकारी पर अमल करें। इधर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने पुंछ में अचानक सैलाब आने से लोगों की मौत होने पर दुख का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश के बाद राजौरी कस्बे में अचानक सैलाब आ गया। कई निचले इलाकों में पानी भर जाने के तनाजुर में सैकड़ों लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होना पड़ा है। दरियाओं के किनारों में शगाफ पड़ गए हैं और दरियाओं का पानी किनारों से बाहर बहने की वजह से दर्जनों मोटर गाड़ियाँ या तो पानी में बह गई या जेर आब आ गई हैं। सरकारी और प्राइवेट इमलाक को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। ज़िला इंतजामिया और पुलिस की मुआवनत से बचाव और इमदादी टीमों ने मुतासर कुंभों को बचाकर बाहर निकाला है। इन इलाकों में बेला कॉलोनी और अब्दुल्ला ब्रिज के नज़दीक झुग्गी झोंपड़ी की बस्ती शामिल है। 50 से ज़्यादा कुंभों को महफूज मुकामात पर पहुँचाया गया है क्योंकि सैलाब का पानी उनके घर में आ गया था। इधर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला से फोन पर बात की और राजौरी जिले में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। जनाब अमित शाह ने मुतासरा लोगों की सलामती और तहफ़ को यकीनी बनाने के लिए मरकजी सरकार की तरफ से उन्हें हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया। मौसमियात महकमे ने अगले चंद रोज के दौरान खित्ते में दूर दूर तक बारिश होने और गरज चमक के साथ तेज बौछार पड़ने की पेशगोई की है। दूसरी तरफ कटरा की सब डिविजनल इंतजामिया ने बारिश के मौसम के दौरान तेजी के साथ कार्रवाई करने और बेहतर तालमेल के लिए दिन रात काम करने वाला एक कंट्रोल रूम कायम किया है। वहाँ के बाशिंदे कटरा मानसून कंट्रोल रूम से रुजू करके इमरजेंसी सूरत हाल की इत्तला दे सकते हैं या मदद हासिल कर सकते हैं। कंट्रोल रूम का नंबर इस तरह है 01991295681। जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा हिल्स में खराब मौसम के मद्देनजर श्री माता वैष्णो देवी यात्रा अब भी मुअत्तल है। आकाशवाणी जम्मू के नामा निगार ने बताया है कि नामुआफिक मौसम के तनाजुर में अकीदतमंदों की सलामती को यकीनी बनाने की खातिर एहतियाती इकदाम के तौर पर यात्रा आर्जी तौर पर रोक दी गई है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो यात्रा दोबारा शुरू होने के ताल्लुक से सरकारी वसीलों के तवस्सुत से ताज़ा जानकारी हासिल करते रहें। मौसम बेहतर हो जाने और आमदोरफ्त के लिए रास्ता महफूज होने के बाद ही यात्रा दोबारा शुरू होने की उम्मीद है। हुक्काम सूरत हाल पर करीबी नज़र रखे हुए हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 3 मुल्कों मोलदो

0: हुआ शिमाली मकदूनिया और रोमानिया के दौरे पर रवाना हो गई हैं। अपने दौरे के पहले मरहले में सदर जमहूरिया मोल्दोवा पहुंचेंगे, जहां वो अपने हमनसब मियाई संदूक के साथ वफूद की सतह की बातचीत करेंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा की पार्लियामेंट के सदर इगोर गोरोसु से भी मुलाकात करेंगी। वो भारतीय बिरादरी के लोगों से भी मिलेंगी। किसी भारतीय सदर जमहूरिया का मोल्दोवा का ये अव्वलीन दौरा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया पर मरकजी वज़ीर निर्मला सीतारमन का एक मज़मून शेयर किया है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि किस तरह से भारत की रवायती दस्तकारी जिद्दत तराजी और आलमी शराकतदारी के ज़रिए मुआशी तरक्की को फ़रोग दे सकती है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक ज़िला एक मसनूआत पहल मुकामी दस्तकारी की मार्केट तक रसाई को यकीनी बनाने, पायदार रोज़गार के मौके पैदा करने, सकाफती वरसे के तहफ़ और आलमी सतह पर मुल्क की मुसाबिकती सलाहियत को मजबूत बनाने में मददगार साबित हो रही है। आज अजीम इनकलाब पसंद रहनुमा और मुजाहिद आज़ादी मंगल पांडे का योम पैदाइश मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंगल पांडे ने मादर वतन की शान और अजमत को सरबुलंद रखने के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया था। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि मंगल पांडे की दिलेरी और अजीम कुर्बानी आज भी हर भारतीय को फख्र से सरशार कर देती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुब्बुल वतनी के मंगल पांडे के जज्बे और बहादुरी से मुल्क की हर आने वाली नस्लों को तहरीक मिलती रहेगी। कुवैत ने आज कहा है कि मुल्क पर ईरान की जानिब से मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। कुवैत की फ़ौज ने एक बयान में कहा है कि ईरान की जारहियत के बाद मुल्क का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया गया है। भारत की सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी और ओलंपिक में दो बार तमगे जीतने वाली पीवी सिंधु ने जापान ओपन टूर्नामेंट में खवातीन सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है। वो जापान में बड़ा टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। टोक्यो में खेले गए फाइनल में सिंधु ने आलमी नंबर 3 जापान की अकाने यामागुची को 21-17 से हरा दिया। आज रात न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। इसमें मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला यूरोप की मजबूत टीम स्पेन से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल सरकार ने आज सभी पार्टियों की मीटिंग तलब की। अपोजिशन ने मीटिंग में एनसीपीआई को मदऊ किए जाने पर अलामती वॉकआउट किया। जम्मू कश्मीर में कई मुकामात पर चट्टानों के टुकड़े गिरने और अचानक सैलाब आने से कई अफराद की मौत हुई है और इमलाक को नुकसान पहुँचा है। बचाव कार्रवाई जोरों शोर से जारी है। मरकज ने हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू तीन मुल्कों मोल्दोवा शुमाली मकदूनिया और रोमानिया के दौरे पर रवाना हो गई हैं। कुवैत पर ईरान ने कई हमले किए हैं। वहां फिजाई दिफाई निज़ाम को फ़ाल बना दिया गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: मीडियम में वे 1170 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामिन शाम के 5 बजे चाहते हैं यहाँ हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम 909 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर आप सुन रहे हैं कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ के प्रसारण। शाम के 5 बजे हैं युवा साथी सुने कार्यक्रम युवा वाणी करुण वर्मा के साथ।

सभी युवा साथियों का प्रिय कार्यक्रम युववाणी लेकर आप सभी के बीच उपस्थित हैं आपका अपना साथी करण वर्मा। स्वागत है आपका हमारे आज के इस अंक में, जिसका आगाज हम करेंगे सिरोही जिले के पर्यटन स्थलों से आज की बात के साथ, जैसे देलवाड़ा के जैन मंदिर।

श्रोताओं, पूरे विश्व में माउंट आबू के जैन मंदिरों की तीर्थ यात्रा महत्वपूर्ण मानी जाती है। बाहर से साधारण सा दिखने वाला ये मंदिर भीतर पहुंचने पर पर्यटकों को अचंभित कर देता है। ये मंदिर 11वीं से 13वीं सदी में श्वेत संगमरमर से सोलंकी कला में निर्मित है। इस मंदिर पर 14 अक्टूबर सन 2009 में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। कर्नल जेम्सटोड के अनुसार देलवाड़ा के जैन मंदिर ताजमहल के बाद देश की सबसे सुंदर इमारत है। गुरु शिखर, मित्रों, ये अरावली पर्वतमाला और हमारे राज्य राजस्थान का सर्वोच्च शिखर है। ये समुद्र तल से 1722 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गुरु शिखर पर चढ़ने से पहले भगवान दत्तात्रेय का मंदिर दिखाई देता है, जिसके लिए माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने ऋषि आत्रेय और उनकी पत्नी अनसुईया को दत्तात्रेय के रूप में एक पुत्र प्रदान किया था। नक्की झील, दोस्तों, माउंट आबू के मध्य में स्थित नक्की झील हमारे देश भारत की पहली मानव निर्मित झील है। इस झील को देखे बिना माउंट आबू की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। इस झील के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर किया था। इसी झील के पास सन 1948 में महात्मा गांधी की अस्थियों का कुछ अंश भी प्रवाहित किया गया था, जिसके बाद यहाँ गांधी घाट का निर्माण भी किया गया। तो साथियों, चर्चा और भी करेंगे, आइए पहले चलते हैं संगीत की दुनिया में और सुनते हैं फिल्म फूल और कांटे का ये गीत कुमार शानू की आवाज़ में।

श्रोताओं, हम बात कर रहे थे सिरोही जिले के पर्यटन स्थलों की, जैसे भूरिया बाबा का मंदिर। दोस्तों, इसे गौतम ऋषि महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इनका मंदिर सिरोही जिले के चोटीला गांव में स्थित है। भूरिया बाबा मीणा समाज के आराध्य देव भी माने जाते हैं। मीणा लोग भूरिया बाबा के नाम की शपथ लेकर कभी झूठ नहीं बोलते और गलत कार्य नहीं करते हैं। रसिया बालम का मंदिर। मित्रों, इसे कुंवारी कन्या के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में दो पाषाण मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जिसमें एक मूर्ति युवक की है जो हाथ में विष का प्याला लिए है। इसके नज़दीक ही दूसरी मूर्ति युवती की है, माउंट आबू। साथियों, ये राजस्थान का शिमला, राजस्थान का बरखोयांस्क, हिंदू ओलंपस और देव पर्वत जैसे नामों से भी जाना जाता है। ये हमारे राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर बसा नगर है। हमारे राज्य में सर्वप्रथम 1864 में नगर पालिका की स्थापना यहीं पर ही हुई थी। हाथल गांव। दोस्तों, ये गांव राजस्थान में गांधी के नाम से विख्यात श्री गोकुल भाई भट्ट की जन्मस्थली रहा है, जो सिरोही जिले में स्थित है। अचलगढ़ दुर्ग। श्रोताओं, इस दुर्ग का निर्माण 1452 ईस्वी में रणमल के कहने पर राणा कुंभा ने करवाया था। इस दुर्ग के निर्माण का मुख्य उद्देश्य गुजरात की तरफ से होने वाले आक्रमणों को रोकना था। इसमें हनुमान पोल और गणेश पोल दो बाह्य प्रवेश द्वार हैं। इसमें अचलेश्वर महादेव मंदिर, ओखा रानी का महल, मंदाकिनी कुंड, कपूर सागर तालाब, सावन भादो झील स्थित है। किले में ऋषभदेव और पार्श्वनाथ दो जैन मंदिर व कुंभ द्वारा निर्मित कुंभ स्वामी मंदिर भी दर्शनीय स्थल हैं। तो मित्रों, ये थे हमारे राजस्थान के सिरोही जिले के पर्यटन स्थल। युवाणी कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए एक बार फिर चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और सुनते हैं फिल्म कयामत से कयामत तक का ये गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में।

0: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: फसा। अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, आइए अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों की। श्रोताओं, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां नागरिकों को अनेक मौलिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का पालन करना भी उतना ही आवश्यक है। इसी उद्देश्य से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को देश के प्रति उनकी जिम्मेदारियों को बोध कराते हैं। साथियों, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1976 में जोड़ा गया है। ये कर्तव्य संविधान के भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में वर्णित हैं। इनका मुख्य उद्देश्य नागरिकों में देशभक्ति, अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। मित्रों, मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत हमें संविधान का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना व सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना शामिल हैं। इसके अलावा पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना और शिक्षा को बढ़ावा देना भी हमारे कर्तव्यों में आता है। मौलिक कर्तव्यों का पालन करने से समाज में शांति, अनुशासन और विकास की भावना उत्पन्न होती है। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और ये हमें एक आदर्श नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं और देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। इसीलिए प्रत्येक नागरिक को अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन ईमानदारी और निष्ठा के साथ जरूर करना चाहिए। तो साथियों, चर्चा और भी करेंगे, अब समय एक गीत का है। लीजिए अब सुनिए फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस का ये गीत।

दोस्तों, आइए अब बात करते हैं युवा जीवन में संयम के महत्व की। श्रोताओं, आज का युवा देश का भविष्य माना जाता है। युवाओं के विचार, आदतें और जीवन शैली ही आने वाले समाज की दिशा तय करती है। ऐसे में संयम का अर्थ अपनी इच्छाओं, भावनाओं और व्यवहार पर नियंत्रण रखना है। यही गुण व्यक्ति को सही रास्ते पर चलने में मदद करते हैं। साथियों, संयम का सबसे पहला फायदा यही है कि संयमित युवा अपने लक्ष्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। वे संयम का सही उपयोग करते हैं और पढ़ाई, खेल व करियर में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। बिना संयम के व्यक्ति जल्दी भटक जाता है, लेकिन संयम उसे अनुशासित बनाए रखता है। मित्रों, संयम मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। जो युवा अपनी आदतों पर नियंत्रण रखते हैं, वे नशे, गलत संगति और अन्य बुरी आदतों से दूर रहते हैं। इससे उनका शरीर स्वस्थ रहता है और मन भी शांत रहता है। संयम से अच्छे चरित्र का निर्माण भी होता है। संयमित व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है, धैर्य रखता है और कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेता है। ऐसे गुण समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा संयम आर्थिक रूप से भी लाभ देता है। जो युवा अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं, वे अनावश्यक खर्च नहीं करते और भविष्य के लिए बचत करना सीखते हैं। संयम वास्तव में युवाओं के जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार है। ये उन्हें सफल, स्वस्थ और सम्मानित व्यक्ति बनने में भी मदद करता है। इसीलिए हर युवा को अपने जीवन में संयम अपनाने का प्रयास जरूर करना चाहिए। तो मित्रों, बातें

और भी करेंगे। युववाणी कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए अब बढ़ते हैं एक गीत की ओर। लीजिए अब सुनिए फिल्म कभी हाँ कभी ना का ये गीत कुमार शानू की आवाज में।

दोस्तों, राजस्थान प्राचीन सभ्यताओं और सांस्कृतिक विरासत की भूमि रहा है। यहाँ अनेक ऐसे पुरातात्विक स्थल मिले हैं जो मानव सभ्यता के प्रारंभिक विकास को दर्शाते हैं। इनमें आहड़ और गणेश्वर सभ्यता के स्थल विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। श्रोताओं, आइए पहले बात करते हैं आहड़ सभ्यता स्थल की। ये सभ्यता स्थल उदयपुर जिले में आहड़ नामक स्थान पर विकसित हुआ था। इसका काल लगभग 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। उदयपुर के पूर्व में बेड़च नदी के किनारे दो टीले दिखाई देते हैं, जिनको स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं। ये बस्ती पहले ताम्रवती के नाम से भी जानी जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र होने से इसका ये नाम पड़ा होगा। 10वीं या 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर के नाम से भी जाना जाने लगा। साथियों, यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों एवं मिट्टी से बनी हुई है, जिनकी छत बांस और केलू से बनी होती थी। बड़े कमरों के बीच में बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे कमरों में विभाजित किया जाता था। मकानों में 4 से 6 चूल्हे मिले हैं जो संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य हैं। मित्रों, यहाँ से उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। आहड़ से भट्टी नुमा चूल्हा भी मिला है। इसे ये माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहाँ मिले लाल भूरे मृद भांड हाथ की सफाई व अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। धूलकोट में 1951-52 ईस्वी में हुए उत्खनन में तस्तरियाँ, दीपक, धूपदानियाँ, कटोरियाँ, मटके, कलश, चूड़ियाँ, खिलौने, 26 किस्म के मणिये, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरे प्राप्त हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये सभ्यता प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई थी। तो दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता स्थल की बात करने से पहले आइए एक बार फिर चलते हैं रंगमंच की दुनिया में और सुनते हैं फिल्म बंधन का ये गीत।

दोस्तों, आइए अब बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता स्थल की। श्रोताओं, गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है और ये सभ्यता अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र में विकसित हुई है। इसका काल लगभग 3000 ईसा पूर्व माना जाता है। सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में गणेश्वर से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं, जिसे ताम्र संचयी संस्कृति भी कहा जाता है। ये संस्कृति पूर्वी राजस्थान और गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई है। साथियों, इस सभ्यता स्थल से ताम्र उपकरण बहुताई में मिलते हैं। इसका कारण खेतड़ी ताम्र भंडार की निकटता रही होगी। ताम्र उपकरणों में बाण, छेनिया, मछली पकड़ने के कांटे, उस्तरे के फलक और अंगूठियां प्रमुख हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से दोहरी पैचदार शीरा वाली ताम्र पीनों को पश्चिमी व मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। मित्रों, गणेश्वर से मिट्टी के दो प्रकार के बर्तन मिले हैं, जिनमें हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन और दूसरे लाल चिकनी मिट्टी के विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मृतबान, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन और हांडी प्रमुख हैं। दोस्तों, आहड़ और गणेश्वर सभ्यताएं राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और तकनीकी विकास का प्रमाण हैं। इन सभ्यताओं से ये स्पष्ट होता है कि राजस्थान प्राचीन काल से ही समृद्ध और विकसित क्षेत्र रहा है। ये स्थल हमें

हमारे इतिहास को समझने और संरक्षित करने की प्रेरणा भी देते हैं। तो मित्रों, बातें और भी करेंगे, अब समय एक गीत का है। लीजिए अब सुनिए फिल्म अंदाज का ये गीत।

दोस्तों, आइए अब बात करते हैं टुडेज हिस्ट्री यानी आज के इतिहास की। श्रोताओं, आज ही के दिन सन 1969 में हमारे देश भारत के प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 19 जुलाई के दिन ही सन 2003 में रूस के अंतरिक्ष यात्री यूरी माले थांको अंतरिक्ष में शादी रचाने वाले पहले व्यक्ति बने थे। आज ही के दिन सन 2004 में 3 बार टाले जाने के बाद दुनिया के सबसे बड़े दूर संचार उपग्रह को लेकर एरियन 5 फ्रेंच गुयाना के कोरू प्रक्षेपण केंद्र से रवाना हुआ था। मित्रों, 19 जुलाई के दिन ही सन 2005 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित भी किया था। आज ही के दिन सन 1827 में हमारे देश भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे का जन्म भी हुआ था। 19 जुलाई के दिन ही सन 1963 में संविधान सभा की सदस्य एनी मस्कैरेनी का निधन भी हुआ था। तो साथियों, ये था आज का इतिहास। युववाणी कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए एक बार फिर चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और सुनते हैं फिल्म जोश का ये गीत।

दोस्तों, किसी कवि ने कहा है, सबकी अपनी परेशानियां हैं, किसी को घर चलाना है और किसी को घर बनाना है। कोई खुश रहने के लिए परेशान है तो कोई गम में भी मुस्कुराना जानता है। किसी को वक्त नहीं मिलता और किसी का वक्त ही नहीं कटता। और सच ये है कि जिंदगी सबको परख रही है, कोई टूट जाता है और कोई खुद को बना लेता है। तो दोस्तों, युववाणी कार्यक्रम के आखिर में आइए चलते चलते सुनते हैं फिल्म किस्मत कनेक्शन का ये गीत।

दोस्तों, इसी गीत के साथ आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम यहीं तक। अब अपने साथी करण वर्मा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

युवा साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजे हैं, अब सुने कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण में पहले सुने जानकारी हमारे सभा के शेष प्रसारणों के संबंध में। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सराय की। आज आप सुनेंगे इसका 11वां भाग। 7 बजे ग्रामीण परिवार सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम चौपाल सुनील वर्मा के साथ। जानकारी के विषय रहेंगे कृषि में ड्रोन का महत्व, एकीकृत पोषक तत्व, बरसात के पानी का सदुपयोग, बाल विवाह एक अभिशाप। कुछ फिल्मी नगमे आप सुनेंगे 7:45 पर। एक ही फिल्म से में कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8 बजे फिल्म संगीत के अंतर्गत। संसद के समक्ष मुद्दे, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:30 पर, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। आज रात 10 बजे आप सुनेंगे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा, ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

कार्यक्रम विवरण में अब सुने जानकारी हमारे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में। प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी सवेरे 5:50 पर। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुनेंगे सवेरे 6:10 पर। चिंतन होगा 6:45।

मिनट पर सवेरे 7:10 पर कार्यक्रम खेती और वास्ते में किसान भाई सुनेंगे जानकारी, लवणीय सिंचाई जल का उपयोग। गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरित मानस पर आधारित गान पाठ मानस गान आप सुनेंगे प्रातः 7:20 पर। कल आप सुनेंगे इसका 310वां भाग। सुप्रभात। हमारे प्रातिकालीन सभा में ये कार्यक्रम आप सुना करते हैं प्रातः 7:30 पर। कल आप सुनेंगे इसमें जानकारी, मानवीय संवेदनाएं, वार्ताकार होंगी पुष्पा देवी। 9:10 पर राजस्थानी लोक संगीत का आयोजन होगा मरुमंगल, कलाकार होंगे सोहन प्रकाश। प्रातःकालीन सभा में फिल्म संगीत का आगाज होगा प्रातः 9:30 पर। आज के फनकार ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सवेरे 10:00। फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीत बहार आप सुनेंगे दिन में 11:00। 12:05 पर फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आप सुनेंगे सैनिकों के लिए।

सुगम संगीत दिन में 12:30 पर, कार्यक्रम खेत कल्याण 12:50 पर। जानकारी का विषय रहेगा जैविक कार्बन मृदा स्वास्थ्य के लिए आवश्यक। बहनें सुनेंगी महिला जगत कार्यक्रम अंकिता अरोड़ा के साथ दिन में 1:05 पर। जानकारी के विषय रहेंगे पद्मश्री से सम्मानित सविता पुनिया, घर को रसोई से छोटा व्यवसाय, अंगदान का संकल्प किसी के लिए जीवन दान और सेब के फायदे। युवा साथी सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी शाम 5:00। सराइकी का समय हुआ करता है शाम 6:05 का। ग्रामीण परिवार सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम चौपाल शाम 7:00 भारत भूषण के साथ। जानकारी के विषय रहेंगे कीटनाशक छिड़काव करते समय सावधानियां, मुर्गी पालन लाभकारी व्यवसाय, बालिका शिक्षा अति आवश्यक। रात 8:00 आप सुनेंगे संसद समीक्षा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। फिल्म संगीत रात 8:15 पर। रात 10:00 का समय रहेगा कार्यक्रम खेल जगत का, जिसे हम अपने जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। संसद में हुए प्रश्नकाल की अवधि के रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे रात 10:00। ये कार्यक्रम भी हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के कॉर्डन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। अब सुने सराय की।

0: निकल के कंडिया दे पेड़ कोलो गई, उन्हें पत्रे तोड़े, पत्रे तुड़ें दे कंडिया नाल हुंदे हाथ भी जख्मी थी गए, पारो पत्रे तुड़ें दी रही। गुफा विच आके कोट के हुंदा मोम बनाया, एक चूहा ये सारा कुछ देखता पिया ही, उनको बड़ी दिलचस्पी थी, उन्हें अलिंजा दी मदद करनी शुरू कर दीती। वो पत्रे तोड़ तोड़ के अलिंजा को देवन लग गया। शाम को जेड़े वेले हुंदे भीरा गुफा विच आए ते अलिंजा को एक अजीब जहा काम करें दे वे दिठा। वो पूछ देन, भेण तू ये क्या करें दी पई, तू जवाब क्यों नहीं दें दी। वल आपस विच आखन लगे, थी सकदे ही तोनी ऐसा को ना दसें दियो नी जब तक एक काम करें दी पिए। अलिंजा गाल ना करना चाहती है। छोटा भीरा अलिंजा कोल आया, हुने भेण दे हत्था दे छाले डिठे, हुंदे हत्था विच हंजू आ गए। अलिंजा ने हत्था दे डटे हुए हंजुआ नाल हुंदे जड़े छाले हन ओ भी गैप थी गए। अलिंजा दा सपना जड़ा है यकीन तब्दील थी गया। अलिंजा अपने कोट सीवण दा काम करें दी रही, चूहा भी हुंदी मदद करें दा रहा। एक दिन शिकारी को जू थई जंगल विच गुफा दे कोल आ गए। एक नौजवान जड़ा घोड़े उत्ते बैठा ही वो अलिंजा कोल आया ते अपनी तारीफ करें दे। अलिंजा को आ दे, मैं ही इलाके दा ते राजकुमार हाँ, तू इत्था क्या करें दी पई, तू ता इत्था महफूज कोई नहीं, चल मेरे नाल महल विच उत्था चल के रह, तू था महफूज तरह से। अलिंजा कोलो कोई चारा कोई ना ही, क्योंकि हुने बोलना जो ना है। वो घोड़े ते बह गई, राजकुमार ने हुकु महल विच पुचा दिता। अलिंजा महल विच खुश कोई ना ही, अपने भिरावा को याद करे ते रोवे। हुकु देके राजकुमार ने सोचा ओ पत्रे ओ गोंद जरा को जो बने दी पिए हुंदे अगू आन के रख्या, शायद हिंदे नाले खुश रावे। अलिंजा दे अगू पत्रे आंदे ही ओ खुश थी गई। अलिंजा हुण खुशी नाल समावे ना हुने कोट बनावन शुरू कर दिते। 6 कोट बन गए। 7वें कोट वास्ते पत्रां दी कमी थी गई। महल विच भी कंडियां दा दरख्त ही, हुने सोचा के महल तो बाहर वञण दी बजाए महल दे बाग विचो ही पत्रे तोड़ घिनसा। जिवें रात को अलिंजा बाग विच पत्रे तोड़न गई ते पहरादारा ने अलिंजा को घेर गिता। पूछण लगे, एक तू क्या करें दी पई, तू केड़े मकसद दे पत्रे तोड़ें दी पई, तू क्या कोई जादूगर नहीं है, क्या कोई माया करें दी पई, ए पत्रे ते जादू वास्ते इस्तेमाल थींदन, यकीनन तू जादूगर नहीं है। राजकुमार को ते विश्वास ना आवे। दूजे दिवार अदालत विच पेश किया गया। 4 काजियां ने अलिंजा को कसूरवार साबित करके फांसी का हुक्म दिता ते कोठड़ी विच बंद कर दिता। अलिंजा सोचे ये हुंदी आखरी रात है, इतने विच एक पहरेदार ने सारे कोट मोम कढ के उंदे अगू रख दिते। हिंदे नाल ही को खुशी मिले, हुण आखरी कोट वास्ते कुछ पत्रे भी लोड़ है। अलिंजा ने डिठा चूहा हुंदी उ ही मदद करें दा पै, वो अपना पत्रे चाह चाह के भज भज के अलिंजा को देवन वास्ते आंदा पै। हुने आखरी कोट भी पूरा कर दिता। सवेरे अलिंजा को एक घोड़ा गड्डी विच बिला के फांसी जिथा देवनी आई उथे ही घेन वास्ते आ गई। हजारा लोगां दी भीड़ कट्ठी थी गई। ही दरमियान आसमान तो कुछ आवाजा भी आवन लग गया। ओ 7 हंस हन, उन्हां ने घोड़ी गाड़ी को गेर गिदा। अलिंजा ने डिठा इत मेरे भिरा हैं, वो अपना आखरी कोट भी पूरा करें दी रही। हुने डिठा मेरे भिरावा ने गड्डी को घेर गिदे, हुने एक एक कोट करके अपने भिरावा ते पावन शुरू करते। कोट पेंदे ही 7 हंस सोने शहजादे विच तब्दील थी गए। ए देख के सारे हैरान थी गए। 7 शहजादिया ने अलिंजा सारी भेणे अलिंजा ने भी अलेंदे वे आख्या कि मैं हाली तक चुप क्यों हम, ए कोई जादूगर नहीं कोई ना हम मैं, बल्कि अपने बिरावा को आजाद करन वास्ते ए सब करें दी पई हम। अलिंजा ने कहानी राजकुमार को भी दसी। राजकुमार ए गाल सुन के बहुत शर्मिंदा थिया। उन्हें अपने प्यार दा वास्ता देंदे वे अलिंजा दा हाथ शादी वास्ते मंगदा। किले विच सारे शादी दी खबर सुन के बहुत खुश हन। आलीशान शादी विच 7 बिरा शामिल हन। बादशाह यानी अलिंजा दा जड़ा प्यू है बादशाह, उनको मलिका दी सारी असलियत दा पता लग गया। उन्हें मलिका दे जादू ने बाला ते कब्जा कर रख्या है। वो डाढ़ा पछताया, उनको उम्र भर कैद दी सजा थी गई। इतने बादशाह जादूगरनी तो आजाद थी के अपने सारे बाला नाल अपने महल विच खुशी खुशी रावण लग गया।
1: 7 शहजादे, हुणे तुसां उषा रानी दी ए कहानी सुनदे पए हवे। भैनो भरावो, तुहाकू ए कहानी किंज दी लगी, साको खत लिख के भेजना। ते हुण सरायकियां दा तो सुभा ए नचण गावण दा ते चस घिनो गीतां दी। मैं तपदियां गलियां विच फिरदा, दीदार तेरा दरकार वे तू।

सराय की। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:30 हुए हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र कल से। सरकार द्वारा आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सभी दलों से सदन के सुचारू संचालन के लिए सहयोग मांगा गया। नीति आयोग की ओर से जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक में राजस्थान को अग्रणी राज्य की श्रेणी में स्थान मिला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने हाई रिस्क वाली गर्भवती महिलाओं की लगातार मॉनिटरिंग करने और अस्पतालों को जरूरी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए। और प्रदेश में मॉनसून के एक बार फिर से गति पकड़ने की संभावना, आज 15 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। संसद के कल से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले आज सरकार ने संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से आग्रह किया कि वे मॉनसून सत्र की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद सभी की है और इस दौरान सरकार विभिन्न विधायक कार्य करेगी और विधेयक प्रस्तुत करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य रचनात्मक रूप से इसमें भाग लेंगे। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद जितनी कुशलता से काम करेगी, देश के लिए उतना ही अच्छा होगा।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: संसद के मॉनसून सत्र में कई महत्वपूर्ण विधायी मामलों पर चर्चा किए जाने और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। आज की

0: सर्वदलीय बैठक के माध्यम से सरकार को उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दल संसद की कार्यवाही सुचारू चलाने के लिए सहयोग करेंगे। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण का एक लेख साझा किया। ये लेख इस बात को दर्शाता है कि कैसे नवाचार और वैश्विक साझेदारी के जरिए परंपरागत भारतीय शिल्पकला आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक जिला एक उत्पाद पहल स्थानीय शिल्पकला को बाजार पहुंच प्राप्त करने, सतत आजीविका सृजित करने और देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को सशक्त बनाने और विरासत को संरक्षित करने में सहायता दे रही है। राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे निवेश प्रोत्साहन के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। नीति आयोग की ओर से जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक में राजस्थान को अग्रणी राज्य की श्रेणी में स्थान मिला है। और ब्यौरा समाचार कक्ष से।
1: राजस्थान निवेश अनुकूलता सूचकांक में समग्र रैंकिंग में देश भर में 10वें तथा बड़े राज्यों में 8वें स्थान पर रहा है। वहीं बड़े राज्यों की श्रेणी में नियमों के सरलीकरण में प्रदेश ने दूसरा स्थान और निवेश प्रोत्साहन नीतियों में तीसरा तथा संसाधनों के क्षेत्र में 5वां स्थान हासिल किया है। यह राज्य में निवेश को बढ़ावा देने, उद्योगों के लिए बेहतर माहौल तैयार करने और कारोबार को आसान बनाने की दिशा में किए गए सुधारों का नतीजा है। इन्हीं सुधारों के तहत सरकार ने निवेश को पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज निवेश पोर्टल को लगातार मजबूत किया है। वर्तमान में इस पोर्टल पर 18 विभागों की 190 सेवाएं उपलब्ध है। प्रदेश में नए बिजली कनेक्शन की औसत स्वीकृति अवधि पिछले वित्तीय वर्ष के 20 दिनों से घटकर 10 दिन हो गई है। इसी प्रकार पर्यटन परियोजनाओं की स्वीकृति अवधि 22 दिनों से घटकर 16 दिन हो गई है। पिछले ढाई वर्षों में 30 से अधिक नई नीतियां लागू की गई है। इनमें MSME, निर्यात प्रोत्साहन, टेक्सटाइल और अपेरल, लॉजिस्टिक्स, स्वच्छ ऊर्जा, डेटा सेंटर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस तथा डिफेंस जैसे सेक्टर्स आधारित नीतियां शामिल है। राज्य की इन्हीं नीतियों के कारण राजस्थान में निवेशकों का विश्वास लगातार मजबूत हो रहा है। समाचार कक्ष से जितेंद्र प्रधान।
0: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने स्वास्थ्य अधिकारियों को उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की सूची तैयार करने और इनकी नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आवश्यकता होने पर इन्हें रेफरल सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। मुख्य सचिव आज जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश की मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों के अधीक्षकों और स्त्री रोग विभाग अध्यक्ष से पिछले 24 घंटों में हुए सामान्य और सिजेरियन प्रसव और उनकी वर्तमान हालत के बारे में जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने प्रसव के बाद अगले 24 घंटे धात्री महिला की गहन निगरानी रखने और उसके पोषण का समुचित ध्यान रखने को कहा। मुख्य सचिव ने सभी अस्पतालों को आवश्यक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए। बैठक में चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। डूंगरपुर में ग्रामीण विकास मंत्रालय के अतिरिक्त महानिदेशक महेंद्र कुमार उज्जैनिया के नेतृत्व में केंद्रीय दल ने आज विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में जिला कलेक्टर देशल दान सहित केंद्र और राज्य स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान जिले में चल रही विभिन्न गतिविधियों और प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी संचालन, पारदर्शी क्रियान्वयन और अधिकाधिक लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बालोतरा में निर्माण श्रमिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए श्रम विभाग की ओर से कल से 3 दिवसीय विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इनमें श्रमिकों के निरस्त पंजीयन और कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित लंबित आवेदनों का निस्तारण किया जाएगा। ये शिविर विभाग के स्थानीय कार्यालय में आयोजित होंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार के फिर गति पकड़ने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम केंद्र जयपुर ने आज प्रदेश के 15 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट

0: जारी किया है। पूर्वानुमान के अनुसार पहले पूर्वी राजस्थान और उसके बाद राज्य के पश्चिमी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। कल से कोटा, भरतपुर, जयपुर और अजमेर संभाग के कुछ क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस बीच प्रदेश में कहीं कहीं बरसात हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 32 मिलीमीटर बारिश दौसा जिले के बसवा में दर्ज की गई। इसके अलावा अलवर, धौलपुर, बूंदी और कोटा के कुछ इलाकों में भी हल्की बरसात हुई। आज दोपहर बाद कोटपुतली बहरोड में कुछ स्थान पर बारिश हुई। इससे आमजन को तेज गर्मी और उमस से थोड़ी राहत मिली। राजधानी जयपुर में दोपहर बाद से बादल छाए हुए हैं। विभाग के अनुसार प्रदेश में इस मानसून सीजन के दौरान अब तक सामान्य से करीब 25% कम वर्षा हुई है। करौली जिला आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर जिले भर में साइकिल रैली, स्वच्छता अभियान, पौधरोपण और विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने करौली स्थापना दिवस पर जिलेवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि ये जिला आस्था, इतिहास और प्राकृतिक वैभव की अनुपम धरोहर है। उन्होंने कहा कि करौली निरंतर विकास, समृद्धि और खुशहाली के नए आयाम स्थापित करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मंगल पांडे का शौर्य और सर्वोच्च बलिदान आज भी हर भारतीय को गौरवान्वित कर रहा है। उन्होंने कहा कि मंगल पांडे की देशभक्ति और वीरता की गाथा देश की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायक मंगल पांडे को श्रद्धापूर्वक याद करते हुए सोशल मीडिया संदेश में कहा कि मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए उनका समर्पण और राष्ट्र प्रेम हम सभी को हमेशा देश सेवा और राष्ट्रहित के लिए प्रेरित करता रहेगा। फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला आज अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में रात 12:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल मियामी स्टेडियम में तीसरे स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से मात देकर कांस्य पदक जीता। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने पर पीवी सिंधु को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. मांडविया ने कहा कि जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनकर सिंधु ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी इस उपलब्धि पर पूरा देश गौरवान्वित है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली ओएमआर ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जाँच के लिए सिर्फ असली ओएमआर शीट ही जमा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 24 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र कल से। सरकार द्वारा आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सभी दलों से सदन के सुचारू संचालन के लिए सहयोग मांगा गया। नीति आयोग की ओर से जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक में राजस्थान को अग्रणी राज्य की श्रेणी में स्थान मिला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने हाई रिस्क वाली गर्भवती महिलाओं की लगातार मॉनिटरिंग करने और अस्पतालों को जरूरी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए। और प्रदेश में मॉनसून के एक बार फिर से गति पकड़ने की संभावना, आज 15 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से सवाई माधोपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख सतीश वर्मा ने तैयार किया है। केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है। करीब 34 करोड़

0: 48 लाख रुपए की लागत से इस रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन से वर्चुअल माध्यम से किया। गंगापुर सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर हुए कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री गौतम कुमार दक, टोंक सवाई माधोपुर सांसद हरीश मीणा, गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा, रेलवे के अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और आमजन शामिल हुए। समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान स्कूली विद्यार्थियों की निबंध प्रतियोगिता सेल्फी विथ रेलवे स्टेशन के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया। पिछले दिनों लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान श्री बिरला ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में नवनिर्मित अभियोजन भवन का लोकार्पण किया और राजस्थान अभियोजन अधिकारी एसोसिएशन की नवनिर्वाचित प्रदेश कार्यकारिणी को शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर श्री बिरला ने अभियोजन प्रकरण प्रबंधन प्रणाली का भी शुभारंभ किया। इस दौरान कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम भी मौजूद रहे। जिले में बीते दिनों ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व संबंधी नामांतरण, भूमि रूपांतरण और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लोगों को लाभ मिला। वहीं नगर परिषद परिसर में आयोजित शहरी सेवा शिविर में लोग भूमि रूपांतरण, आवासीय और व्यावसायिक पट्टे, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का फायदा लेते नजर आए। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से पिछले दिनों विकसित भारत ग्राम योजना के शुभारंभ के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम ग्राम खिजूरी में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में चारागाह भूमि पर पीपल पूजन और पौधरोपण किया गया। इस दौरान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय शुभारंभ कार्यक्रम का आंध्र प्रदेश के तिरुपति से और ब्यावर के मसूदा से राज्य स्तरीय कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी देखा गया। पिछले दिनों सवाईमाधोपुर करौली जिला दुग्ध उत्पादक संघ और HPCL के बीच एक समझौता हुआ है। इसके तहत HPCL के पेट्रोल पंप पर सरस डेयरी के उत्पाद उपलब्ध करवाए जाएंगे। डेयरी के MD सुरेश कुमार सेन ने बताया कि सवाई माधोपुर और करौली जिले में HPCL के 75 पेट्रोल पंप हैं, जहां 25 पेट्रोल पंप पर सरस डेयरी के विभिन्न उत्पाद के आउटलेट, कियोस्क और बूथ लगाए जाएंगे। करौली जिले के पांचना बांध से कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर पिछले महीने राज्य सरकार से दिशा निर्देशों के बाद परीक्षण कर कमांड एरिया की नहरों में पानी छोड़ा गया। जिले के कुसाय और खंडीप तक नहरों में भरपूर पानी आने के बाद क्षेत्र के किसानों में खुशी की लहर देखी गई। हर साल की तरह इस बार भी मॉनसून के चलते रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटन का काम 1 जुलाई से आगामी 3 महीने के लिए बंद हो गया है। इसके पहले जून महीने के अंतिम सप्ताह में भारी संख्या में पर्यटकों ने राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण किया। मॉनसून के दौरान रणथंभौर बाघ परियोजना क्षेत्र में अवैध गतिविधियों को रोकने और वन्य जीव संरक्षण को लेकर वन विभाग की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वन क्षेत्र में वन्य जीवों की निगरानी और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया है। बाघ परियोजना क्षेत्र में इन दिनों फोटो ट्रैप कैमरा पद्धति से बाघ और अन्य वन्य जीवों की गणना का काम किया जा रहा है। वन्य जीवों की गणना और सुरक्षा के मद्देनजर परियोजना क्षेत्र में 300 पॉइंट निर्धारित कर 600 ट्रैप कैमरा लगाए गए हैं। जिले में मॉनसून की बेरुखी के चलते तापमान में बढ़ोतरी होने से गर्मी और उमस का वातावरण बना हुआ है। बरसात नहीं होने से दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। दिन में तेज गर्मी के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं खरीफ की फसलों को लेकर किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें देखी जा रही हैं। इसी के साथ सवाईमाधोपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेरू पेश है प्रादेशिक समाचार। पहली आजरी खास खास खबरां। संसद रो मानसून सत्र कालसू, सरकार कानियो आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक माए सगड़ा दलाओं सदन ने सुचारू रूप चलाबारी अरज करी गई। नीति आयोग ने कानियों जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक माए

0: राजस्थान ने अग्रणी राज्य ऋक्षणी माए थौड़ मिली। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास हाई रिस्क वाली गर्भवती महिलावारी लगातार मॉनिटरिंग करबा और सफाखाना ने जरूरी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल री पालना करबा ने कया। और प्रदेश में मानसून एक बार फिरू रफ्तार पकड़ सके है। आज 15 जिला में आंधी और बारिश रो अलर्ट। समाचार रे सागे मैं रचना पारिक और अब समाचार विगतवार। संसद रा कालसू सरुवेरिया मानसून सत्रों पहली आज सरकार संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक री अगुवाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करी। बैठक रे पछे मीडियाओं बातचीत रे दौरान केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू विपक्षों अरज करी के वे मानसून सत्र री कार्यवाही ने सुचारू रूपों चलावा माए इमदाद करे। श्री रिजिजू कया के संसद सगड़ारी है और इन दौरान सरकार न्यारा न्यारा विधेयक करेला और विधेयक पेश करेला। वना आज जताई के विपक्ष और सत्ता पक्ष सदस्य रचनात्मक रूपों इन माए भाग लेवे। श्री रिजिजू कया के संसद जित्ती चोखी तरीकाओं काम करेला देश का तर उत्तो ही चोखो रेवेला।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे
0: सुने। संसद रा मानसून सत्र माए कई महताऊ विधायी मामला माथे चर्चा करिया जाबा और वाने पारित करिया जाबारो अंदाजो है। आज री सर्वदलीय बैठक रे मार्फत सरकार ने आस है के सगला राजनीतिक दल संसद री कार्यवाही सुचारू रूपों चलाबा माए इमदाद करेला। ओ सत्र 13 अगस्त ताई चालेला। राज्य सरकारी कानियों करिया जा रिया निवेश प्रोत्साहन री कोशिशा ने राष्ट्रीय स्तर माथे सराहना मिली है। नीति आयोग री कानियों जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक माए राजस्थान ने अग्रणी राज्य ऋक्षणी माए थौड़ मिली है। बत्ती जानकारी समाचार कक्ष सु।
2: राजस्थान निवेश अनुकूलता सूचकांक में समग्र रैंकिंग में देश भर में 10वें तथा बड़े राज्यों में 8वें स्थान पर रहा है। वहीं बड़े राज्यों की श्रेणी में नियमों के सरलीकरण में प्रदेश ने दूसरा स्थान और निवेश प्रोत्साहन नीतियों में तीसरा तथा संसाधनों के क्षेत्र में पांचवा स्थान हासिल किया है। यह राज्य में निवेश को बढ़ावा देने, उद्योगों के लिए बेहतर माहौल तैयार करने और कारोबार को आसान बनाने की दिशा में किए गए सुधारों का नतीजा है। इन्हीं सुधारों के तहत सरकार ने निवेश को पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज निवेश पोर्टल को लगातार मजबूत किया है। वर्तमान में इस पोर्टल पर 18 विभागों की 190 सेवाएं उपलब्ध है। प्रदेश में नए बिजली कनेक्शन की औसत स्वीकृति अवधि पिछले वित्तीय वर्ष के 20 दिनों से घटकर 10 दिन हो गई है। इसी प्रकार पर्यटन परियोजनाओं की स्वीकृति अवधि 22 दिनों से घटकर 16 दिन हो गई है। पिछले ढाई वर्षों में 30 से अधिक नई नीतियां लागू की गई है। इनमें MSME, निर्यात प्रोत्साहन, टेक्सटाइल और अपेरल, लॉजिस्टिक्स, स्वच्छ ऊर्जा, डेटा सेंटर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस तथा डिफेंस जैसे सेक्टर्स आधारित नीतियां शामिल है। राज्य की इन्हीं नीतियों के कारण राजस्थान में निवेशकों का विश्वास लगातार मजबूत हो रहा है। समाचार कक्ष से जितेंद्र प्रधान।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे ने वारी जयंती माथे श्रद्धांजलि दीनी। प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पोस्ट माए कया के मंगल पांडे रो शौर्य और सर्वोच्च बलिदान आज भी हर भारतीय खातर गर्व री बात है। वे कया के मंगल पांडे री देशभक्ति और वीरता री गाथा देश री पीढ़िया ने प्रेरित करती रहवेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम रा नायक मंगल पांडे ने सिरदाऊ याद करता थका सोशल मीडिया पोस्ट में कया के मातृभूमि री स्वतंत्रता खातर मारो समर्पण और राष्ट्र प्रेम सगला माए हमेशा देश सेवा और राष्ट्र हित खातर जाग जगावेला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास स्वास्थ्य अहलकारा ने हर एक उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलावारी सूची तैयार करबा और आरी रोजाना मॉनिटरिंग करबारा निर्देश दिया है। वणा जरूरत पड़बा माथे रेफरल सुविधावा मुहैया कराबा ने कया।

मुख्य सचिव आज जयपुर सु वीडियो कॉन्फ्रेंस रे मार्फत प्रदेश री मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवा वारी समीक्षा बैठक ने संबोधित करिया हा वणा राज्य रा सगला मेडिकल कॉलेज रा अधीक्षक और स्त्री रोग विभाग अध्यक्ष सु लारला 24 घंटा मायविया सामान्य अर्सिजेरियन जापा और वारी हाल रा स्वास्थ्य रा बारा माय जानकारी लेर जरूरी दिशा निर्देश दिया वणा प्रसव रे पछे आवता 24 घंटा धात्री महिला ने गहन निगरानी माय राखबा और वारा पोषण रो पूरो ध्यान राखबा ने कया मुख्य सचिव सगला सफाखाना ने जरूरी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल री पालना करबा ने कया है बैठक माय चिकित्सा महकमारी प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ और दूजा ठावा अधिकारी मौजूद रिया डूंगरपुर माय ग्रामीण विकास मंत्रालय रा अतिरिक्त महानिदेशक महेंद्र कुमार उज्जैनियारी अगुवाई माय केंद्रीय दल आज विकसित भारत जी रामजी अधिनियम रा प्रभावी क्रियान्वयन खातर समीक्षा बैठक करी बैठक में जिला कलेक्टर देशल दान समेत केंद्र और राज्य स्तरीय अहलकार भाग लेना इन दौरान जिला माय चल रही न्यारी न्यारी गतिविधियां और प्रगति माथे बत्ती चर्चा करी गई एहलकारा ने योजनावारा प्रभावी संचालन पारदर्शी क्रियान्वयन और बत्तों बत्ता लोगा ताई फायदो पुगा वाखातर जरूरी निर्देश दिया गया बालोतरा माय निर्माण मजूरारी समस्या वारो तुरंत हल कार्ड बाखातर शह महकमारी कानी उकालसू तीन दिन रो विशेष शिविर राख्यो जावेला इन माय मजूरारा निरस्त पंजीयन और कल्याणकारी योजना वासू जुड़िया लंबित आवेदनारो निस्तारण करियो जावेला ओ शिविर महकमारा थानीय कार्यालय माय राख्या जावेला ये समाचार आप आकाशवाणी राज जयपुर अजमेर केंद्रों सुन रिया हो प्रदेश माय मानसून रे फेरू रफ्तार पकड़ बारा संकेत मिल रिया है मौसम केंद्र जयपुर आज प्रदेश माय 15 जिला माय आंधी और बारिश रो येलो अलर्ट जारी करियो है अंदाजा रे मुजब पहली पूर्वी राजस्थान और उनरे पछे राज्य रा पश्चिमी हल्का माय बारिश आवक वह सके है कालों कोटा भरतपुर जयपुर और अजमेर संभागरा कुछ एक हल्का माय बारिश वह सके है इन बीच प्रदेश माय कटे कटे मेह बरसियो लाड़ला 24 घंटा रे दौरान सबूबत्तो 32 मिलीमीटर में दौसा जिला रा बसवा माय दर्ज करियो गयो इन रे इतर अलवर धौलपुर बूंदी और कोटारा कुछ एक हल्का माय छितरायो में बरसियो आज दोपहर पछे कोटपुतली बहरोड़ माय कुछ एक थोड़ा माते में बरसियो इनसो आम जन ने तेज गर्मी सो थोड़ी राहत मिली राजधानी जयपुर माय दोपहर पछे बादल छायोड़ा है विभाग रे मुजब प्रदेश माय इन मानसून सीजन रे दौरान हाल तई सामान्य करीब 25% कम बिरखा भी है करौली जिलो आज आपरोथा अपना दिवस मना रियो है इन मौके जिला भर माय साइकिल रैली स्वच्छता अभियान पौधारोपण और न्यारी न्यारी होना राखी गई मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा करौली रा थापना दिवस माथे जिला वासियां ने शुभकामनावां दी सोशल मीडिया संदेश माय वे कया का ओ जिलो आस्था इतिहास और प्राकृतिक वैभव री अनुपम धरोहर है वणा कया के करौली लगातार विकास समृद्धि और खुशहाली रा नया आयाम स्थापित करिया है फीफा विश्व कप 2026 रो फाइनल मुकाबलो आज अर्जेंटीना और स्पेन रे बीच खेलो जावेला भारतीय टीम रे मुजब ओ मैच न्यूयॉर्क रा न्यूजर्सी स्टेडियम माय रात के 12:30 बजे सु शुरू वेला इनसु पहली काल मियामी स्टेडियम माय तीजी ठोड़ खातर खेलिया गया मुकाबला माय इंग्लैंड फ्रांस ने 6-4 सु मात देर कांसारो तमगो जीत लियो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट रो खिताब जीत बा माथे पीवी संधु ने बधाई दी सोशल मीडिया पोस्ट माय डॉक्टर मांडविया कया के जापान ओपन रो खिताब जीत पावाली पहली भारतीय बनर सिंधु इतिहास रच दीनो वे कया के वारी इन उपलब्धि माथे पूरा देश ने गर्व है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए पढ़निया और मारा माता पिता ने ऑप्टिकल अंक प्रमाण पत्र ओएमआर शीट री जांच खातर केवल असली ओएमआर ही जमा कराबारी राय दी है फर्जी या एआई सु बनाई गई ओएमआर शीट देबामा थे कानूनी कार्यवाही वह सके है इन खातर पढ़निया और मारा अभिभावक सु अर्ज करी गई है कि वे जांच खातर केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई दीतवार ने आकाशवाणी प्रसारित करया जावण वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए विचार बतावेला आ हर महीना प्रसारित करया जावण वाला ई कार्यक्रम री 136वीं कड़ी वेला इसारो आप ही सुझाव 24 जुलाई ताई मुफ्त नंबर 1800117800 माथे भेज सको हो नरेंद्र मोदी ऐप या माय जीओवी ओपन फोरम रे जरी विचार भेजा जा सके है और अबे आखिर माय खास खबरां एकर फेरूं संसद रो मानसून सत्र काल सु सरकार कानियो आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक माए सगला दलाओ सदन सुचारू रूप चलाबारी अरज करी गई नीति आयोग री कानियो जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक माए राजस्थान ने अग्रणी राज्य री श्रेणी माए थोड़ मिली मुख्य सचिव वी श्रीनिवास हाई रिस्क वाली गर्भवती महिला वारी लगातार मॉनिटरिंग करबा और सभाखाना ने जरूर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल री पालना करबा ने कया और प्रदेश माए मानसून एक बार फेरू रफ्तार पकड़ सके है आज 15 जिला माए आंधी और बारिश रो अलर्ट इस आगे ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो वियो मां को आगलो समाचार बुलेटिन काल सुमारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला नमस्कार
1: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं

मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं, ग्रामीण परिवार सुने दैनिक कार्यक्रम चौपाल।

चौपाल कार्यक्रम सुनिए सगला किसान परिवारा ने सज्जन भाई की घनी घनी और मोकली मोकली राम राम। किसान भाइयों, जद शू किसान भाइयां हरी क्रांति अपनाई है, हरी क्रांतियों बाद में देखो आपने खेती की बात करा तो आप केस कहाँ कि निश्चित रूप से ही आपने जिका अनाज है या और फसल हैं तो बा में आपनों जिको देश है भारत वो आत्मनिर्भर हो गए। और लेरले कई सालों की बात करा किसान भाइयों तो नई नई तकनीक जिकी है आई है और किसान भाइयां बने अपनायो भी है जिस कि खेती का माँ बहुत ही बदलाव देखना अपन मिलियो है। और इन काम के माँ देखो अपना किसान भैया और बांगे सागे सागे अपना खेती का जिका डाक दर्जी है जिका वैज्ञानिक है या जिका जानी जान आदमी है बांगी बहुत ही अच्छी भूमिका इन माँ रही है। और लेला साला में आप देखा कि अपना जिका खेती का जिका वैज्ञानिक है वांग भांत भांत की जिकी खोज कर गए और भांत भांत की जिकी तकनीक है वह किसानों तक पूर्ति करी है। और हाँ तकनीक की बात करें तो किसान भाइयों देखो बहुत ही बड़ाई वाली बात है क्योंकि यहाँ तकनीकों से देखो किसान भाइयों ने अच्छी अच्छी किस्म का जिका उन्नत बीज है वे अपन ने मिलया और माटी की जिकी जांच है देखो सारों अच्छो काम जो है माटी की जांच वालों तीस क्योंकि अपने खेत में खाद उर्वरक है बंगो अपन ने मात्रा अपन ने किसे देनी है या किसा खाद उर्वरक देना है इंगे अपन जानकारी हो जाए इंगे सागे सागे कोई रसायन है बंगो अपन ने क्या प्रयोग करना है क्या काम में लेना है। और इंगे सागे सागे किसान भाई आप और भी बात करा तो जी मान लो कृषि का यंत्र है चाहे वह बिजाई वाली मशीन है या फिर हल है या और कई भांत का जिका कृषि यंत्र है तो वहाँ भी आपने खूब फायदो हुए है। पर आज आप किसान भाइयों यंत्रों की बात के सागे सागे आप बात करा ड्रोन की। देखो ड्रोन तो अंग्रेजी को एक शब्द है पर ड्रोन आप देखो जिका गमा की एक आप केस कहाँ की एक छोटो जिको हवा में उड्डन वालों एक यंत्र है जिका गमा आदमी कौन बैठे अपन वो आपे आप उड्डे।

तो बिना आपा कंप्यूटर छूँ आपा तलाश कहाँ, बिया भी आपा बिना उड़ास कहाँ। बी छूँ किया कि बिना प्रयोग छूँ खेती का माँ देखो बहुत सारा काम जिका किसान भाइयों आसान हो गया है। और इंगो जिको उपयोग है नी, इंगा जिका जागरूक किसान भाई अपन तो शुरू कर दिया, अपन बाकी का जिका किसान भाई है नी वे भी धीरे धीरे इन्हें अपनान लाग रहा है। जी छूँ किया कि बंगे काम धंधा का माँ देखो टाइम की बचत हो है, अपने मेहनत की भी बचत हो है। अरे इंगा सागे सागे किसान भाइयों पानी और जिकी लागत अपने आवे नी इंगी भी खूब बचत हो है, और फसल की जिकी पैदावार है अपने बिंग में भी खूब वृद्धि हुए। इस चूँ देखो किसान भाइयों सारों अच्छो जिको फायदो है और मोटो फायदो भी आपा केस का कि एक तो आपा जिका छिड़काव करा रसायन जिकी कोई स्प्रे है या कोई अपने कीट है रोग है वांगो प्रकोप है जब अपन स्प्रे खेत में करनी पड़े तो बिंग खातर के है कि जिका भी आपा रसायना को जिको छिड़काव करा तो इंग में बहुत ही फायदो हुए। इंगो एक सारों मोटो फायदो तो है कि इंगो जिको छिड़काव है एकदम सगड़े बूटा के ऊपर एक सार और मात्रा भी एकदम सगड़ा बूटा पर एक सिरे हुए, तो यूँ क्या बहुत मोटो फायदा है। देखो आप बिया आप करा तो बीमा क्या आप कई बार एक पासू बूंटो रह जाए या कई बार मात्रा कम ज़्यादा हो जाए, तो अब मान लो आप 5 बीघा में स्प्रे करा तो 2 बीघा मात्रा अगर कम ज़्यादा भी हो जाए तो पर ड्रोन क्या ड्रोन सारी एकदम एक सी हुआ है। और दूसरों क्या किसान भाइयों में पानी की बहुत बचत हुआ है, जिका जानकार आदमी है नहीं वह बतावे है कि जठे अपने 150-200 लीटर पानी लागे नहीं बीज जगह जे आप ड्रोन काम में लेवा तो इन मान लग बहुत ही कम पानी लागे, अड़ता ही बतावे है कि 80 पीसा पानी की बचत हो जाए। देखो किसान भाइयों कितनी पानी की बचत है, क्योंकि देखो किसान भाइयों तो अच्छी तरह ठा है कि पानी जिको है बिंगी कितनी कमी है और पानी बिना आप खेती किसान भाइयों क्या कर सका, तो देखो पानी की भी इंगमा बचत हो है। और इसू अच्छा जो फायदा है वो है कि टेम की बचत हो है। ड्रोन छू एक एंकड़ में जे आपा ने मान लो आप कह दें कि 1 बीघा में या 1.5 बीघा में आपा ने स्प्रे करनी होवे तो बतावे है कि 5-10 मिनट में ही स्प्रे कर दे, तो देखो टाइम की भी बहुत बचत हो है। इंगे सागे सागे आपने फसल की निगरानी है या फिर बिंग कोई आपा ने जांच करनी हो कोई कीट है रोग है तो बिंग में भी क्या ड्रोन छू आप बहुत ही अच्छी तरह आप कर सकें, और खेत में आप एक जगह बैठे बैठे ड्रोन छू चाहे एक एक बूंटे की भी अपन जानकारी लेनी होवे नहीं तो वह भी आप ड्रोन भेज गए और एक जगह बैठे बैठे आप जानकारी ले सकें, और जानकारी भी एकदम अच्छी तरह देवे पूरी सही जानकारी देवे कि के भांत को कीट है और बिंगो आपा ने रोकथाम आप किया कर सकें ऐ जानकारियां भी देवे। इस अलावा बुआई गमा बीज जिको लगान गो बीज की ढूंगाई कितनी हो है कितनी गहराई हो है और सागे सागे जिको माटी की परख है वह भी ड्रोन छू आप कर सकें। हाँ तो देखो किसान भाइयों बहुत सारा फायदा है और इसमें आप फसल के नुकसान भी आप बच सका हाँ और सागे सागे फसल की सुरक्षा भी आप कर सका हाँ, और सागे सागे पैदावार की बात करें तो पैदावार में भी खूब वृद्धि होवे। और इंगमा जिका जानकार आदमी है वे बतावे है कि ड्रोन अगर आप खेत में काम में लेवा तो बिंगमा फसल की जिकी है आपने लगभग 10 पीसा ताई जिकी है वृद्धि बात देखने मिली है। तो देखो आप कुल मिला के अगर आप बात करा तो देखो ड्रोन का किसान भाइयों बहुत सारा फायदा है, और आजकल तो आप जिया कह नहीं कि कंप्यूटर को जमाना है तो कंप्यूटर चलने वालों एक यंत्र है और इसमें बहुत फायदा और जानकारियां भी खूब मिले, और सारों मोटी बात है कि अपनी मेहनत है और टाइम की भी बचत हो है। अब देखो बिया आप स्प्रे करा तो कई बार क्या कोई हवा चल जाए तो बिंगमा क्या कि आप स्प्रे करा तो अपना स्वास्थ्य पर भी बिंगो असर होने को डर रहे, पर ड्रोन से देखो कोई डर को नहीं, और कोई कई बार आप देखा कि खेत में भांत भांत का कोई जीव जिनावर हो तो बांसू भी थोड़ा अपन खतरो रहे तो इंगो भी ड्रोन जो आप काम में लेवा तो बिंगमा भी अपन कोई खतरों को नहीं, और एक जगह बैठे बैठे देखो सारे खेत की निगरानी हो जाए माटी की भी जांच हो जाए पानी की भी बचत हो है, तो किसान भाइयों खूब सारा फायदा है। तो ड्रोन जो है वो भी अपन ने बाकी जिका कृषि यंत्र है बाड़ी तरह अपन खेत में अपन काम में लेवा तो खूब फायदा हो है। तो किसान भाइयों आप और भी इसी बातचीत आप कर सें खेती पाती वाली, पर अब आप एक करो भजन सुन लिया तो आओ सुनाओ भजन लो सुनो सा।

किसान भाइयों सुनो आपा भजन। किसान भाइयों आपा बात करा कि खेती के मां देखो नई नई तकनीक नुआ नुआ भांत का यंत्र आ गया है और बिंगा सागे सागे देखो और बहुत सारी विधियां हैं जिसों की आपा अपनी पैदावार जी की है बा बढ़ास कहाँ और बिंग मां अपने खेती के मां जी का अपनी फायदो है वो ज़्यादा हुआ है और लागत जी की है बा कम आनी चाहिए। तो इन खातर देखो एक आप बात करांगा आज एकीकृत पोषक तत्वों को जो प्रबंधन हो नहीं बिंग भी आज आप बात करा कि भी मैं देखो आपने खेत के मैं माटी की जी की उर्वरता है नहीं जी की उपजाऊ शक्ति है वह अच्छी तरह बनी रहे जिसों की फसलों में अपने बढ़वार अच्छी हुए पैदावार अच्छी हुए और बिंग गुणवत्ता भी अच्छी रहे तो बिंग मां जी का जरूरी पोषक तत्व है नहीं वे जब भी खेत में आपने पौधा जरूरत हो तो बी टाइम

माने मिलता रेवा तो इन आपा केवा एकीकृत पोषक प्रबंधन। और इंगमा सागे सागे किए देखो आपा देखा कि आपा किसान भाई जी का है आपा खेत में जिका रासायनिक उर्वरक है जी नत्रजन हो गयो फॉस्फोरस हो गयो वो पोटास होगी तो ए जिका उर्वरक आपा देवा पण कई बार आप देखा कि अंग सागे जैविक खाद है या जैव उर्वरक जिका हो जहाँ राइजोबियम है एजेटोबैक्टर है पीएसबी है तो ए जिका है अंग आप कमी रख लिया कई बार तो ए भी क्या बराबर मात्रा में आप देना चाहिए जदि खेत का में अपना पोषक तत्व पूरा हो तो इन खातर एक तो अपने माटी की जी जाँच है वह जरूर करवा लेनी चाहिए और बिंग सिफारिश के अनुसार ही आप रासायनिक जिका उर्वरक है वह आपने जी यूरिया होगी डीएपी होगी पोटास होगी वह बित्ती मात्रा ही खेत में अपन देनी चाहिए जितनी जरूरत होवे। आप कई बार की माटी की जाँच अपनी कराईडी कुनी और आप अपनी परख छू आप कई बार के खेत में देवो करा पर बे जिका पोषक तत्व है वे पहली छू पूरा हो तो इशू भी के जमीन ने नुकसान होने लग जाए। इंग सागे सागे बात करा जैविक खाद है तो इंग माँ गोबर की खाद है अपने जियाँ केंचू वाली खाद है कंपोस्ट है हरी खाद में जियाँ डेंचो है या फिर सनई है अंगी आप खाद जी के खेत में आप बनास कहाँ तो इशू क्या कि माटी की जी की बनतर है नहीं बा अच्छी हो जाए। एक तो भूमि को देखो कटाव कम हुआ है कई बार आप देखा कि जोर की आंधी चल जाए तो खेत का मापन कटाव देखने मिले तो बीशू क्या कि अपने फसल बाड़ी ने नुकसान हुए तो कटाव कम हुआ और पानी जी को है अगर आप खेत में पानी वाला जी का खेत है जैठा आप पानी लगावा जी को तो वो भी एक सार लागे तो इशू संरचना जी की है आप कहवा कि बनतर आप जी किनके इसका बा अच्छी हो जाए। इन सागे सागे जैव उर्वरक है जियाँ राइजोबियम है जेक्टोबैक्टर है और बाकी के जिका सूक्ष्म जीवी है तो एक यह हवा का माँ अपने नाइट्रोजन ले गए और माटी का माँ जिकी जमेड़ी फॉस्फोरस हुए बिंग माँ गुड़ गए और पौधा तैयार पुगती हो जाए तो ईशू भी पौधा की बढ़वार जिकी है अच्छी हुए तो कहने को मतलब वो है कि सगला भांत का पोषक तत्व और सगले तरह का जिका रसायन है या फिर जैविक खाद है यह सारा अपने खेत गया माँ देना चाहिए जिसू कि अपने खेत गया माँ हर तरह से अपने फायदा होगा। कई बार आप एक ही एक रसायन कोई आप दे वो करा उर्वरक दे वो करा तो बीसू फिर क्या खेत गया माँ खेत की जिकी उपजाऊ शक्ति है वह कम होने लग जाए और अपनी फसल बाड़ी में आप नुकसान होने लग जाए। और इनका फायदा बहुत सारा है किसान भाई एक तो देखो माटी को जिको स्वास्थ्य है वो अच्छो रहे और सागे सागे लागत में भी कमी आ जाए। देखो आप सिर्फ रसायन जिका उर्वरक देवा तो बाकी लागत ज़्यादा आवे अपन जैविक है जिकी या जैविक खादा है तो अंग में लागत कम आवे तो यह भी आप बराबर देवा तो इंग में अपनी फिर लागत कम हो जाए। और अपन कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा ज़्यादा आप जैविक खेती करनी आप ने जानो चाहिए जैविक खाद जी के बाद ज़्यादा ज़्यादा काम में लेवा। इंगे सागे सागे पौधा अगर आप पोषण की बात करा तो पोषक तत्व है जिका भी एकदम संतुलित रहे और सागे सागे किसान भाई आप जो वातावरण है वो भी है ना अच्छी तरह और सुरक्षित रहे इंगमा क्या है कोई भांत भांत का जिका जहरी लाकण है वह भी कौन फैले तो इंगो भी आपने ध्यान रखना चाहिए जिसमें क्या कि अपनों वातावरण भी जिको है अच्छी तरह रहे। तो इंगमा देखो आपने बात करा आप जिका करने वाला काम धंधा है तो एक तो देखो जिकी माटी की जाँच है बात जरूर करा लें सागे सागे फसल चक्कर है वो आप जरूर अपनावा इसमें क्या है कि एक फसल चक्कर मतलब एक बारी कम खाद वाली और एक बारी ज़्यादा खाद वाली फसल की आप बुआई करा तो भी मैं क्या है जमीन का माँ पोषक तत्व है बंगू संतुलन अच्छी तरह बने रहे सी। और इसमें फिर बाद में आपने आप कई बार देखा कि आप एक ही एक फसल बीजा तो बिंग माँ पोषक तत्व ज़्यादा देना पड़े तो वह फिर पोषक तत्व ज़्यादा होने चूँकि बंगू जमीन में रिसाव होने लग जाए और फिर भी बाद में पोषक तत्व ज़्यादा होने की वजह से भी कई बार भूमि की जिकी उर्वरा शक्ति है वह कम हो जाए। इन सागे सागे आप हरी खाद को भी आपने काम में लेनी चाहिए हरी खाद या माँ ढेंचा की खाद बहुत ही आपने एरिया की बात करा अपने क्षेत्र में तो अच्छी मानी जाए है तो आ भी आपने जरूर आपने काम में लेनी चाहिए। तो किसान भाइयों इतने ही आपने जिको खेत का माँ पोषक तत्वों का जो प्रबंधन है आप इनकेस कहाँ की एकीकृत जिको प्रबंधन है वो आपने अपनाना चाहिए जिसमें कि आपने खेत को जिकी उर्वरा शक्ति है वह अच्छी तरह बनी रहे और स्वास्थ्य भी बिंगो अच्छो रे। किसान भाइयों करा बातें चिता और पर पहली सुनाओ एक और भजन लियो सुनो सा।

किसान भाइयों सुनो, अभी आप भजन। किसान भाइयों पानी की बात करां तो देखो, बिरखा का दिनांग में आप ने पानी जी को है बिंगो आपने अच्छी तरह सदुपयोग करना चाहिए है। और किसान भाइयों ध्यान ही है कि देखो, पानी जी को है खेती खातर और अपने बिया भी जीवन यापन करने खातर अपने बहुत ही जरूरी है। तो पहली बात करा खेती का पानी की, तो देखो खेत में आपने चाहे कोई कुओं है, कोई बावड़ी है, या फिर चीका किसान भैया तालाब बना रखे है, तो खेत को जो को पानी है बिरखा के दिन में आप देखा कि खेतांग में पानी भर जाए भैया। तो देखो अजय तीन बिरखा कमी हुई है, पर आगे आने वाले दिनों में आसार है बिरखा का। तो पानी जो है बिंगो आपने ज़्यादा से ज़्यादा आपने सदुपयोग करना चाहिए। तो वो पानी जो है किसान भैया, वो आप कोई तालाब है या फिर आपने कोई खेत में कोई डिग्गी बनाई है तो वह पानी आप भर लें, और वो पानी फिर बाद में आप बिरखा के दिनों बाद में ज़्यादा अपनी फसल में पानी की जरूरत है, तो वो पानी जो है आप खेत गए में टपका विधि छूँ या फिर फुहरा वाली सिंचाई जी की विधि हुए बीच में आप खेतों में लगा गए और अपनी जी की फसल है बिने अच्छी तरह आप बिने पानी दे दें तो बिना पानी की कमी कौन रहे और खेत के में अपने नमी की जिकी मात्रा है वह अच्छी तरह बनी रही से। इनके सागे सागे किसान भाइयों अपना जिका किसान भाइयों का कुआं है, तो कुआं को रिचार्ज जिका ना आप बोलना कि कुआं ना वापस आप पानी भर लें, तो बिन बिरखा को पानी जो है वो वापस कुएं में छोड़ दें तो भी मैं क्या है फिर बिना आप जी बोलना कि भूजल रिचार्ज, तो धरती को जो पानी है वो वापस भर जाए बिरखा का पानी, तो वो भी बाद में आप ट्यूबवेल चला गए या कुएं छूँ वापस काट गए और वो आप खेत गए मां बिना आप काम में ले कहाँ, और बिरखा को पानी जो है वो आप कुएं गए मां वापस दे दें तो भी हूँ क्या कि वो पानी जो है खेती खातर बहुत ही अच्छा हुआ। कई बार आप देखा कि कुआं को जो पानी है या फिर ट्यूबवेल को जो पानी है वो खेती का माफी को नहीं हुए, तो ई करके आप बिरखा को जो पानी है वो आप काम में लेवा तो वो अपने खेत गए में फसल जी के अपने बिना ज़्यादा फायदों करे। इंगे सागे सागे आप देखा कि घरांगे में भी आप अपने जी की छत्ता हैं तो बांसू भी आप जो है रिचार्ज आप पानी को वो कर सका हाँ, तो वो पानी जो है वापस आप धरती के माँ बिना भर लिया तो वो पानी फिर बाद में अपने काम आवे। ई करके पानी जो है और बिरखा को पानी बहुत ही अच्छा हो गया, तो इनको आपने सदुपयोग करना चाहिए और पानी जो है वो व्यर्थ आपन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ही जितो इकट्ठो हो सके इनको पानी को आपने सदुपयोग करना चाहिए। और इन सगे सगे जिके ज़्यादा पानी वाली फसल है तो बंग में भी आपने जिकी कोई बट है डोली है बन अच्छी तरह ऊंची करके तगड़ी करके और वह खेत भी आप पानी भर लें तो बिंग में क्या फिर नमी जिकी है खेत गए माँ वह बहुत लंबे टाइम तीन रेवे और पीछू अपना जिका बूंटा है फसल है बिना बहुत ही फायदा हो। तो इनको देखो बहुत सारो फायदो है और सागे सागे देखो आपने ध्यान ही है कि पानी की जिकी बहुत कमी है, पर पानी आप वो बिरखा इकट्ठो कर लें तो वही पानी बाद में फिर आपने खेत में काम आ जाए और अपनी फसल जिकी है बिंग बढ़वार अच्छी रहेसी, पैदावार भी अच्छी रहेसी और टेमो टेम पानी मिलते रहो तो नमी की मात्रा जिकी है वह बनी रहेसी, तो बीच में क्या कि पौधा जिका है एकदम स्वस्थ रहेसी और पैदावार भी जिका

किसान भाइयों सुनियो भी आप सीमा मिश्रा वांगे साथियों को गैड़ो गीत। किसान भाइयों आप देखा कि आपने समाज में कई भांतगी जिकी कुरीतियां है या किसका की कमियां भी है, तो बने भी आपने दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और बात करा सामाजिक कुरीतियां की, तो देखो बाल विवाह जो नहीं आप कम उम्र में टाबर परनाना वो एक समाज के माथे में बहुत ही मोटो कलंक है। और बिया भी किसान भाइयों आप कानूनी रूप में बात करा तो बाल विवाह जो है नहीं वो कानूनी रूप से भी अपराध है और गैर कानूनी मान्यो जाए। तो इंग माँ टाबरों की जिकी उम्र है, छोरियों की उम्र 18 वर्ष और छोरों की जिकी उम्र है वह 21 वर्ष होनी चाहिए कम से कम, भी बाद में ही टाबरों को जो ब्याह करना चाहिए। क्यों इंगा देखो बहुत सारा नुकसान है, इं कर गई तो कानून जो है बनायो गयो है। क्योंकि देखो एक तो आप छोटी उम्र में ब्याह कर दें तो बीच में क्या है कि टाबरों को जो टाबरपणो है वो ख़त्म हो जाए और सागे सागे पढ़ाई लिखाई जी की है वह भी छूट जाए। क्योंकि ब्याहों बाद में देखो भांत भांत की जिम्मेवारियाँ होवे, तो वह जिम्मेवारी जी की है वह कम उम्र में पूरी करनी बहुत ही मुश्किल हो जाए। तो इं करके आपने टाबरों को जो ब्याह है वो उम्र पूरी होने पर ही करना चाहिए। और सागे सागे शारीरिक रूप से भी अगर आप बात करा तो शारीरिक रूप से भी टाबर जी का है कम उम्र के माँ ब्याह खातर तैयार को नहीं हुए, तो बिंग माँ कई बार तो आप देखा कि इतनी गंभीर समस्या आ जाए तो बीच में कई बार तो मौत भी हो जाए। तो इं करके ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कम उम्र में ब्याह करना देखो बाद में छोरियाँ जी की है कम उम्र में माँ बने तो बिंग माँ बहुत ज़्यादा नुकसान है और स्वास्थ्य खातर बहुत ही हानिकारक है। और जिका डाक दर्जी है वे भी बतावे कि बहुत ज़्यादा कई बार तो नुकसान हो जाए। तो इं करके इन बात को अपने विशेष ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा देखो स्कूल से तो ना तो लगभग लगभग छूट ही जाए क्योंकि ब्याह बाद में फिर घर का कोई काम धंधा है और जिम्मेवारियाँ हैं तो बंग माँ फिर पढ़ाई लिखाई करने जी की थोड़ी दूरी हो जाए। इंगे सागे सागे किसान भाइयों आप देखा कि अगर अपनो समाज जी को है बिंगो अच्छो विकास होवे और एक अच्छो समाज को आप बनतर करा तो बी खातर भी आप बहुत जरूरी है। आज की कुरीति है इन्हें आपने बिल्कुल एकदम ख़त्म करनी चाहिए और इन पर आपने विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बिया तो देखो आजकल जी को जागरूकता खूब है और सगला जी का किसान भाई है और भी जी का है वह सगला जागरूक है, ये बात छूँ बहुत ध्यान रखा है। पर कठे कठे किसान भाइयों अजय भी देखने मिले है तो इं करके बाल विवाह जी को है बिंगो बिंगो पर बिल्कुल अपने रोक लगानी चाहिए और इन्हें बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए और टाबरियाँ टीकरा की उम्र जद पूरी हो जाए पर नाना की उम्र जद एकदम अच्छी तरह 18 साल और 21 वर्ष हो जाए भी बाद में जो है टाबरियाँ को आपने ब्याह करना चाहिए जिसमें क्या कि बाद में फिर परिवार जो है वो भी अच्छी तरह चालतो रहे। तो किसान भाइयों कर से और बातें चेता पर पहले सुनाओ गीत लियो सुनो सा।

किसान भाइयो सुनो भी आपा गीत। किसान भाइयो मौसम वाली पानड़ी कहवे है कि आने वाले दो तीन दिन में अपने क्षेत्र का मानसून जी को है दोबारे से आने की संभावना है, तो बिरखा की पूरी पूरी संभावना है और कटे कटे तो हल्की फुल्की और कटे कटे ही भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। पर बिरखा के दिनों में किसान भाइयों थोड़ी सावचेती भी रखनी चाहिए, खास करके तो आपने जी की कोई बिजली वाली जी की तारा है, कई बार आप देखा कि कोई तार कोई टूटी हुई है तो बीच में दूर रहवा और सागे सागे स्वास्थ्य को ध्यान रखा, क्योंकि बिरखा के दिनों में रोग लागने की जी की संभावना है बहुत ज़्यादा रहे, तो ये करके स्वास्थ्य को विशेष रूप से ध्यान रखा, खाने पीने को विशेष रूप से ध्यान रखा जिसों के स्वास्थ्य अच्छे रहे और अपना जी का बुजुर्ग है बंग भी ध्यान रखा, सागे सागे पशुधन को भी विशेष रूप से अपने ध्यान रखना चाहिए। तो किसान भाइयों कार्यक्रम को टेम हो गयो है, तो आज को कार्यक्रम इतो ही। अब सज्जन भाई ने देव थे आज्ञा, राम राम सा राम राम।

अभी आप सुन रहे थे चौपाल सुनील वर्मा के साथ। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडिया वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर। शाम के 7:45 हुए हैं। अब सुने फिल्म संगीत।

नीरज का लिखा ये गीत आप सुन रहे हैं, किशोर कुमार की आवाज में फिल्म शर्मिली से। संगीत SD बर्मन का है।

0: किस्मत हमसे खुद से
1: किशोर कुमार की आवाज में ये सुने ये नगमा। फिल्म का नाम है आपकी कसम। नगमा निगार आनंद बख्शी और मासिकी आर डी बर्मन की है।

फिल्म आपकी कसम में किशोर कुमार का गाया ये नगमा आपने सुना, नगमा निगार आनंद बख्शी और मौसिकी आर डी बर्मन की थी। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब खत्म होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर। रात के 8 बजे हैं, कार्यक्रम सुने एक ही फिल्म से।

कार्यक्रम एक ही फिल्म से मैं आज की फिल्म मौसम गुलजार की निर्देशित ये बहुत ही संवेदनशील और गहरी फिल्म है। 1975 में बनी ये फिल्म आज भी अपनी कहानी, अपने गीत और संगीत के लिए, फिल्म में एक दमदार अभिनय के लिए उसी ताजगी के साथ याद की जाती है। मौसम एक ऐसी कहानी है जो समय, यादों और अधूरे रिश्तों की बुनियाद पर टिकी है। गुलजार ने इसे लिखा ही नहीं, बहुत ही गहरे एहसास के साथ इसे निर्देशित भी किया है।

0: में पड़ी।
1: श्रोताओ, इस फिल्म में संजीव कुमार ने निभाया है डॉक्टर अमरनाथ गिल का किरदार, एक ऐसा डॉक्टर जो बहुत अरसे बाद अपनी मोहब्बत को ढूंढने दार्जिलिंग के लिए निकलता है। और फिल्म की जो आत्मा है वो शर्मिला टैगोर का अभिनय है। एक ही फिल्म में दो अलग अलग और बिल्कुल विपरीत भूमिकाएं, चंदा थापा एक मासूम सरल सुगंध की तरह बिखरी हुई और कजली जिंदगी के थपेड़ों से सख्त हो चुकी लेकिन अंदर से अब भी एक बच्चे की तरह नाजुक। फिल्म में अन्य भी महत्वपूर्ण कलाकार हैं, दीना पाठक जिन्होंने निभाई गंगू रानी की भूमिका और ओमपुरी जो एक वैद्य की भूमिका में हैं,

लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की आवाज, गुलजार के गीत और मदन मोहन का संगीत इस फिल्म की धड़कनों को और गहरा करते हैं, इसके एहसास को और खूबसूरत बनाते हैं।

फिल्म में गीत में आवाज आशा भोसले ने भी थी है, और कहानी और किरदार की ज़रूरत के मुताबिक ये गीत इस फिल्म में शामिल किया गया।

मौसम को मदन मोहन की याद में समर्पित किया गया था, क्योंकि इस फिल्म के गानों की रिकॉर्डिंग के कुछ समय बाद ही उनका निधन हो गया था।

0: फुर्सत के रात दिन।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर। रात के 8:30 हुए हैं। स्पोर्ट्स कैन अब से कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से रिलीज किया जाएगा।

0: फुर्सत के रात दिन।
1: गुलजार की मौसम हमें यह एहसास दिलाती है कि वक्त बदलता है, लोग बदल जाते हैं, पर यादें और उनसे जुड़े एहसास कभी नहीं बदलते। फुर्सत में दिल अक्सर उनको ढूंढता है।
0: फिर वही।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं खेल के मैदान के हर अपडेट के साथ आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में, जहां आज हमारे साथ है फुटबॉल का फीवर, बैडमिंटन कोर्ट से आती इतिहास की दस्तक और लॉर्ड्स के मैदान पर जारी रनों की बारिश। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। रात 12:30 बजे होंगी दोनों टीमें आमने सामने। इंग्लैंड ने फीफा विश्व कप में तीसरा स्थान हासिल किया। तीसरे स्थान के लिए खेले गए मैच में फ्रांस को 6-4 से हराया और भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा एक दिवसीय मैच लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर जारी। और पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में जापान ओपन सुपर 750 का खिताब अपने नाम किया। तो आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं फुटबॉल के खुमार के साथ, जो इस समय पूरी दुनिया के सर चढ़ के बोल रहा है। और फुटबॉल फीफा विश्व कप का फाइनल मुकाबला आज अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खेला जाना है। जानते हैं फुटबॉल के सबसे रोमांचक मुकाबले से पहले किसका पलड़ा कितना भारी है।
1: न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में आज डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के बीच मुकाबला फैसला करेगा कि फीफा विश्व कप का विजेता कौन होगा। एक तरफ अर्जेंटीना लगातार दूसरा विश्व कप जीतकर 1962 के इतिहास को दोहराना चाहेगी, वहीं दूसरी ओर स्पेन 2010 के करिश्मा को दोहराकर एक बार फिर खिताब अपने नाम करने के इरादे से उतरेगा। अर्जेंटीना को सबसे अधिक उम्मीद अपने स्टार खिलाड़ी और इस विश्व कप में 8 गोल कर चुके लियोनेल मेसी से होंगी। अर्जेंटीना ने इस वर्ष कई बार अंतिम क्षणों में कमबैक की बदौलत मुकाबले का रुख बदला है, जैसा इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में देखने को भी मिला, जहां पूरे मैच में पीछे चल रही अर्जेंटीना ने अंतिम मिनटों में इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया था। जूलियन अल्वारेज, लुटारो मार्टिनेज और मैक एलिस्टर टीम की मजबूत कड़ी है। मिडफील्ड और डिफेंस में एंजो फर्नांडिस, मैक एलिस्टर, पेरेडेस और एमिलियानो मार्टिनेज टीम की ताकत है। वहीं स्पेन मजबूत डिफेंस और पोजीशन गेम से दूसरा खिताब हासिल करना चाहेगा। स्पेन ने पूरे टूर्नामेंट में अब तक मात्र 1 गोल खाया है। स्पेन ने सेमीफाइनल में फ्रांस की मजबूत टीम को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई है। टीम के डिफेंस में उनाई सिमोन और रॉड्री जैसे मैच विनर खिलाड़ी हैं। लैमिन यमल, निको विलियम्स, मिकेल ओयारज़ाबल और फैबियन रुइज से भी स्पेन को फाइनल मुकाबले में काफी उम्मीद होंगी। ऐसे में इस खिताबी मुकाबले में इन दोनों डिजर्विंग फाइनलिस्ट टीम के बीच मैदान पर जोश, जुनून, कौशल और रणनीति का शानदार मिश्रण देखने को मिलेगा, जो तय करेगा कि फुटबॉल का नया विश्व विजेता कौन बनने जा रहा है। स्पोर्ट्स कैन के लिए प्रशांत कुमार।
0: तो आज कागज पे कौन सी टीम कितनी मजबूत है, इससे अधिक फैसला इस बात से होगा कि मैदान पर वो आखिरी के 90 मिनट किस टीम के साथ होते हैं। और कहा जाता है कि जंग में कागजी अफराज से क्या होता है, हौसला लड़ता है तादाद से क्या होता है। तो देखना होगा कि आज विश्व की नंबर 1 और नंबर 2 टीमें सामने हैं और आज रात के बाद विश्व कप का नया विजेता कौन होगा। इससे पहले कल फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में इंग्लैंड ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फ्रांस को 6-4 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। सुनते हैं इस मैच का पूरा हाल।

0: फुटबॉल प्रेमियों को बीती रात एक बेहद रोमांचक और यादगार मुकाबला देखने को मिला, जहां तीसरे स्थान के लिए खेलते हुए इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हरा दिया। 1982 के बाद ये पहला मौका है जब विश्व कप के किसी एक मुकाबले में 10 गोल हुए हों। इंग्लैंड शुरुआत से ही हावी नजर आई। मैच के तीसरे ही मिनट में डेक्लान राइस ने लंबी दूरी से शॉट लगाते हुए पहला गोल किया। इसके बाद मैच के 18वें मिनट में एजरी कौनसा ने राइस के कॉर्नर पर शानदार हेडर लगाते हुए इंग्लैंड की बढ़त को 2-0 कर दिया। बुकायो साका ने इंग्लैंड के लिए मैच का तीसरा गोल किया, जबकि 43वें मिनट में उन्होंने एक और गोल दागते हुए पहले हाफ में ही इंग्लैंड की बढ़त को 4-0 कर दिया। इसके बाद दूसरे हाफ में फ्रांस ने दमदार वापसी की। 48वें मिनट में किलियन एम्बाप्पे ने फ्रांस के लिए मुकाबले का पहला गोल दागा। इसके बाद 58वें मिनट में बारकोला ने एक और गोल करते हुए स्कोर को 4-2 पर ला दिया। 9 मिनट बाद ही एम्बाप्पे ने एक और गोल करते हुए इंग्लैंड की बढ़त को और कम कर दिया। अब बारी थी इंग्लैंड के पलटवार की, जिसने मैच के अंतिम पलों में एक बार फिर दमदार खेल दिखाया। 87वें मिनट में हाथ आई पेनल्टी में बुकायो साका ने इंग्लैंड के लिए 5वां गोल किया। हालांकि फ्रांस के लिए उस्मान डेम्बेले ने इंजरी टाइम में गोल करते हुए स्कोर 5-4 कर दिया। इंजरी टाइम के 8वें मिनट में जूड बेलिंगहम ने इंग्लैंड की ओर से 6ठा गोल करते हुए टीम की जीत पर मोहर लगा दी। 1966 में फीफा विश्व कप का खिताब जीतने के बाद ये टूर्नामेंट में इंग्लैंड का अब तक का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो शायद शुरुआत के 102 मुकाबलों में जहां पे गोल की कुछ कमी रही होगी, वो तीसरे स्थान के लिए खेले गए इस मैच में पूरी होती हुई नजर आई। और अब रुख करते हैं बैडमिंटन कोर्ट का, जहां भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु, जो 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता हैं, उन्होंने भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। पीवी सिंधु ने जापान ओपन सुपर 750 का खिताब जीत लिया है। महिला सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में सिंधु ने जापान की अकाने यामागुची को 21-17, 21-17 से हराया।
2: It's out. Andrew's out. Game. Being part of Sindhu creates history. She is the first player from India ever to win a title across any of the disciplines here at the Japan Open.
3: स्टार भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने जापान ओपन के महिला सिंगल्स फाइनल में जापान के अकाने यामागुची को हराकर न सिर्फ ये खिताब अपने नाम किया, साथ ही 2 साल जारी BWF टूर खिताब का सूखा भी समाप्त किया। ये दिसंबर 2024 में सैयद मोदी टूर्नामेंट जीतने के बाद सिंधु का पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब है। सिंधु ने टोक्यो मेट्रोपॉलिटन जिम्नाजियम में 4 बार की चैंपियन यामागुची को 21-17, 21-17 से हराया। इसके साथ ही वो जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। सिंधु को शानदार प्रदर्शन के साथ साथ किस्मत का भी भरपूर साथ मिला। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने वर्ल्ड नंबर 5 हान यू को हराया, तो क्वार्टर फाइनल और फिर सेमीफाइनल में उनकी विपक्षी खिलाड़ी चोटिल होने की वजह से मैच से हट गई। सिंधु ने फाइनल मुकाबले की शुरुआत बेहद आक्रामक अंदाज में की और दोनों गेम में बढ़त बनाने की कोशिश में लगी रही। हालांकि कई बार यामागुची ने स्कोर बराबर किया, लेकिन दोनों गेम के अंतिम चरणों में सिंधु ने शानदार धैर्य और आक्रमण का मिश्रण दिखाते हुए 21-17 से मुकाबला और खिताब अपने नाम कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया सहित राजनीति और खेल के क्षेत्र से जुड़ी कई बड़ी हस्तियों ने सिंधु को इस ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो भारत की सबसे सफल बैडमिंटन खिलाड़ी ने भारतीय बैडमिंटन इतिहास में एक और बहुत बड़ी उपलब्धि को जोड़ दिया है। और 7 वर्षों के लंबे इंतज़ार के बाद सिंधु ने कोई 750 सुपर 750 स्केल के ऊपर का टूर्नामेंट जीता है। और अब रुख करते हैं लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान का, जहां भारत और इंग्लैंड के बीच एक दिवसीय श्रृंखला का तीसरा और निर्णायक मुकाबला खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने भारत को जीत के लिए 388 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 9 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 49 रन बना लिए थे। इससे पहले इंग्लैंड की ओर से बेन डकेट ने 141 रन की एक शानदार शतकीय पारी खेली। और अब इस श्रृंखला पे और इस मैच पर हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी विशेष शुक्ला। विशेष, इस समय क्या ताज़ा अपडेट है भारतीय पारी का इतने बड़े लक्ष्य के सामने?
4: शक्ति, अभी भारतीय टीम का

0: 26वां ओवर चल रहा है और 49 रन पर पारी पहुंच चुकी है बिना किसी नुकसान के। रोहित शर्मा 19 गेंदों पर 24 रन बनाकर खेल रहे हैं, वहीं शुभमन गिल 36 गेंदों में 25 रन बनाकर खेल रहे हैं। तो बहुत ही सधी हुई शुरुआत हुई है भारतीय टीम के लिए। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि काफ़ी धीमी शुरुआत है, लेकिन उसको कवर अप कर लिया गया है। अगर हम बात करें कि इंग्लैंड की पारी की, तो भारत को एक बहुत विशालकाय लक्ष्य उन्होंने दिया है 388 रनों का, जिसमें अहम भूमिका निभाई उनके ओपनर्स ने। बेन डकेट ने 141 रन और जेकब बेथल ने 91 रन की पारी खेली। साथ ही उन लोगों ने 192 रन की पार्टनरशिप करी और उसके बाद बेन डकेट और जो रूट ने भी 101 रनों की साझेदारी करी और अंतिम ओवरों में जॉस बटलर ने 13 गेंदों पर 41 रन बनाकर मैच का रुख जो है इंग्लैंड के तरफ कर दिया और रूट के साथ मिलकर 19 गेंदों पर 63 रनों की बहुत ही तेज तर्रार साझेदारी करी। अगर भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन की बात करें तो काफ़ी औसतन प्रदर्शन रहा। गुरनूर ब्रार ने 10 ओवर में 97 रन आज लुटाए, वहीं अर्शदीप ने 10 ओवर में 72, प्रसिद्ध ने 10 ओवर में 69 और अक्षर पटेल ने सबसे किफ़ायती गेंदबाजी करी है आज 10 ओवर में 61 रन। सर्वाधिक विकेट प्रसिद्ध कृष्णा को ही मिले हैं, लेकिन आज का जो ये मुकाबला है, इतना बड़ा लक्ष्य है, ये डिसाइड करेगा कि ये सीरीज़ किसके नाम होगी, क्योंकि पहले दो मुकाबलों में एक मुकाबला भारत के नाम और एक मुकाबला इंग्लैंड के नाम रहा है।
1: जी बिल्कुल, तो ये सीरीज़ डिसाइडर मुकाबला होगा, लेकिन लॉर्ड्स का मैदान ऐसा मैदान है जहाँ पर रिकॉर्ड्स टूटते हैं, नए कीर्तिमान बनते हैं। आज भी कई रिकॉर्ड्स टूटे हैं, उन पर भी नज़र डालें विशेष एक बार।
0: अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो बेन डकेट ने जो 141 रन की पारी खेली है वो लॉर्ड्स मैदान पर सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर उन्होंने बनाया है। उन्होंने विव रिचर्ड्स का रिकॉर्ड तोड़ा है जो उन्होंने 1979 विश्व कप फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ ही बनाया था 138 रनों का, और ये हाईएस्ट ओडीआई टोटल भी है। इसी के साथ ये भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली का साथ में 400वां अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला है। भारत के लिए श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद अब सीधा 27 सितंबर को भारत वेस्ट इंडीज से भिड़ेगी।
1: जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं और एक और रिकॉर्ड भारत को तोड़ना होगा अगर ये श्रृंखला और मुकाबला जीतनी है, और वो रिकॉर्ड होगा 388 रन का विशाल काय लक्ष्य चेस करते हुए हासिल करना। देश में फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल अभियान के अंतर्गत आज युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लोगों के साथ साइकिल चलाकर फिट रहने का संदेश दिया। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि आज के संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के साथ बड़ी संख्या में लोग ने हिस्सा लिया।
2: आज संडे ऑन साइकिल की 82nd एडिशन है। देश के लाखों आयुष्मान आरोग्य मंदिर के कर्मियों के साथ आज संडे ऑन साइकिल का आयोजन हुआ। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 15,000 से अधिक स्थानों पर आज संडे ऑन साइकिलिंग करके देश के स्वास्थ्य कर्मियों ने स्वस्थ रहने का संदेश दिया है, फिट रहने का संदेश दिया है और प्रधानमंत्री जी की संडे ऑन साइकिल मूवमेंट के साथ जुड़े हैं।
1: ये 82वीं कड़ी थी इस कार्यक्रम की, और जैसे जैसे ये कार्यक्रम बढ़ते जा रहा है, देश में इसका विस्तार, इसका दायरा हर रविवार फैलता है। लोग सुबह 4 बजे 5 बजे अपने घरों से निकलते हैं अपनी वीकेंड की नींद को छोड़ करके और साइकिल चलाते हैं, दुनिया को और देश को एक संदेश देते हैं फिट रहने का। इस दौरान खेल मंत्री ने साइकिल चलाने के 4 प्रमुख फायदे भी देश को बताए।
2: साइकिलिंग एक छोटा प्रयास बट बहुत बड़ा परिणाम देता है। हर संडे 1 घंटे साइकिलिंग से आप अपने स्वयं को फिट रख सकते हो, आप पोल्यूशन का सॉल्यूशन कर सकते हो, आप देश का तेल को बचा सकते हो और आप स्वयं फिट भी रह सकते हो। एक साइकिलिंग से इतना फायदा होने से और फिट इंडिया मूवमेंट के साथ जोड़ने के लिए आज देश के लाखों युवाओं साइकिलिंग के और प्रेरित हो रहा है और अपने स्वयं को फिट रखने के लिए साइकिलिंग कर रहे हैं।
1: तो हेल्थ के इस रेजोल्यूशन से निकलता हुआ पॉल्यूशन का सॉल्यूशन, और अब रुक करते हैं बुदापेस्ट रैंकिंग सीरीज कुश्ती प्रतियोगिता का, जहां मौजूदा अंडर 20 विश्व चैंपियन काजल ने अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। स्वर्ण पदक के लिए हुए रोमांचक मुकाबले में काजल ने अमरीका की डायमंड प्रोशियस गिलफ्रेड को हराया। वहीं भारत ने 53 किलो और 57 किलो वर्ग में 2 रजत पदक भी अपने नाम किए हैं। अंतिम पंगाल को 93 किलो के फाइनल में चोट के कारण स्वीडन की एम्मा जोना डेनिस मालमग्रीन से हार का सामना करना पड़ा और रजत पदक के साथ संतोष करना पड़ा। वहीं 57 किलो वर्ग के फाइनल मुकाबले में नेहा शर्मा को चीन की कॉक्सिन होंग के खिलाफ 0-4 से हार का सामना करना पड़ा था। निशु ने 53 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था। भारत ने अब तक इस टूर्नामेंट में 12 पदक जीत लिए हैं, जिसमें से 3 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। भारतीय खिलाड़ी अब ग्रीको रोमन शैली में हिस्सा ले रहे हैं, जहां भारत के लिए ललित से काफ़ी उम्मीदें हैं। उन्होंने लगभग

0: ब्रॉन्ज मेडल के मैच में अपना स्थान पक्का कर लिया है। हालांकि वो फाइनल की दौड़ से चूक गए और इसके पहले पहले दिन अमन शरावत ने भारत के लिए एक शानदार स्वर्ण पदक इस प्रतियोगिता में जीता था, जो कि भारत के उभरते हुए खिलाड़ी हैं और भारत को आगे आने वाली बड़ी चैंपियनशिप में अमन से काफ़ी उम्मीदें होने वाली हैं। और अब चेस का रुख कर लेते हैं, जहां शतरंज में कोयम्बटूर के VS रतनवेल ने गुवाहाटी स्मार्ट सिटी इंटरनेशनल ओपन 2026 में 2000 ईएलओ रेटिंग का आंकड़ा पार करते हुए देश के 99वें ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव हासिल कर लिया है। भारत अपने 100 ग्रैंड मास्टर से महज एक कदम दूर है। और अब श्रोताओं, समय हो रहा है कार्यक्रम के अंत का, लेकिन चलते चलते आपको एक बार वापस लॉर्ड्स पर खेले जा रहे मैच का स्कोर बता देते हैं, जहां भारत ने इस समय 10 ओवर और 2 गेंद में बिना कोई विकेट खोए 50 रन बना लिए हैं। रोहित शर्मा 24 और कप्तान शुभमन गिल 26 रन बनाकर के क्रीज पर डटे हुए हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपनी राय और सुझाव sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमेरिका ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। और खेलों में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच आज रात होने वाले फीफा विश्व कप के फाइनल को लेकर विश्व भर में फुटबॉल का जुनून। लॉर्ड्स में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को जीत के लिए 388 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ. एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी के नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्री कृष्ण देवरायालू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी, क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे
1: संवाददाताओं से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK, JMM, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने बैठक का बहिष्कार किया।
3: आज पूरे विपक्ष सभी पार्टियों ने विरोध के तौर पे सर्वदलीय बैठक से वॉकआउट किया, क्योंकि NCPI मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। इन कथित 20 बागी सांसदों के विलय को सभापति की मंजूरी नहीं मिली तो किस आधार पे संसदीय कार्य मंत्री

0: मंत्री ने इन 20 बागी सांसदों को आमंत्रित किया। इसके खिलाफ हमने विरोध दर्ज कर बैठक से वॉकआउट किया।
1: एनसीपीआई के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने सर्वदलीय बैठक का विरोध करने पर विपक्षी दलों की निंदा की। उन्होंने कहा कि एनडीए में एनसीपीआई अब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है।
2: कभी नहीं देखा ऑल पार्टी लीडर्स मीटिंग में वॉकआउट होता है। मैंने भी डिमांड दिया जो पार्टी का जहां पोजीशन हो दो एंड हाउस बिलोंग्स टू द अपोजिशन दे हैड टू बी गिवन चांस एंड गवर्नमेंट शुड आल्सो फील टू रन द हाउस इज देयर रिस्पांसिबिलिटी बट इन आवर हाउस इट हैज बिकम रेगुलर प्रैक्टिस टू डिस्टर्ब द हाउस एंड नॉट अलाउ द हाउस टू रन।
1: आज की सर्वदलीय बैठक से सरकार को उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दल संसद की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सहयोग करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के सफदरजंग अस्पताल में चल रहे इलाज में दखल देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि वांगचुक को जंतर मंतर से अस्पताल में भर्ती कराने के सरकार के फैसले को मनमाना नहीं कहा जा सकता। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने कहा है कि वांगचुक को किसी निजी अस्पताल में भेजने की तत्काल आदेश देने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर उनकी हालत पर नजर रखे हुए हैं और उनकी सहमति से ही इलाज जा रहा है। न्यायालय में वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो की उस याचिका पर सुनवाई हो रही थी जिसमें वांगचुक को निजी अस्पताल में भेजने की मांग की गई थी। न्यायालय ने केंद्र सरकार, सफदरजंग अस्पताल और दिल्ली पुलिस से इस मामले में 3 दिन में जवाब देने का नोटिस जारी किया है। श्री वांगचुक को उनकी भूख हड़ताल के 21वें दिन कल पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन 3 देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। आकाशवाणी से बातचीत में डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी।
3: It is the first ever visit by any Indian president to Moldova.
4: यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्डोवा की पहली यात्रा है। इसी तरह रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से अधिक के बाद होगी, तो इस महत्व को देखते हुए यह ऐतिहासिक है। दोनों देशों के बड़े नेताओं के साथ हम अपने मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हम प्रमुख क्षेत्रों की भी पहचान करेंगे। माननीय राष्ट्रपति के साथ एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल भी है। इसी तरह माननीय राष्ट्रपति रोमानिया और मोल्डोवा में उनकी संसद का दौरा करेंगे, जिससे हमें संसदीय संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
3: Which would help us strengthen the parliamentary relationship.
1: सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस परियोजना का विकास कर रहा है। इसकी कुल लागत 8,000 करोड़ रुपए से अधिक है। यह राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा। इसे सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों के बीच बेहतर और सुगम संपर्क स्थापित होगा। यह परियोजना स्थानीय लोगों के लिए भी नए अवसर लेकर आएगी। राजमार्ग के किनारे होटल, होम

0: से रेस्तरां, हस्तशिल्प बाजार और पर्यटन से जुड़े अन्य कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। यह राजमार्ग 9 आर्थिक केंद्रों और 5 लॉजिस्टिक केंद्रों को भी जोड़ेगा, जिससे ओडिशा का आर्थिक नेटवर्क और मजबूत होगा। समर्थ के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत परिवहन क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 12 पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत 70 हाइड्रोजन चालित भारी वाहनों को तैनात किया जाएगा और 16 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन द्वारा इन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये पायलट परियोजनाएं देश भर के कई रणनीतिक मार्गों को कवर करते हुए भारत के राजमार्गों और शहरी परिवहन गलियारों में शून्य कार्बन उत्सर्जन गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि प्राधिकरण ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे अनधिकृत सेवा शुल्क ना लगाएं। श्री जोशी ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 के जरिए ऐसे मामलों की सूचना दी जा सकती है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग लापता हैं। सबसे अधिक हताहत और नुकसान पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील में हुआ है। राहत और बचाव कार्य जारी है तथा गुमशुदा लोगों की तलाश की जा रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिल्ली यात्रा बीच में ही छोड़कर आज दोपहर बाद जम्मू वापस चले गए। नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, राजस्थान, विदर्भ और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक के तूफान का भी पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमरीकी सेना ने आज ईरान पर हवाई हमले किए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन हमलों में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाया गया। फुटबॉल के सबसे भव्य मंच फीफा विश्व कप 2026 के रोमांचक फाइनल के लिए तैयार है, जहां आज रात 12:30 बजे न्यूजर्सी में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन की टीम आमने सामने होंगी।
2: अर्जेंटीना फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे सफल टीमों में से एक है, जिसने 3 बार विश्व कप जीता है। लियोनेल मेसी की टीम 1958 और 1962 में ब्राजील के बाद फीफा विश्व कप खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर स्पेनिश टीम 2010 के बाद अपना दूसरा फीफा विश्व कप खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी। अर्जेंटीना को सबसे अधिक उम्मीदें अपने स्टार खिलाड़ी मेसी से हैं, जो 8 गोल और 4 असिस्ट के साथ टीम का नेतृत्व कर रहे हैं और गोल्डन बूट के प्रबल दावेदार है। लोटारो मार्टिनेज ने 3 गोल और एंजो फर्नांडीज ने 2 गोल करके अर्जेंटीना के आक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मिकेल ओयर्ज़बल इस विश्व कप में स्पेन के लिए 5 गोल के साथ शीर्ष स्कोरर हैं। रॉड्री ने टूर्नामेंट में सबसे अधिक 648 पास पूरे करके मिडफील्ड में शानदार खेल दिखाया है। दुनिया भर के खेल प्रेमी इस रोमांचक मैच के लिए बेहद उत्साहित है। भारत में भी इस फाइनल मैच के लिए कई तैयारियां की गई है। मेघालय, मणिपुर और केरलम जैसे राज्यों ने देर रात होने वाले इस मैच को देखते हुए सोमवार को स्कूल और कॉलेजों में अवकाश घोषित किया है। राजधानी दिल्ली में भी रेस्तरां, कैफे और अन्य कई प्रतिष्ठान सुबह 4 बजे तक खुले रहेंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में 388 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 14वें ओवर में

0: चले आओ कहाँ गए।
1: सुगम संगीत में आप सुन रहे हैं मेहदी हसन को। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं।

0: इसी गजल के साथ सुगम संगीत का ये प्रोग्राम यहीं खत्म होता है। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 9:30 हुए हैं। अगला प्रसारण कुछ ही पलों में
1: शुरू हो रहा है। इस क्रम में आज प्रस्तुत है विशेष परिचर्चा संसद के समक्ष मुद्दे। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सदस्य सैयद जफर इस्लाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से लोकसभा सदस्य सुखदेव भगत, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से लोकसभा सदस्य अमरा राम और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अनमोल पनवार। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: नमस्कार। मौसम की फुहारों के बीच दिल्ली के लुटियन जोन में राजनीतिक पारा अपने चरम पर है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। ये सिर्फ एक सत्र नहीं, ये लोकतंत्र की धड़कनों का मौसम है, जहां हर आवाज मायने रखती है, हर सवाल सत्ता के दरवाजे पर दस्तक देता है और हर जवाब देश की दिशा तय करता है। संसद का मानसून सत्र जहां एक ओर सरकार अपने एजेंडे के साथ तैयार है कानून सुधार और नए फैसलों की रफ्तार लेकर, तो वहीं विपक्ष सवालों की धार, मुद्दों की आग और जनता की आवाज बनकर खड़ा है। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम संसद के समक्ष मुद्दे में हम खोलेंगे इस सत्र की हर परत। इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व सांसद सैयद जफर इस्लाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं सांसद सुखदेव भगत, CPIM के तेवरों के साथ हमसे जुड़े हैं सांसद अमरा राम और आम आदमी पार्टी की धारदार आवाज बनकर शामिल हो रहे हैं प्रवक्ता अनमोल पवार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जफर जी, आपसे शुरुआत करते हैं, चूंकि आप सत्ता पक्ष की तरफ से यहाँ पर मौजूद हैं, समझना चाहेंगे कि संसद का जो मॉनसून सत्र है, सरकार इसमें किस रणनीति के साथ जा रही है और कौन कौन से मुख्य एजेंडे हैं आपकी तरफ से इस सत्र के लिए?
3: देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है और एनडीए गवर्नमेंट का सवाल है, हमारा कोशिश ये रहती है कि जो लोगों से जुड़े हुए, देश से जुड़े हुए ऐसे मुद्दे हों जिसको एक लेजिस्लेटिव कानून बनाना चाहिए और उससे देश का फायदा और जनता का फायदा हो, ऐसे मुद्दे लेकर हम पार्लियामेंट में अक्सर आते हैं। इसलिए हर बार कोई ना कोई चीज होती है जिससे सीधा नाता जो है जनता का होता है, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे कांग्रेस पार्टी और खासकर जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो बहुत डिसरप्टिव अप्रोच रखती हैं बार बार और चाहती हैं कि किसी तरह भी कोई बिल पास ना हो पाए। लेकिन हमारा जाहिर है अपील होगा अपोजिशन पार्टी से कि देखिए, सरकार चाहती है कि जो लोगों का एस्पिरेशन है, जैसे वुमेन रिजर्वेशन बिल, महिलाओं का एस्पिरेशन, उसका समर्थन प्राप्त हो सभी लोगों से। उसी तरह से अगर डिलिमिटेशन की बात हो तो उसमें भी समर्थन प्राप्त हो, जिस तरह से पिछली बार कई लोगों ने उस वक्त नहीं किया था लेकिन अब वो लोगों ने अफसोस जाहिर किया। अब समझ में उनको आया कि एक देश नीति होती है, देश के हित में काम होता है, समाज के हित में काम होता है और एक परिवार के हित में काम होता है। तो ऐसे लोगों ने, बहुत लोगों ने पार्टियां छोड़ भी दी हैं, अपनी पार्टियां बना ली हैं और इसलिए मुझे लगता है कि इस बार ऐसे कोई जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जैसे कोई बिल जो है उसमें कहीं ना कहीं हम पूरे तौर से सेटिस्फाइड हैं कि लोगों का समर्थन, अपोजिशन बेंच का समर्थन, सबका समर्थन मिलेगा और इस बार हम उस तरह के लेजिस्लेशन को एक कानून पास करके, बिल को पास करके कानून बना सकेंगे। उसी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन एक मुद्दा है, जैसा आपने सही कहा कि कोई घोर अपराध करता हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेयर पर बैठा हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर चाहे चीफ मिनिस्टर, अगर वो 30 दिन तक हिरासत में रहता तो उसको पद से छोड़ना पड़ेगा। ये भी बिल एक है जो रेफर किया गया था जेपीसी को, वन नेशन वन इलेक्शन का जेपीसी को रेफर किया गया था। ये सब मुद्दे जो है वो जाहिर है जो आएंगे इस बार डिस्कशन के तौर पे आएंगे, लेकिन उसके अलावा भी जो बिल आ सकता है वो हो सकता है कि किसानों से जुड़ा हुआ हो या फिर लेबर से जुड़ा हुआ हो या फिर डेटा प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ हो, ऐसे बिल आ सकते हैं जिससे जन विश्वास का बिल हो सकता है या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ बिल हो सकता है और माइंस एंड मिनरल्स से रिलेटेड कुछ बिल हो सकता है जो पेश होगा सरकार की तरफ से। और उसमें मुझे लगता है कि चर्चा करनी चाहिए अपोजिशन को, उसको डिटेल चर्चा करें और चर्चा करने के बाद बिल का समर्थन करना चाहिए। लेकिन ये क्या करते हैं कि बात तो कर लेते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, टाइम भी एलोकेट करवा लेते हैं, लेकिन जब सदन के पटल पे आते हैं तो फिर ये अपना दूसरा रूप जो है, दूसरा चेहरा दिखाते हैं और पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बिजनेस कॉन्डक्ट करना देश की जनता के लिए, टैक्स पेयर्स के लिए बहुत जरूरी है और मैं अपील करूंगा अपोजिशन के लीडर्स को, अपोजिशन की पार्टियों को, देश को प्राथमिकता दीजिए, देश हित में जो बिल आ रहा है उसको प्राथमिकता दीजिए, देश नीति को प्राथमिकता दीजिए, एक आम नागरिक के

0: हितों में जो बिल आ रहा है उसको प्राथमिकता दीजिए, ना कि अपने लीडर्स को जो एक ऑलरेडी क्राइसिस में है, जो परिवारवादी पार्टियां हैं उनके यहाँ तो ऑलरेडी क्राइसिस चल रहा है, ऐसे ऐसे बिल को ठुकरा के आप जनता का भी फायदा नहीं करेंगे, और जब जनता के दरबार में जाएंगे तो जनता आपको नाकार देगी। ऐसा देखिए केजरीवाल साहब की पार्टी को क्या हुआ, उन्होंने जनता के साथ वायदे किए लेकिन जब झूठ बोला तो जनता ने उनको सबक सिखा दिया, बाद में इनके अपने लोगों ने ही उनको दरबदर कर दिया। उसी तरह से टीएमसी का देखिए क्या हाल हुआ, आज टीएमसी ही नहीं बच पाई, ममता बनर्जी नहीं बच पाई, इसलिए कि ममता बनर्जी की जो ऑटोक्रेटिक पॉलिसी थी, जो देश के खिलाफ उनका अप्रोच था, वो सारी चीजें ने उनके अपने पार्टी के लोगों ने देखा और कहीं ना कहीं इस बात को जग जाहिर करते हुए कि उनकी पॉलिसी और नीतियों से हम लोग रजामंदी नहीं है और इसलिए हम लोग कन्विंस नहीं है, इसलिए देश हित में वो फैसला नहीं लेती, इसलिए उनसे भी अलग हो गए। आज मुझे ऐसा लगता है कि इवन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस बात को समझते होंगे, और जब बिल ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल बिल जहाँ 2/3 मेजोरिटी चाहिए, वो 100% मुझे पूरा उम्मीद है कि
1: जी
0: इस बार पूरे तौर से उसको अप्रूवल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा और लोग अपने देश हित का, देश नीति का ज्यादा ध्यान देंगे, ना कि परिवार को समर्पित होकर परिवार के लिए काम करेंगे।
1: जी जफर साहब, अब चलते हैं सुखदेव भगत जी के पास जो कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। सीधे तौर पर आरोप आप पर है सुखदेव जी की कांग्रेस पार्टी जो है वो मुद्दों की राजनीति नहीं करती, परिवार की राजनीति करती है। मेरा सवाल आपसे यह है कि मानसून सत्र के लिए मुख्य विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस के क्या एजेंडे हैं, और जैसा कि जफर साहब ये भी कह रहे हैं कि उनके पास नंबर गेम अब पक्ष में है किसी भी बिल को पास कराने के लिए, क्या रणनीति है कांग्रेस की?
2: मैं स्पष्ट कर दूं, हमारी कांग्रेस के नहीं पूरे देश की आवाज ये, अगर राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों को लेके संसद में अपनी बातों को रखती है या बाहर इन बातों को रखती है तो जन मुद्दे होते हैं। और जफर भाई जिन बातों को इन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने जिन बातों को कहा है परिवारवाद, तो मुझे लगता है कि एप्सॉन की कंपनी E20 के लगातार भी बातें काफी चर्चा में रही है, वो किनके बेटे हैं, अमित शाह के बेटे कौन है, तो ये तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के हमेशा जो मुद्दों से भटकाव वाली बात है। आज जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है, जो अगर भारत की बात करें, सौगंध राम की खाते हैं जो वाले बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिनकी बदौलत वो सत्ता में आई है, और हमारी जो हमारी विश्वास, हमारी आस्था का सा जो खिलवाड़ किया गया है राम मंदिर में, जो चोरी के मुद्दा है, ये मुद्दा है क्योंकि यहाँ के भावनाओं से जुड़ी हुई है। नीट के पेपर जो लगातार हमारे करोड़ों स्टूडेंट्स है जिनका भविष्य अंधकार में, उन्होंने नीट हमारे लिए इशू है, बेरोजगारी हमारे लिए इशू है, और ये लगातार जिन बातों को करें, अंडमान निकोबार के माध्यम से जिस प्रकार कारपोरेट घरानों को स्थापित की जा रही है, और क्या ये देश संप्रभु है क्या, जिस प्रकार हमारे ये पहली बार ऐसे मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी सरकार हमने देखने को यहाँ मिला है जिसमें कोई दायित्व, तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। नीट के लिए प्रधान जी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, यहाँ पर प्राइस हाइक के लिए पूरी जी अकाउंटेबल नहीं है, तो यहाँ पे ये स्थिति हो। आपने देखा होगा विकास की जो बात करें, कितना भ्रष्टाचार, क्या लगातार एक एक बारिश में, चाहे वो एयरपोर्ट की बात करें, हाईवेज की बात करें, वो मुद्दे हैं, और ये पहली बार ऐसा सदन में देखने को मिला है कि हम यहाँ पे राजनाथ सिंह जी जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, सदन को उन्होंने गुमराह किया, देश की जनता को गुमराह किया है कि हमारे सैनिक नहीं मारे गए, अभी जाके आप देख लो। तो ये पूरी की पूरी सरकार, और जिसकी बात ये कह रहे हैं ना ममता बनर्जी की बात करें, ये पहले तो ये वोट चोरी करती है, एमपी एमएलए को चोरी करते, फिर सरकार भी चुरा लेती है, और एसआईआर का जो मुद्दा है, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन है, वो ना निष्पक्ष है, ना स्वतंत्र है, ना इंडिपेंडेंट है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी इन्होंने नहीं बना कर रखा है, वो भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंशन काउंटर ग्रुप में काम कर रही है, जिसके लिए राहुल गांधी जी लगातार उन बातों को रख रहा है। आज भी जिस एग्रीकल्चर की बात करें, एमएसपी के बारे में इन्होंने क्या किया है, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, और हम ये समझते हैं। और रही बात गंभीरता की, मैं समझता हूं कि मैंने कहा ये सदन केवल राजनीतिक मंच नहीं है, हमारे आशाओं का वहां पे जो बातें आशाओं भरी निगाहों से देखते हैं, लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर में वो मुद्दे गौण हो जाते हैं, तो हम लोग इन मुद्दों को लेके इस बार हम लोग पूरी प्रखरता के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ राहुल जी के नेतृत्व में इन बातों को हम लोग सदन में रखेंगे।
1: CPIM से हमारे साथ अमरा राम जी भी हैं, आपसे समझना चाहेंगे कि आपकी पार्टी किन जन सरोकारों को संसद में सबसे मजबूती से इस मानसून सत्र में उठाने वाली है।
3: एक तो जिस तरह से महंगाई से लूट रही है जनता, और एक जो पेपर लीक नीट का किया है जिसे पूरे देश के 22 लाख होनहार विद्यार्थियों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, जिसमें दर्जनों अकेले राजस्थान के कई बच्चों ने अपने जीवन लीला समाप्त किए है, और ये जो महिला आरक्षण बिल है वो अलग से पास किया हुआ है, इसका लागू करने की जो शर्तें उसमें लगाई हुई है वो हटाएं और

0: 33% आरक्षण जो भी आने वाली जो जनगणना और पुनर्गठन की शर्त है उसमें लगाई हुई वो उठाएं और पूरी जो इस ईरान युद्ध के कारण जो रेटें बढ़ाई थी पेट्रोल डीजल रसोई गैस की वो तमाम वापस लें। आज जिस तरह से पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ने से पूरे देश में जो महंगाई की मार झेल रहे थे उसमें और गांव पे नमक छिड़कने का काम किया। तो ये तमाम मुद्दे जो बेरोजगारी का मुद्दा है, लाखों पद खाली हैं, वो नहीं भर रहे हैं और एक जो जनतंत्र को खत्म करने के लिए जिस तरह से खरीद फरोख्त पार्लियामेंट मेंबरों की कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए सब मुद्दे होंगे।
1: आम आदमी पार्टी से अनमोल पवार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनमोल जी, आपकी जो पार्टी है शिक्षा, स्वास्थ्य और संघीय ढांचे के मुद्दे को बहुत प्रखरता से उठाती रही है, मॉनसून सत्र को लेकर आपकी पार्टी की क्या रणनीति है? और जैसा कि सत्ता पक्ष के जफर साहब कह रहे हैं कि विपक्ष सदन को चलने नहीं देता, सिर्फ हंगामा करना उसकी रणनीति है।
2: देखिए, विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष जो है वो सदन को नहीं चलने देता क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोगों के असल मुद्दों पे जवाब दिए जाएं। भाई पिछले 12 साल में 100 से ज्यादा पेपर लीक हो गए, युवाओं के भविष्य बर्बाद हो रहे हैं, 25 से ज्यादा बच्चों ने जो है सुसाइड कर लिया पिछले लगभग 3 महीने के अंदर, लेकिन सरकार जो है बिल्कुल भी इस पे चुप्पी साधे हुए है। और दूसरा ये है कि जिस तरह से प्रभु श्री राम के नाम पे ये लोग वोट मांग के आए थे, जिन लोगों को इन्होंने ट्रस्ट में नियुक्त किया था, प्रधानमंत्री द्वारा खुद नियुक्त किए गए थे, वही लोग आज वहां पे डकैती डाल रहे हैं। हजारों करोड़ों का वहां से चंदा चोरी हो गया, चढ़ावा चोरी हो गया, वहां से इन्होंने जमीन में भ्रष्टाचार किया। जो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव थे चंपत राय जी, उन्होंने 23 करोड़ की जमीन लगभग 160 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पे खरीदी। 18 दिन तक इन्होंने FIR रजिस्टर नहीं की, 18 दिन बाद जब अरविंद केजरीवाल जी वहां पहुंचे तो इन्होंने FIR रजिस्टर की। एक फर्जी FIR, एक फर्जी SIT का गठन किया गया केवल लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए। और तीसरा प्रमुख मुद्दा जिस पे हम सरकार से सवाल कर रहे हैं वो E20 से जो लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, इंजन खराब हो रहे हैं, कंपोनेंट्स खराब हो रहे हैं। भाई सरकार ने नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा था कि लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा, जो प्योर पेट्रोल भरवाना चाहे वो प्योर पेट्रोल भरवाए, जो E10 भरवाना चाहे, E20 भरवाना चाहे, उसे ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन आज वो मना कर रहे हैं। 2023 से पहले की बनी लगभग 30 करोड़ गाड़ियां जो हैं वो खराब हो रही हैं, वर्क स्टेशन पे लाइन लगी हुई है, सर्विस स्टेशन पे लाइन लगी हुई है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी गए पेट्रोल पंप पे, उन्होंने लोगों से बात की, लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। तो इन मुद्दों पे सरकार को जवाब देना चाहिए, लेकिन आप देखिएगा जैसे ही संसद में विपक्ष इन मुद्दों पे सवाल करेगा ये हंगामा करेंगे, ये जो है सदन को चलने नहीं देंगे, यही होता है और यही करते रहेंगे।
1: जफर साहब, आपसे थोड़ा समझने की कोशिश करता हूं कि संसद के मॉनसून सत्र में आपने भी कहा कि आपने इशारा किया कि नंबर गेम आपके पक्ष में है और जो परिसीमन और महिला आरक्षण का महापैकेज बिल है वो दोबारा आप लाने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें किस तरह के संशोधन हुए हैं? जब ये पिछली बार सदन में आया था तो ये विधेयक नहीं बन पाया था, इस बार सरकार उसमें किन प्रावधानों को जोड़कर या घटाकर पेश करने की कोशिश करेगी?
3: देखिए, अभी तो एक चर्चा का विषय है, जब एक बार इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि क्या उसमें संशोधन किया गया नहीं किया गया। लेकिन जो आपने जो पहले कहा कि आंकड़ों की जगह पर एक अपील जो हमारी थी उस वक्त बिल के गिरने के बाद कि देशहित के बारे में एक चुने हुए नुमाइंदों को सोचना चाहिए, वो अपील जो है जाहिर है लोगों ने समझा, परखा, सुना और जनता से चर्चा जरूर की और अपने लीडरशिप को भी परखा होगा तो समझ में आया होगा कि ये अपने लिए काम करते हैं, ना कि देश के लिए या जनता के लिए। इसलिए आपने देखा कि वो नंबर जो बहुत ही गैप ज्यादा था उस वक्त, अभी अपने आप ही गैप खत्म हो गया है और मुझे लगता है कि जब ये बिल पूरे तौर से चर्चा में आएगा तो बाकी चीजें भी जब साझा होंगी, सारी चीजें लोगों को जानकारी मिलेगी, उसके बाद ये बिल को समर्थन नहीं, प्रचंड बहुमत से बिल जो है पास होगा और एक जो लोगों का एस्पिरेशन है वो रियलिटी में बदल जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो बचे खुचे लोग भी हैं उनके, जैसे अभी आपके स्पोक पर्सन बोल रहे थे बड़ी बड़ी बातें, बट उनके लिए पार्लियामेंट में उनके ही लोग नहीं बचे और जो लोग हैं थे उनके, वो जाहिर है उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि उनके लीडर केजरीवाल साहब के बारे में बात कर रहे थे, वो सिर्फ खुद के लिए जीते हैं मरते हैं, बाकी उनको किसी से कोई लेना देना नहीं, झूठे वायदे करते हैं, जनता के मुद्दे से दूर पर्सनल मुद्दा ज्यादा एजेंडा चलाते हैं, मीडिया में अपने आप को हर वक्त इंट्रोड्यूस करते रहते हैं और चाहते हैं कि मीडिया में चमकते रहे, तो ऐसे लोगों को उनके ही लोगों ने नाकार दिया। तो जनता के दरबार में तो जब जाएंगे पूरे तरह से नकारे जाएंगे, जो बचे खुचे लोग वो भी नकारे जाएंगे, लेकिन आज उन्हीं के पार्टी के उन्हीं के लेफ्टिनेंट जो पहले कभी हुआ करते थे आज उनसे विपरीत अलग खड़े हैं, उनका

0: स्टैंड भी बिल्कुल क्लियर है कि देश हित में है, देशवासियों के हित में स्टैंड होना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो आंकड़े जो है, जो भी इसमें चेंजेस के बाद है, वो सभी को स्वीकृत होगा और कुछ पार्टियां क्रॉस वोटिंग भी सामने दिखेगी।
1: सुखदेव जी, आपसे ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे कि विपक्ष की भूमिका सवाल उठाने के साथ साथ क्रिएटिव पॉलिटिक्स करने की भी है, क्योंकि आपको भी जनता ने मैंडेट देकर अगर संसद पहुंचाया है तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि देश हित में आप सरकार का सहयोग करें और कुछ रचनात्मक करें। क्या विपक्ष इस दिशा में भी सोच रहा है?
2: आपको मैं एक चीज बतला दूं, लोकतंत्र में जवाबदेही जो है विकल्प नहीं होता है, सरकार का संवैधानिक दायित्व तो होता है। हम अगर मुद्दों को उठाते तो इनके लिए राजनीति हो जाती है। क्या अगर हम नीट की बात करें तो वो राजनीति है? क्या हम अंडमान निकोबार, जो ग्रेट निकोबार जिसमें आरएफ रिजर्व फॉरेस्ट भी काट दे, वो राजनीति है? क्या अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, वो राजनीति है? क्या अगर हम सॉवरेन कंट्री है, अगर हम जैसे ट्रंप जो डिक्टेट कर रहे वो हम फॉलो कर रहे हैं, हमारे ट्रेड डील में 18% अगर वो कर रहे जो 33% था, वो राजनीति है? क्या हम अगर ईरान के साथ, अगर आप जाते हो इजराइल जाते हो, ईरान वहां पे हमारा जो पुराना नेचुरल लड़ाई होता है वो आपसे नाराज होता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अगर इस तरह की बातें, वो राजनीति है क्या? राजनीति जो राजनीतिक मंच है, राजनीतिक मसले हैं, उसका समाधान अगर राजनीतिक तरीके से नहीं किया जाए, डायलॉग से नहीं किया जाए, तो फिर कैसे होगा? आज मैं बता रहा हूं जो गंभीरता की जो बातें होती है, आज भी मैं कह रहा हूं सत्ता पक्ष आज भी अगंभीर है, सत्ता पक्ष आज भी अपनी जिम्मेदारी से भागती है। और इसलिए मैंने कहा कि राम मंदिर में केवल आस्था की चोरी नहीं है, वहां तो जिम्मेदारी की भी चोरी हुई है। और यही एक कारण है चंपत राय को बचाने के वहां पर पूरा प्रयास किया जा रहा है। यह पहली बार ऐसा हुआ है कि एफआईआर नहीं हुआ और एसआईटी आपने गठन कर दिया है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, हम अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं और राहुल जी इस देश के जिम्मेवारी को समझते हैं और पूरे कंट्री जो है, पूरा देश जो है, उन पे आशा भरी निगाहों से देखते हैं। ऐसा व्यक्ति दृढ़ निश्चयी है जो दूरदर्शी भी है और पहले आगाह वो कर देते हैं और उसको बाद में सरकार उन बातों को मानती है। इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को ये बोलने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज होती है आप मेहनत से पास करो, एक है चोरी से पास करो। ये सरकार तो चोरी के द्वारा बनाई गई है, चोरी की सरकार भी है, जो लोगों को चोरी करती है, मतलब एमपी चोरी करती है, एमएलए चोरी करती है, सत्ता चोरी करती है ये, और ये हमें नसीहत देती है। रही बात जिस संविधान की 123वें संविधान संशोधन की बात हो रही है, तो ये एक नैतिकता, हम अगर सार्वजनिक जीवन में है तो नैतिकता एक पक्ष होता है, नैतिकता एक शब्द होते हैं, हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो रिजाइन करे अगर उसमें इस प्रकार की बातें हैं। लेकिन क्या भारत के कानून क्या कहते हैं कि जब तक कोई आरोप जो है दोष नहीं होता है तो न्यायिक प्रक्रिया बीच में करा देंगे और आप प्रतिशोध ना लें, ये कौन क्या क्या गारंटी लेंगे? ये सरकार तो प्रतिशोध ही लेती है लोगों से, ये तो विपक्ष को खत्म करना चाहती है।
1: अमरा राम जी, जैसा कि सत्ता पक्ष के जफर साहब कह रहे हैं कि विपक्ष सिर्फ विरोध कर रहा है और नंबर गेम में नहीं होने के बावजूद रचनात्मकता में बाधा पहुंचाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या विपक्ष इस मॉनसून सत्र में एकजुट होकर सत्ता पक्ष को चुनौती देता नजर आएगा?
3: बिल्कुल, असल बात यह है कि जो मुद्दे हैं, जनता के जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, रचनात्मक क्यों नहीं दें? हम तो बिल्कुल, जहां भी देश के सवाल आया है निश्चित रूप से एकजुट होकर के, जिस तरह से आज अमेरिका के साथ डील की है, जो हमारे माल पे अमेरिका जाता था, निर्यात होता था, उसमें 3% की जगह 18% लगेगा और हमारे यहाँ 18 से 23 लगता था, वो 0 अमेरिका का सामान आने पे होगा, तो देश की बर्बाद होगा, तो उसके साथ कैसे खड़े हो सकता है प्रतिपक्ष? ये जिम्मेदारी है, प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है सरकार की गलतियों को उजागर करना और जनता में जो बेदारी है उसको संसद में उठाना प्रतिपक्ष का है, और जो भी जो जनता के साथ है निश्चित रूप से वो सब मिलकर के उठाएंगे। सत्ता पक्ष जब 2023 में महिला आरक्षण बिल पास कर दिया, सर्वसम्मत कर दिया, तो इस शर्त को जनगणना और पुनर्गठन उसके साथ जोड़ने से क्या मतलब है? मतलब इसको भुनाने का, महिला आरक्षण लागू नहीं करना चाहते, जिस दिन सर्वसम्मत पास हो गया ये शर्तें जोड़ने की कहां जरूरत है? वो अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि करने के लिए महिलाओं के आरक्षण को सामने रखने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये देश की जनता भी जानती है और संपूर्ण प्रतिपक्ष भी जानता है। जी
1: अनमोल जी, एक बार फिर आपके पास आते हैं। जफर साहब ने आरोप लगाया कि आपके खुद के लोग ही संसद में नहीं बचे तो आप क्या मुद्दों की राजनीति करेंगे? आप युवा हैं, क्या महिला बिल पर इस बार आपकी पार्टी कुछ सकारात्मक सोच रही है? एक और सवाल कि क्या विपक्ष इस बार एकजुट होकर सत्ता पक्ष को चुनौती देता नजर आएगा?
4: देखिए, सवाल आपका जो है वो सत्ता पक्ष से ये होना चाहिए कि वो क्यों नहीं चाहते कि महिला विधेयक जो है वो पारित हो। 2023 में विपक्ष तो पूरा एकजुट था, हमने तो कहा था भाई आप जो है महिला रिजर्वेशन जो है तुरंत

0: लागू करो, 33% रिजर्वेशन दो आप 543 सीट में। उस समय इन्होंने कहा कि नहीं जी, अभी तो डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, उससे पहले सेंसस कराने की जरूरत है, 2011 के सेंसस पे देंगे तो महिलाओं के अधिकार मारे जाएंगे। उस समय बिल पास नहीं होने दिया। फिर 30 महीने बाद ऐसा क्या हो गया भाई? सेंसस तो उस समय भी नहीं हुआ था जब दोबारा ये महिला बिल लेके आए। हम तो तब भी समर्थन में थे कि आप रिजर्वेशन दीजिए, 33 क्यों, आप 50% रिजर्वेशन दीजिए महिलाओं को, महिलाओं को आधा अधिकार जरूर मिलना चाहिए। लेकिन ये नहीं चाहते, ये महिला विरोधी पार्टी है, इनकी कभी मंशा नहीं रही कि ये रिजर्वेशन दे। पंचायती राज का जब बिल आया था तो इन्हीं के सबसे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने विरोध किया था उस समय 1990 के दौरान, जब पहली बार महिला रिजर्वेशन का बिल आया था पंचायती राज में। दूसरी बात भाई, हमारी जो है मेजोरिटी नहीं रही, हमारे सांसद नहीं रहे राज्यसभा में, ये कह रहे हैं ईडी पार्टी के प्रवक्ता। भाई ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके विपक्ष को तोड़ने का काम कौन कर रहा है? ईडी पार्टी कर रही है। चुनी हुई सरकारों को जो लोकतांत्रिक तरीके से जनता ने वोट डाल के चुना है, उसे तोड़ने का काम कौन कर रहा है? ईडी पार्टी सरकार कर रही है। ईडी और सीबीआई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि तोता और मैना की तरह काम कर रहे हैं केंद्र सरकार के, तो इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? ये लोकतंत्र के हत्यारे, ये संविधान के हत्यारे, जो दिन दहाड़े जिन्होंने प्रभु श्री राम के नाम पे वोट मांग के उन्हीं के घर में डकैती डाल दी, तो इनका तो भरोसा ही नहीं किया जा सकता। ये तो किसी के सगे नहीं है। विपक्ष की पार्टियों को तोड़ के जिस तरह से ये मेजोरिटी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये साफ दर्शाता है कि पूरे देश के लोगों का विश्वास इनके ऊपर से पूरी तरह खत्म हो चुका। ये इस बात को भली भांति जानते हैं। 400 सीट की मांग की थी इन्होंने लोकसभा चुनाव में, लोगों ने इन्हें केवल 240 सीट दी। उसके बाद से इन्होंने जबरदस्त तरीके से अपना ऑपरेशन लोटस चालू कर दिया। कोई भी राज्य सरकार हो विपक्ष की, उसे तोड़ने का काम कर रही है ईडी पार्टी सरकार। और आप समाज का कोई भी तबका ले लीजिए, किसान इनसे परेशान है, जवान इनसे परेशान है, युवा इनसे परेशान है, छात्र इनसे परेशान है, व्यापारी इनसे परेशान है, तो इन्हें वोट आखिर क्यों देंगे वो लोग?
1: जफर साहब, आरोप प्रत्यारोप की बातों से अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें और थोड़ी सकारात्मक चर्चा करें, क्योंकि आकाशवाणी के श्रोता जो दूर दराज से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, वो आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आर्थिक विकास, रोजगार और महंगाई को लेकर मानसून सत्र से पहले सरकार जनता को क्या संदेश देना चाहती है?
2: देखिए, अब ग्लोबल सिचुएशन जो है वो आपके नजर में भी है, दुनिया देख रही है कि सप्लाई चेन में डिसरप्शन है। जब से ईरान, इजराइल और यूएस का जो एक जंग छिड़ी हुई है, उससे पूरे दुनिया को तबाही की तरफ ढकेल दिया है। ऐसे में भारत की स्थिति जो सबसे मजबूत स्थिति है, इसलिए कि भारत में आप देखिए हमारी अर्थव्यवस्था भी अच्छी चल रही है, महंगाई का दर भी हमारे जो वेल विद इन द लिमिट है। पहले जो यूपीए की सरकार में डबल डिजिट इन्फ्लेशन होता था, अभी तो आप देखिए सीपीआई इंडेक्स जो है वो जो हम 4 और 6 के बीच में जो हमने कहा है कि हम मेंटेन करेंगे इन्फ्लेशन, उसमें मेंटेन है। एमपीसी के द्वारा उस पर पूरा फोकस रहता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जो कि इन्फ्लेशन हमारा विद इन द रेंज रहे। और पूरे टाइम हमने 12 साल 13 साल में देखे, हमने उसको बहुत अच्छी तरह मैनेज किया है। लेकिन कभी कभी सीजनल फैक्टर की वजह से, कभी कभी ग्लोबल सिचुएशन की वजह से, कभी कोई और कारण ऐसे आते हैं जिसके वजह से कोई स्कार्सिटी होती है, जैसे या उस डिसरप्शन होता है, और उसकी वजह से प्राइस जो है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो खुदरा प्राइस में आ जाता है, उसका कभी ना कभी इम्पैक्ट होता है। जैसे सीजनल फैक्टर पे सब्जी और फलों के दाम बढ़ जाते हैं कभी, उसी तरह से कभी तेल के दाम बढ़ने से, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से उस पे असर आ जाता है, महंगाई पे असर आ जाता है। बट ये सब टेम्पररी है। परमानेंट क्या है कि हालात जब नॉर्मल हो जाते हैं तो उस वक्त देखना चाहिए कि हमारा महंगाई दर क्या था, और यूपीए के समय में नॉर्मल सिचुएशन में महंगाई दर क्या था। तो आपको साफ दिख जाएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, भारत की नीतियां मजबूत है, पॉलिसी मजबूत है, और भारत की सरकार का गवर्नेंस मॉडल ऐसा है कि जिसमें महंगाई पर भी फोकस है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने पर फोकस है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर फोकस है, और जो देश की अर्थव्यवस्था जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स उस पर सब तरह से खरी उतरे उसकी कोशिश। आज देखे जो रिजर्व है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो अपने आप में दर्शाता है कि देश की स्थिति बेहतर नहीं, बहुत बेहतर है कंपेयर टू व्हाट इंडिया हैज सीन इन द पास्ट। तो ये सारी चीजें अपने आप को दर्शाती है हमने आम लोगों के लिए किया, और वेलफेयर स्कीम के बराबर हम चिंता करते हैं, और इसलिए हम वेलफेयर स्कीम चलाते रहते हैं, उससे आम नागरिक को फायदा होता रहता है, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हैं, चाहे किसान हो, चाहे कोई भी हो, पेंशनर हो, सबके लिए हम स्कीम लेकर आए, सबके लिए चिंता करते हैं, और सबके लिए कुछ ना कुछ हर बजट में आता है, और भी अलग अलग पॉलिसी मेजर्स आते हैं जिसमें हम उनकी चिंता करते हैं। इसीलिए आज देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है और देश के लोग मजबूत हो रहे हैं, गरीबी रेखा से बाहर निकल रहे हैं, और लोगों की आमदनी बढ़ती जा रही है पर कैपिटल।

0: इनकम बढ़ता जा रहा है, वेलफेयर में जो परसेंटेज है पर कैपिटा का वो बढ़ता जा रहा है, उस बात को दर्शाता है कि लोग अपने सेहत पर भी अब ज्यादा ध्यान देते हैं और उस पर खर्चा भी करते हैं। ये सारी चीजें जो है देश को एक मजबूत स्थिति देने वाली सरकार जो है उसने ऐसे सिचुएशन पैदा किए कि देश की जनता और देश को दोनों बहुत कठिन समय में भी कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है।
1: सुखदेव जी, जैसा कि जफर साहब कह रहे हैं कि वैश्विक चुनौतियों का प्रभाव है, वैसे देश की स्थिति काफी सुदृढ़ है, प्रगतिशील है और दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। जनता कांग्रेस पार्टी से ये भी समझना चाहती है कि अपार अनुभव और सत्ता में कई दशकों तक राज करने के बाद ऐसी स्थिति में क्या विपक्ष रचनात्मक तरीके से समाधान भी सरकार को बताएगा या सिर्फ विरोध करेगा?
2: देखिए, निश्चित रूप से दो चीजें हैं। डेमोक्रेसी का महत्वपूर्ण चीज है सत्ता पक्ष और विपक्ष। इन्होंने कहा कि हम काफी जो हमारे गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, आप दावा करते हैं 80 करोड़ लोगों के, आप देते हो राशन, देते 80 करोड़ लोग के 5 किलो अनाज की बात कर रहे हो, आप गरीबी रेखा से ऊपर की बात कर रहे हो। जो एमएसएमई का जो हालात है, जिस प्रकार जब मैं समझता हूँ जो हमारे पीएसयू थे उनको जिस प्रकार से लाउट अप कर रहे हो, तो आप कहाँ पे वर्ल्ड रैंकिंग में, आपको हंगर ये पे इंडेक्स में आप कहाँ पे हो, हर जगह पे हैप्पीनेस में आप कहाँ पे हो। मैं आज भी मेरा ये मानना है कि ये पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, हमारे लिए सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण देश है, और देश कैसे समृद्ध हो, देश में जनता की बातें कैसे आए, जो सदन एक सर्वोच्च मंच था उसमें एक सार्थक भाष हो, सार्थक बातें हो और जिम्मेवारी लोग निभाए। और हमने कहा अगर विपक्ष किसी बातों को रखती है तो वो दुश्मन नहीं है, उन बातों को आपको देखना चाहिए। एक कहावत है ना, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, आप उन बातों को लेके चले और क्या बेहतर हो सके उनको लेके चला। आरोप प्रत्यारोप से महत्वपूर्ण है एक पारदर्शी और जिम्मेवारी के साथ अपने जिम्मेवारी को, अपने दायित्वों का निर्वहन करना।
1: अनमोल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जनता संसद से नतीजे चाहती है, न कि सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। आप युवा हैं, आपके अनुसार इस सत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए?
3: देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो आपने जैसा कहा कि हम युवा हैं, तो हम युवाओं के लिए चिंतित भी हैं, तो सरकार जवाबदेही तय करे। 100 पेपर लीक हो गए पिछले 12 साल में। हम मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, हमारे माँ बाप ने हमें इसलिए पढ़ाया है इस उम्मीद में कि हमारा भविष्य बेहतर हो, उन्हें बेहतर जीवन मिल पाए। और जो लोअर मिडिल क्लास से लोग आते हैं वो कर्जा लेते हैं, अपनी जमीन गिरवी रखते हैं, अपने गहने गिरवी रखते हैं कि अगर उनके बच्चे पढ़ जाएंगे तो उनका भविष्य सुधर जाएगा और देश की प्रगति में भी वो अहम भूमिका निभा पाएंगे। लेकिन जब पेपर लीक होते हैं ना, तो उनके सारे सपने टूट जाते हैं, उनके सारे अरमान टूट जाते हैं। कुछ लोग जैसे हमारे 25 होनहार बच्चों ने जो है सुसाइड कर लिया, उन्हें इस तरह का रास्ता चुनना पड़ा। तो ये सरकार जवाबदेही तय क्यों नहीं कर रही, क्यों बचाया जा रहा है, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा, उन्हें बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया जा रहा। भाई, प्राइवेट जॉब में भी कोई गलती कर देता है तो उसे जो है टर्मिनेट कर देते हैं। यहाँ तो 100 पेपर लीक हो चुके, नीट एग्जाम के बाद 6 पेपर लीक हो चुके। मैं जो सरकार एक पेपर नहीं करा पा रही उसके भरोसे एक युवा देश को कैसे छोड़ दिया जाए, आप ये बताओ, जो जवाबदेही तय करने से भाग रही है। और लोगों के मुद्दे हैं उस पर जवाब देना चाहिए ना सरकार को।
1: कार्यक्रम में समय कम है जफर साहब, अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि संसद के मॉनसून सत्र के लिए विपक्ष से आप क्या कहना चाहेंगे और देश की जनता जो हर सत्र से उम्मीद लगाए बैठती है उसके लिए आपका क्या संदेश होगा?
0: देखिए, मैं जो ऑपोजिशन पार्टीज है उनसे बस एक ही अपील है कि बिहेव लाइक ए रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी, एंड आप एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी होने का जो दावा करते हैं उसी दावे को पूरी तरह से दिखाना चाहिए कि आप परिवार हित में नहीं देश हित में काम करते हैं, और उनके लोग जो है उनके साथ जो बचे कुचे लोग हैं उन्हें भी यही कहीं ना कहीं गाइडेंस देना चाहिए उनको कि भाई सब देश हित में काम करो, और जो ऐसे बिल आए जिसमें देश के नागरिकों का फायदा देश का फायदा है तो जरूर उसको बढ़ चढ़ के सपोर्ट करें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ अपोजिशन पार्टीज है जो कहने के लिए कहते हैं कि हम एक यूनाइटेड ब्लॉक है, इंडी ब्लॉक, बट उन लोग आपस में इतना एक दूसरे का विरोध करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सब कहने के लिए है, ऑप्टिकली दिखाने के लिए, लेकिन हकीकत में कोई एक दूसरे के साथ खड़ा ही नहीं है। और जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है वो सब इनकी जानकारी है, लेकिन फिर भी मैं अपील करूंगा कि आप जब आपस में मिले तो आप अपने पॉजिटिव जो सपोर्ट होना चाहिए उसको कीजिए उन मुद्दों पे जिन पे आपको भी लगता है कि देश हित में है, और ये देश नीति के नाते आपको सपोर्ट करना चाहिए।
1: आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
4: संसद के समक्ष मुद्दे, अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सदस्य सैयद जफर इस्लाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से

0: लोकसभा सदस्य सुखदेव भगत, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से लोकसभा सदस्य अमरा राम और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अनमोल पंवार परिचर्चा का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
1: आकाशवाणी समाचार
2: का ये कॉर्डन सिटी जनरल सूरतगढ़ है। रात के 10 बजे हैं, कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम होगा, प्रतीक्षा करें।

0: कलाकार हैं। श्रीमती बालामणि ईश्वर ने संगीतज्ञ त्रिची श्री एस गणेशन से उच्च शिक्षा प्राप्त की तथा अपनी कला की तकनीक एवं कौशल का गहन ज्ञान प्राप्त किया। आपने तमिलनाडु और केरल में अनेक संगीत सभाओं में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं तथा संगीत प्रेमियों की अपार प्रशंसा प्राप्त की है। श्रीमती बालामणि ईश्वर त्रिची एस गणेशन की कर्नाटक संगीत शैली में राग आलापना के लिए सुप्रसिद्ध हैं। पिछले 3 दशकों से सक्रिय रूप से गायन प्रस्तुत करती आ रही श्रीमती बालामणि ईश्वर अनेक पुरस्कारों एवं उपाधियों से अलंकृत हैं।
1: नमस्कार, दिस इज आकाशवाणी। वेलकम टू द रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा। इन टुनाइट्स प्रोग्राम यू कैन लिसन टू अ वोकल रिसाइटल बाय श्रीमती बालामणि ईश्वर। श्रीमती बालामणि ईश्वर हेल्स फ्रॉम द लीनिएज ऑफ renowned vocalist Musiri Subramanya Iyer. Initially, she learnt music from her mother, Srimati Sushila Ramaswamy. Further tutelage was from renowned musician Tiruchi Sri S. Ganesan. After completing Music Senior Certificate course from Thrissur Sri Rama Verma Music School, Srimati Balamani joined Akashwani Madurai in the year 1992. Acclaimed for her Raga Alapana style rendition, she has travelled extensively for performances. Srimati Balamani Ishwar is an A-grade artist of Akashwani and is the recipient of several awards and accolades.
0: आज के कार्यक्रम में श्रीमती बालामणि ईश्वर के साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्रीमती परूर एम के अनंत लक्ष्मी, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा कंजीरा पर श्री उडुपी एस श्रीकांत। श्रीमती बालामणि ईश्वर अपने कार्यक्रम का शुभारंभ संत त्यागराज की रचना ब्रोव बारमा से कर रही है। राग बहुदारी पर आधारित ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: इन टुनाइट्स कॉन्सर्ट श्रीमती बालामणि ईश्वर इज अकंपनीड बाय श्रीमती परूर एम के अनंत लक्ष्मी ऑन द वायलिन, श्री बी गणपति रामन ऑन द मृदंगम एंड उडुपी श्री एस श्रीकांत ऑन द कंजीरा। द कॉन्सर्ट बिगिन्स विद Brova Barama, composed by Saint Tyagaraja, in Rag Bahudari, set to Adi Tal. Bro.

0: अब आप सुनेंगे मुथुस्वामी दीक्षितर की रचना शेषाचल नायगम वराली राग और रूपक ताल में।
1: लिसन नाउ टू शेषाचल नायगम कंपोज्ड बाय मुथुस्वामी दीक्षितर इन राग वराली सेट टू ताल रूपकम।

विश्वासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्रीमती बालामणि ईश्वर का गायन। आपके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्रीमती परूर एम के अनंत लक्ष्मी, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा कंजीरा पर श्री उडुपी एस श्रीकांत। लीजिए अब प्रस्तुत है करहर प्रिया राग और मिश्र चापताल में संत त्यागराज की रचना पक्कल निलपड़ी। इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा यू आर लिसनिंग टू अ वोकल रिसाइटल बाय श्रीमती बालामणि ईश्वर। शी इज अकंपनीड बाय परूर श्रीमती एम के अनंत लक्ष्मी ऑन द वायलिन, श्री बी गणपति रामन ऑन द मृदंगम एंड उडुपी श्री एस श्रीकांत ऑन द कंजीरा। लिसन नाउ टू पक्कल निलपटी कंपोज्ड बाय सेंट त्यागराजा इन रा करहर प्रिया सेट टू मिश्र चापुताल।

0: कलाकार्ते मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा कंजिरा पर श्री उडुपी एस श्रीकांत श्रीमती बालामणि ईश्वर अपने कार्यक्रम का समापन करते हुए प्रस्तुत कर रही हैं रचना मनदिर कुहंदद सिंधु भैरवी राग और आदि ताल में रचना है तंजावूर शंकर अय्यर की
1: That was a Tani Avartanam performed by Shri B. Ganapati Raman on the Mrudangam and Udupi Shri S. Srikant on the Kanjira. Srimati Balamani Ishwar concludes the concert with Manadir Kugandad, composed by Tanjavur Shankara Iyer in Rag Sindhu Bhairavi, set to Tal Adi.

0: रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा में आज आप सुन रहे थे श्रीमती बालामणि ईश्वर का शास्त्रीय गायन। आपके साथ संगत कर रहे थे वायलिन पर श्रीमती परूर एम के अनंत लक्ष्मी, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा कंजिरा पर श्री उडुपी एस श्रीकांत। एक कार्यक्रम आकाशवाणी के मदुरई केंद्र में रिकॉर्ड किया गया तथा आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया। इन द रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा यू जस्ट हर्ड अ वोकल रिसाइटल बाय श्रीमती बालामणि ईश्वर। शी वाज अकंपनीड बाय परूर श्री एम के अनंत लक्ष्मी ऑन द वायलिन, श्री बी गणपति रामन ऑन द मृदंगम एंड उडुपी श्री एस श्रीकांत ऑन द कंजीरा। Recorded in the studios of Akashvani Madurai, this broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani.
1: अभी आप संगीत सभा ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर
3: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष।

0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौन भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्रीकृष्णा देव रायालू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने उन सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और ना ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। यह यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉ मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। डॉ महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनाधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 लोग लापता हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 1 करोड़ मूल्य का 1,700 मीट्रिक टन से अधिक अवैध रूप से खनन, भंडारण या परिवहन किया गया कोयला जब्त किया है। यह जब्ती पिछले 3 हफ्तों में CISF की सुरक्षा में चल रहे कोयला क्षेत्रों में गहन अभियानों के दौरान की गई। इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और एक निर्णायक एक दिवसीय मैच में 388 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 40 ओवर में 2 विकेट पर 267 रन बना लिए हैं। 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari.

मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, DRM 909 किलोहर्ट्ज़ पर, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल के प्रसारण। रात के 11:10 हुए हैं। अब हमारे प्रसारण यहीं संपन्न होते हैं। प्रातः 5:55 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।